एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 11 अक्टूबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 25 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार है और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है।

0: भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

जिस वस्तु के नाश से बड़ा दुख या कष्ट होता है, उसके प्राप्त होने से पूर्व सुख या दुख कुछ भी नहीं होता है। अतएव उसकी प्राप्ति के पूर्व की अवस्था को ध्यान में रखकर मन को दुखी नहीं करना चाहिए।

नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग नामों और रूपों की पूजा की जाती है। हर रूप का अपना महत्व है। जैसे चंदन का पेड़ अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है, उसी तरह देवी का हर रूप किसी न किसी विशेष गुण का प्रतीक है। उनके इन रूपों का स्मरण करने, उनका नाम लेने से हमें अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिलती है।

माँ दुर्गा शक्ति, करुणा और सुरक्षा का साक्षात स्वरूप हैं। जब हम सच्चे मन से माता रानी की शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन के सभी भय, संकट और दुख दूर हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्रीराम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्रीराम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सुहानी। लोकगीतों का आनंद उठाइए कार्यक्रम हिम गुंजन में समय रहेगा सुबह 8:30। स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम प्रसारित किया जाएगा सुबह 9:00। आज कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा कटे होंठ का समाधान, और इसके साथ ही जानकारी दी जाएगी दिवाली के पटाखों से होने वाली जलन के उपचार के बारे में। ये सभी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे जाने माने प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर ठाकुर थुसु, और उनसे जानकारी हासिल करने के लिए श्रोता भी हमें कॉल कर सकते हैं 01892224391 इस फोन नंबर पर। गीतों का कारवां, इस कार्यक्रम में आनंद उठाइए फिल्मी गीतों का समय है सुबह 10:00 और 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत। कार्यक्रम है पहाड़ों के सुर। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 11:05 पर, और 11:30 का समय है जिस कार्यक्रम का, उसका नाम है तराने मन के। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 12:00 और दोपहर 12:30 पर बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल सभा। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:50 पर, 11:00 दिन में, 3:00 शाम, 6:00 और 7:45 पर। समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर, और न्यूज एट 9 रात्रि 9:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। दिन में 1:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे। भजन हम प्रसारित करेंगे शाम 5:10 पर, और शाम 5:25 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम युवा मंच। आज ये कार्यक्रम वीकली पल्स पर आधारित होगा। गजलों का लुत्फ उठाइए कार्यक्रम शामी गजल में समय है शाम 6:05 और 6:30 पर सुनिएगा महिलाओं के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। शाम 7:10 का समय है कार्यक्रम खेती बाड़ी का, और मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:00। रात 8:15 पर कार्यक्रम हिम बीट्स आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर एक ही कलाकार इस कार्यक्रम में गुरुदत्त द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्मों के गीत हम आपको सुनवाएंगे। रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीतों की महफिल, और रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। तो ये था कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी

0: सुरक्षा व्यवस्थाः कृताः सन्ति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नवरात्र महोत्सवस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंटेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके तहत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल अदीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। अब ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है जिसे श्रद्धालु उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 54वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल वाराणसी में आज सुबह नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के संदेश को आगे बढ़ाना है। ये पहल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभिन्न संगठनों के साथ कर रहा है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीतकर बराबरी पर हैं। शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत युवा संगम के 7वें चरण का आयोजन कर रहा है जिसका उद्देश्य लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना और युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। युवा संगम कार्यक्रम तेलंगाना असम आदान प्रदान कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को दर्शाता है जिसमें युवाओं को देश की विविधता से परिचित होने, अपने गृह राज्यों से परे अन्य समुदाय से जोड़ने और भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरी समझ विकसित करने के

0: That is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सुहानी।
2: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात श्रोताओं। 11 अक्टूबर के इस बेहद खूबसूरत और पावन दिन पर आकाशवाणी धर्मशाला पर इस समय मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट वंदना रैना। और श्रोताओं, आज का जो दिन है, आज की जो सुबह है, वो बहुत ही खास है। और हो भी क्यों ना, आज तारीख है 11 अक्टूबर और हवाओं में एक अलग ही पवित्रता, एक अलग ही उत्सव का रंग घुला हुआ है। जी हाँ, क्योंकि आज से शुरुआत हो चुकी है शक्ति की उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि की। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन अवसर की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। अगले 9 दिनों तक हमारे घरों में, हमारे दिलों में और इस पूरे माहौल में माँ दुर्गा की असीम कृपा बरसने वाली है। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन। माँ शैलपुत्री जो हिमालय की पुत्री हैं और स्थिरता, दृढ़ता और शक्ति का प्रतीक हैं। आज का दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ आए, हमें हिमालय की तरह अडिग रहना है। तो दोस्तों, ये मौका है अपने अंदर की सकारात्मकता को जगाने का, अपने परिवार के साथ मुस्कुराने का और पुरानी चिंताओं को भूलकर एक नई शुरुआत करने का। तो चलिए, आज हम सब भी नवरात्रि के इस पहले दिन पर पूरे उत्साह के साथ कहते हैं जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो चलिए श्रोताओं, आपकी इस पावन और खूबसूरत सुबह को भक्तिमय बनाते हैं इस खूबसूरत माता के भजन के साथ, जिसे सुनकर आपका मन शक्ति, भक्ति और शांति से भर जाएगा।

0: जी श्रोताओ, एक बार फिर से कार्यक्रम सुबह सुहानी में आप सबका स्वागत है और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे इस सुविचार के साथ। जी श्रोताओ, जिस तरह माँ दुर्गा हमारे जीवन से अंधकार और बुराइयों का नाश करती है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि याद रखिए सबसे बड़ा उत्सव अपने विचारों को पावन बनाना है। तो चलिए हम भी ये प्रण लेते हैं कि हम अपने दिन को, अपने जीवन को बनाएंगे खूबसूरत, हमेशा अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
4: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
5: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सुहानी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। तो श्रोताओं, अब समय आ गया है टाइम मशीन पर सवार होने का और पलटने का इतिहास के पन्नों को। तो चलिए देखते हैं कि आज की तारीख यानी 11 अक्टूबर का दिन ये इतना खास क्यों है और आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ था। साल 1916 से हम शुरुआत कर रहे हैं तो आज ही के दिन समाज सेवी चंडिका अमृत राव देशमुख का जन्म हुआ और भारत की शांति सेना ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की वर्ष 1987 में। यह अभियान लिट्टे का कब्जा समाप्त कर जाफना को मुक्त करवाने के लिए शुरू किया गया था। आज ही के दिन साल 1968 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना पहला मानव युक्त अपोलो मिशन अपोलो 7 केप कैनेडी से लॉन्च किया था और साल 1984 में 11 अक्टूबर को कैथरीन डी सुलविन अंतरिक्ष में टहलने यानी कि स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी थी। आज ही के दिन वर्ष 2011 में अर्थशास्त्री क्रिस्टोफर ए सिम्स और थॉमस जे सार्जेट को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सिस्टर निवेदिता जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी उनका निधन हुआ 11 अक्टूबर सन 1911 को। और आज ही के दिन प्रसिद्ध गणितज्ञ हरिश्चंद्र का जन्म हुआ सन 1923 में और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और भारत

0: प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम सुबह सुहानी में एक बार फिर से जानकारियों का सिलसिला लेकर हाजिर हैं हम। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज मनाई जा रही है महाराजा अग्रसेन की जयंती। इस अवसर पर शोभा यात्रा, कलश यात्रा, प्रतिमा पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। और ये पर्व विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। महाराजा अग्रसेन ने एक ईंट एक रुपया ये नियम चलाया था, जिसके तहत नगर में आने वाले हर नए परिवार को हर घर से एक ईंट और एक रुपया दिया जाता था, ताकि वे अपना घर बना सकें और व्यापार की शुरुआत कर सकें। और इसके साथ ही महाराजा अग्रसेन ने लोगों को ये शिक्षा भी दी कि धन का उपयोग ज़रूरतमंदों की सेवा और भाईचारे के लिए होना चाहिए। और श्रोताओं, 11 अक्टूबर सन 1902 को जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का। जी हाँ, भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान के कारण उन्हें आज भी पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। और जनता के प्रति उनके समर्पण के कारण उन्हें लोकनायक की उपाधि भी दी गई। उन्होंने समाज सेवा और सुधारों को प्राथमिकता दी और साथ ही समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी श्रोता, हमें भी आपसे मिलना और बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो कार्यक्रम सुबह सुहानी में बातों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। और आज यानी कि 11 अक्टूबर को है बॉलीवुड के उस शहंशाह का जन्मदिन जिसने सदियों से हमारे दिल पर हुकूमत की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे चहेते और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने भारतीय सिनेमा की परिभाषा बदल दी। जंजीर का वो एंग्री यंग मैन, शोले का जय, दीवार का विजय और आज के दौर में पीकू या गुलाबों सिताबों के नटखट बुजुर्ग अमित जी ने हर किरदार को अमर बना दिया। और उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो गिर कर फिर से खड़ा हो जाए और कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठकर पूरे देश को अपनी आवाज से बांध ले, वही असली सिकंदर होता है। और आज भी 84 वर्ष की उम्र में उनका जोश और काम के प्रति उनका समर्पण हम सब युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए उनके इस जन्मदिन को और भी यादगार बनाते हैं उनके एवरग्रीन इस गीत को सुनकर।

0: प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के

0: हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
4: श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। जब हम कहते हैं कि आज नवरात्रि है तो हम देवी माँ की पूजा करते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं, लेकिन श्रोताओ हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारी गलियों में जो नन्ही देवियाँ घूम रही हैं, जो बेटियाँ हैं, उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसी बातों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज का दिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। यशोदा कहा भी जाता है, खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ाओ। बेटे अगर इस घर का चिराग हैं तो बेटियां पूरे कुल का मान हैं। तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सबको, हमें अपनी बेटियों को सिर्फ पालना पोसना नहीं है, बल्कि उन्हें उड़ने के लिए हौसलों के पंख भी देने हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है, आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का मैदान हो, विज्ञान की प्रयोगशाला हो या फिर कॉरपोरेट जगत, हर जगह अपना और देश का नाम रोशन कर सकें। तो चलिए, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम सब भी मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने आसपास हर बेटी को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और बराबरी का माहौल देंगे, क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो आगे बढ़ती है और सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरा परिवार और पूरा समाज आगे बढ़ता है। और साल 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम है बाल विवाह समाप्त करें और बालिकाओं के अधिकारों पर निवेश करें। और आज का दिन सलाम करता है दुनिया की हर उस नन्ही परी को, हर उस बेटी को जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखती है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की आपको भी ढेरों बधाइयाँ।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
5: जी श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सुहानी में अब वक्त हो चला है आज के मुख्य समाचारों पर नजर डालने का। दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का एक साल पूरा हो गया है। इसी के साथ हिमाचल राज्य सरकार ने तकनीकी रूप से बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल के 110 दुर्गम मार्गों पर ड्रोन के जरिए डाक पहुंचाने की तैयारी शुरू की है और जिसमें 36 रूटों पर काम शुरू भी हो चुका है। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी कर इसे 3000 रुपये मासिक कर दिया है और साथ ही नई खेल नीति के तहत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सहायक जिला खेल अधिकारी की नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब वाले गठबंधन के साथ सैन्य कार्यवाही में शामिल होने की समीक्षा शुरू कर दी है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आज मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंची चोटियों पर ताज़ा हिमपात होने की संभावना है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों में खराब मौसम का येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अगर हम बात करें अपने शहर धर्मशाला के मौसम की, तो आज हल्की धूप के साथ बादलों की आवाजाही रहेगी। दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद भी है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार और कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: श्रोताओ, आज के सुबह सुहानी कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते बस यही कहेंगे कि आज है नवरात्रि का पहला दिन। अपने घरों के साथ साथ अपने मन को भी साफ और सकारात्मक रखिएगा। खुशियां बांटते रहिए और मुस्कुराते रहिए। इसके साथ ही अपनी रेडियो दोस्त वंदना रैना को दीजिए अनुमति। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा आकाशवाणी धर्मशाला। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे जोश के साथ मिलकर कहिए जय माता दी।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 8 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएंगी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार

0: संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
2: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती है। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
3: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्नअराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: देश के कुछ

0: बड़े पोर्ट ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
1: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
2: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं, इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
1: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदर आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
3: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबो प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनू, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधू, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध

0: कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मादोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये तीन भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रे शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार, दिल्ली की बसों में 2,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है, कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, NIA को पायलट पर केस। दैनिक जागरण की खबर है, पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिनी सराय, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai, Tamil Nadu this afternoon. Pradhan Mantri Dhan Dhani Krishi Yojana completes 1 year today. Northern Railway says All train services to

0: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
1: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
0: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
1: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
2: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
4: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
5: यार, 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
6: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
7: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
6: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
7: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: कार्यक्रम हिमगुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत, जिसे गाया है वर्षा कटोच ने।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
2: घबराएं नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
1: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
4: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
5: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
4: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
2: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
6: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
7: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
8: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th से 6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th से 8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
9: कार्यक्रम हिमगुंजन में दीजिए सुनिए अगला लोकगीत, और इस लोकगीत में आवाज है जन्मजय सिंह की।

0: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
1: घबराए नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
0: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
3: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
4: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
5: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिम गुंजन। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि ठीक 9 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय होगा कटे होंठ का समाधान और साथ ही दिवाली के पटाखों से होने वाली जलन का उपचार। इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर ठाकुर थुसु, और श्रोता भी उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए डायल करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर, और हमारा फोन नंबर रहेगा 01892224391।
3: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
4: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
5: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

धीरज शर्मा की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत, और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए किशोर धीमान को। और उनका साथ दे रहे हैं पवन डोगरा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिम गुंजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में मैं हूं वंदना रैना आपके साथ, और इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, एक बच्चे की मुस्कान पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसी शारीरिक स्थिति के साथ पैदा होते हैं जिससे उनकी मुस्कान थोड़ी सी अधूरी रह जाती है, और एक ऐसी ही समस्या है जिसे आम भाषा में कटा हुआ होंठ और मेडिकल भाषा में क्लेफ्ट लिप कहते हैं। समाज में लेकर इसे कई तरह की भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास हैं, लेकिन मेडिकल साइंस और प्लास्टिक सर्जरी से इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और इसी विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर ठाकुर थुसु, और वो इस कार्यक्रम में विषय के संबंध में हमें जानकारी देंगे, और साथ ही श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान उनसे जान सकते हैं। उसके लिए डायल करें आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो का टेलीफोन नंबर, और फ़ोन नंबर है 01892224391। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले डॉक्टर ठाकुर थुसु, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: और विषय की शुरुआत करते हैं, जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्लेफ्ट लिप यानी कि कटा हुआ होंठ, आखिर ये होता क्या है?
1: सभी को सबसे पहले मैं महालय की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ये एक बीमारियों का एक समागम है, एक ही बीमारी के दो पहलू हैं
0: जी,
1: जो कि एक जन्मजात बीमारी है। जब गर्भ में बच्चा बनता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में अगर कोई रुकावट आ जाती किसी भी कारणवश, तो वो हिस्सा जहाँ पर रुकावट आई है वो बनना बंद हो जाता है, और इस कारण ही ये क्लेफ्ट लिप या पैलेट होता है। क्लेफ्ट का मतलब एक दरार कह सकते हैं, होंठ पूरी तरीके से जुड़ते नहीं हैं, और उनके पीछे जो तालू है, जो हमारे जो होंठ के पीछे वाला जो पार्ट है जो मुँह के अंदर है
0: जी,
1: जो हार्ड और सॉफ्ट दो तरीके के तालू होते हैं, उसमें भी एक दरार रह जाती है, और जिनमें ये दोनों होते हैं उन्हें क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ लिप कटा होता है उन्हें सिर्फ क्लेफ्ट लिप बोलते हैं
0: जी,
1: और जिनमें सिर्फ पैलेट कटा होता है या तालू ही कटा होता है उनको क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं
0: जी। और डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या है ये जन्म से ही होती है या बाद में भी बच्चों को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है?
1: ये जन्मजात जन्मांद्रू ही बीमारी है, और जब बच्चा पैदा होता है तो इस बीमारी या इस कंडीशन के साथ ही वो पैदा होता है
0: जी। और एक श्रोता लाइन पर आ गए हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कौन है, क्या समस्या है उनकी। हेलो
2: वंदना जी, जय माता की।
0: जी जय माता दी। राणा जी कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया हैं डॉक्टर साहब। जय माता की।
1: नमस्ते जी, जय माता दी।
2: देखिए डॉक्टर साहब, जो कटे होंठ होते हैं उसमें बच्चे को मतलब बोलने में भी बड़ी दिक्कत होती है, उसकी जो बोलने की है वो क्या वो सुतला सा बोलता है।
1: हाँ जी।
2: तो इसका कोई आगे चल कर कोई इलाज है या उसका ये ऐसे ही पूरी उम्र ऐसे ही रहता है?
1: देखिए, जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट होती हैं उनकी हम कह सकते हैं कई सारे उसकी वजह से कष्ट होते हैं, और आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उस पर स्पेसिफिक पे ही जाऊंगा कि बातचीत करने में दिक्कत, जब हम बात करते हैं तो उसके कुछ हमारे फीचर्स होते हैं, जैसे जब हम होंठ मिलाते हैं तो जो ओष्ठ है, जो सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो ऐसे वाक्य या शब्द होते हैं जिसमें दोनों होंठ मिलने होते हैं, कुछ तालव्य होते हैं जिसमें जीभ को तालू से जुड़ना होता है, और तीसरा होता है नाक और मुंह के बीच में जो गैप होता है वो बंद होना चाहिए। तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट में इन तीनों चीज़ों में मुश्किल आती, इसी वजह से कुछ शब्द और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें तालू होंठ का यूज़ होता है वो बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते हैं। अब आप पूछते हैं कि क्या ये इस चीज़ का कोई इलाज है, तो इसका इलाज तीन तरीके से किया जाता है। पहला है कि खासतौर से जो क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन है वो ऑपरेशन या उसका इलाज यदि साल से सवा साल तक की उम्र के बीच में हो जाए वो एक आइडियल या सबसे अच्छी कंडीशन है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बोलना शुरू करता है। एक बार बच्चा गलत तरीके से बोलना शुरू कर देता है तो ऑपरेशन के बाद भी उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल।

0: नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल। तो बेस्ट तो है कि साल से सवा साल की उम्र में या उससे पहले बच्चे के तालू का ऑपरेशन किया जाए। इसके साथ दूसरी जो हमारे पास सिचुएशन या चीज़ या हमारे पास जो तरीका है वो स्पीच थेरेपी होती है। बच्चा जैसे ही बोलना सीखता है, चाहे उसका ऑपरेशन हुआ हो या ना हुआ, हमें स्पीच थेरेपी करानी चाहिए। और एक सही तरीके से कुछ वर्ड्स का उच्चारण जो बच्चे ये नहीं कर पाते वो सिखाना चाहिए। दोनों चीज़ यदि करी जाए तो काफ़ी हद तक बच्चे की स्पीच सुधर सकती है। तीसरी चीज़, अगर बच्चा बड़ा हो चुका है, 8 साल का है, 10 साल का है, ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बाद स्पीच में तुतलापन है या नाक से बोलते हैं और इतना ज़्यादा है कि दूसरों को बात समझ नहीं आती, जो कि एक क्लेफ्ट पैलेट की बड़ी समस्या रहती है, इसको हम वीलो फेरेंजियल इनकॉम्पिटेंस VPI नाम की एक वो देते हैं, और इसका भी ऑपरेशन किया जा सकता है जिससे नाक से जो आवाज़ आती वो कम होती है। लेकिन तुतलेपन के लिए हमें स्पीच थेरेपी पे ही निर्भर करना पड़ता है यदि हम इतना दूर चले जा चुके हैं और अभी भी तुतलापन है। लेकिन श्योरली ऑपरेशन और स्पीच थेरेपी दोनों को यदि मिलाया जाए तो बच्चों की स्पीच काफ़ी जो है समझने लायक हो जाती है।
1: ठीक है
0: आशा
1: डॉक्टर
0: करता
1: साहब,
0: हूँ आपको
1: बहुत
0: मेरे आपके जो सवाल था उसका जवाब इससे मिल
1: बिल्कुल
0: चुका
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: सही बात है, और बाकी भी आप बहुत कुछ बताएंगे कार्यक्रम में।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद
0: श्योर
1: जी
0: श्योर।
1: राणा जी, आपका धन्यवाद कार्यक्रम में प्रश्न पूछने के लिए। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये समस्या जो है वो बच्चों को जन्म के साथ ही होती है,
0: जी
1: तो
0: मैम,
1: अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान जब कोई माँ प्रेग्नेंट है तो उस दौरान उसकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो बच्चे में इस समस्या का कारण बनती हैं?
0: ऐसा मैम, आदतें तो आदतें इन द सेंस कि कुछ ऐसी कंडीशंस
1: हाँ,
0: हैं
1: कंडीशंस हैं बिल्कुल
0: जो गर्भावस्था में होने से इस चीज़ की चांसेस बढ़ जाती हैं।
1: जी
0: क्लेफ्ट लिप और पैलेट किसी एक वजह से नहीं होती,
1: जी
0: और एक से ज़्यादा वजहें जब मिल जाती हैं तो ये चीज़ सामने आती है। स्पेसिफिकली अगर हम गर्भावस्था की बात करें
1: जी
0: तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, यदि वो पहले ट्रेमेस्टर मतलब पहले 3 महीने के अंदर गर्भावस्था के दौरान हो जाते हैं, तो वो जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है यानी जो हमारे जो ऑर्गन्स बनते हैं या शेप लेते हैं उसमें बाधा करते हैं, और इस बाधा के कारण और भी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन क्लेफ्ट लिप और पैलेट भी हो सकता है। दूसरी इश्यू जो होती है जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट कॉज कर सकता है वो है माता का जो गर्भवती महिला है उनका न्यूट्रिशन।
1: जी
0: कई सारे ऐसे विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशली फोलिक एसिड होता है, जिसकी कमी से पाया गया है कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो सकता है। इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से और भी जन्मजात या जन्मांध बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन क्लेफ्ट लिप और पैलेट। अगर आप गर्भावस्था की बात करें तो वायरल इन्फेक्शंस और न्यूट्रिशन, दो चीज़ों को मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि उस चीज़ का अगर ध्यान रखा जाए तो वायरल इन्फेक्शन खैर हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रिशन है एटलीस्ट
1: जी
0: वो
1: जी
0: हमारे कंट्रोल में है।
1: जी एक श्रोता लाइन पर
0: हाँ जी
1: हैं।
0: मैम।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार मैडम जी,
1: जी, नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए।
0: मैं जतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में। जतीश
1: हाँ जी, एक नाम एक बार फिर से बता दीजिए।
0: जी,
1: सतीश जी, हाँ जी, प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से?
0: प्रश्न आया मेरा, जैसे जैसे जिन पत्नी है तो उसके है तो बच्चा नहीं ठहरता है, तो इसमें क्या करना चाहिए? और ठहरता नहीं है।
1: जी, ये प्रश्न तो आज के हमारे विषय से संबंधित नहीं है, और दूसरे श्रोताओं को भी हम ये बता दें कि आज कार्यक्रम में जिस विषय पर जानकारी दी जा रही है वो है कटे होंठ का समाधान, और साथ ही दिवाली के पटाखों से होने वाली जलन का उपचार, उसके बारे में भी कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी। और हमारे स्टूडियो में इस वक्त ये जानकारी देने के लिए मौजूद हैं प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर ठाकुर थुस्सू, और उनसे ये जानकारी हासिल करने के लिए श्रोता हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर मिलाइए जो है 01892-224391। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि गर्भावस्था की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे में महिलाओं को बहुत सावधान रहना चाहिए, स्पेशली अपने खान पान के लिए, तो गर्भावस्था के समय क्या होता है कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो समय समय पर उनसे अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं जिसमें माँ और बच्चे की स्थिति को जांच

0: जाता है, तो अल्ट्रासाउंड में भी क्या इस बीमारी का पता चल जाता है?
1: हाँ जी, देखिए अल्ट्रासाउंड जो स्पेशली जो एनामली स्कैन होता है जो अराउंड 20 वीक्स पे होता है,
0: जी
1: उसमें अगर जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट काफ़ी प्रोफाउंड है, मतलब जो होंठ और जो होंठों का और तालों का हिस्सा है
0: जी
1: वो बिल्कुल काफ़ी वाइड है, और बच्चे का उस टाइम पोजीशन ऐसी है अल्ट्रासाउंड करते टाइम, क्योंकि
0: जी
1: जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये फेस के आगे अगर बच्चे का हाथ आ गया है या बच्चे का फेस ऐसे मुड़ा हुआ है या
0: जी
1: क्लेफ्ट बहुत छोटा है,
0: जी
1: ज़्यादा वाइड नहीं है, तो हो सकता है अल्ट्रासाउंड स्कैन पे ये चीज़ मिस हो जाए। तो
0: जी
1: ज़रूरी नहीं कि अल्ट्रासाउंड पे ये चीज़ हमारे हाथ में आए, लेकिन अगर क्लेफ्ट वाइड है और उस टाइम बच्चे की पोजीशन ऐसी है जब अल्ट्रासाउंड करा जा रहा है, तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट, लिप स्पेशली जो है अल्ट्रासाउंड पे कभी कभी पकड़ा भी जाता है।
0: जी और महिलाओं के या माताओं के खान पान की आपने बात की, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह का भोजन उन्हें गर्भावस्था के दौरान लेते रहना है जिससे इस समस्या को और साथ ही इससे जुड़ी दूसरी समस्याओं को वो अवॉइड कर सकती हैं?
1: ऐसा है कि जो हमारी न्यूट्रिशन होती है
0: जी
1: उसका एक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये तीन हमारे बेसिक कोर हमारे जो न्यूट्रिशन के पिलर्स होते हैं। इसके सिवा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं।
0: जी
1: हम देखते हैं कि सभी गर्भवती महिलाओं को गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट भी जैसे कभी भी एक टाइम के बाद आयरन और फोलिक एसिड की दवाई दी जाती है, सभी
0: जी
1: को दी जाती है
0: जी जी
1: 16th 18th वीक के बाद। तो मैं तो कहता हूँ कि वो चीज़ एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोलिक एसिड की कमी से न केवल क्लेफ्ट लिप और पैलेट बल्कि बहुत सारे ऐसे जन्मजात रोग होते हैं जो कि फोलिक एसिड की कमी से होते हैं। तो आयरन फोलिक एसिड ज़रूर लें, ये चाहे हम न्यूट्रिशन का पार्ट मान के लें या हम इसको दवाई मान के लें, जैसे भी लें ये लें। और इसके सिवा जो हमारा जो भोजन है एक बैलेंस्ड रखें,
0: जी
1: प्रोटीन्स अच्छे रखें उसमें, और काफ़ी ज़्यादा पानी पिएं, और कैल्शियम वगैरह जैसे जैसे जो हमारी उस टाइम की ज़रूरतें होती हैं
0: जी जी
1: वो हम
0: उसके
1: पूरी
0: हिसाब से
1: करते हैं।
0: खान पान
1: बिल्कुल
0: होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: बिल्कुल, बट आयरन फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा
0: बहुत ज़्यादा
1: ज़रूरी है।
0: ज़रूरी
1: हाँ
0: है।
1: जी
0: हेलो
1: नमस्कार साहब जी।
0: जी, नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए।
1: हाँ प्रेम सिंह बोल रहा था नूरपुर से। विषय
0: जी प्रेम सिंह जी, आपको आज का विषय पता है?
1: तो पता सर, मैं प्लास्टिक सर्जन से बात करने
0: जी
1: था
0: जी आप
1: पेट
0: बिल्कुल
1: की।
0: डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, आप अपनी समस्या का समाधान उनसे जान सकते हैं। जी प्रश्न पूछिए अपना।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते जी, बताइए।
1: नमस्कार साहब जी। नमस्कार सर,
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए सर।
1: छोटा सा बच्चा है एक, हाँ,
0: आप प्लास्टिक सर्जन है तो केस भी प्लास्टिक का सर्जन का या ये? तो
1: जी आप बताइए, कष्ट बताइए ना।
0: सर उसके थोड़े पेशाब में प्रॉब्लम है, जो सुराख है वो सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पीछे यानी पीछे साइड में है। उसके मैंने 2 ऑपरेशन कराए हुए हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए वो, तो क्या वो प्लास्टिक सर्जरी का केस है ये?
1: ऐसा है कि है तो हाइपोस्पेडिया से प्लास्टिक सर्जरी का ही केस है, वो मैं समझ रहा हूँ, बट जो आज का हमारा जो प्रोग्राम है उस बारे में नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप कहाँ, नूरपुर में रहते हैं?
0: हाँ जी
1: नूरपुर से देखिए मैं आपको सजेस्ट यही कर सकता हूँ कि पास वाला जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चाहे वो आरपीजीएमसी टांडा है या आसपास एम्स जम्मू भी आपको पास ही पड़ सकता है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी में। इस कंडीशन का
0: जी
1: नाम हाइपोस्पेडियस है
0: हाँ जी
1: और इसके लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। आप मतलब चिंतित होने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हो जाना चाहिए, है ना। थैंक
0: जी
1: यू।
0: जी साहब जी,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी प्रश्न पूछने के लिए। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कटे हुए होंठ के बारे में, तो इसमें लोगों में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि अगर माँ गर्भवती थी तो उसने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देख लिया या उस समय कुछ काट कर खा लिया, तो ऐसे में भी बच्चे को ये समस्या हो जाती है। तो इस भ्रांति को आप किस तरह से देखते हैं और क्या ये सही है, गलत है, क्या बताएंगे इस बारे में?
1: देखिए जब हम क्लेफ्ट लिप और पैलेट की बात करते
0: जी
1: हैं या
0: जी
1: कोई भी जन्मजात बीमारियों की बात करते हैं, तो डेफिनेटली जो बच्चों के लिए तो हम बात करते ही करते हैं
0: जी
1: और करनी भी चाहिए, सबसे पहले हम बच्चों की ही बात करते हैं। बट ओवर द इयर्स अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने ये देखा है कि जब भी किसी बच्चे को कोई भी जन्मजात रोग स्पेशली क्लेफ्ट लिप या पैलेट होता है,
0: जी
1: तो वो उसके

0: माँ और फादर, माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है।
1: जी बिल्कुल सही।
0: नॉर्मली हम मानते हैं कि बच्चे का घर में आना बड़ी खुशी की बात होती है और हमेशा होती है, होनी भी चाहिए।
1: जी
0: और क्लेफ्ट लिप और पैलेट के जब बच्चे घर में आते हैं, तो मैं भी उनके पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और आप बहुत उतना ही खुश होइए अगर जितना इनको क्लेफ्ट लिप पैलेट ना होता।
1: जी
0: इस परेशानी का एक कारण ये होता है कि इसका जो ब्लेम है वो मदर पे, आप इंटेंशन मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मदर पे डाला जा सकता
1: जी,
0: है।
1: जी और कई बार समाज का भी प्रेशर होता है, घर के लोग कॉपरेट करते हैं लेकिन बाहर के लोग जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं
0: और वो इस चीज़ को लेके, एक तो वो अपने बच्चे को लेके बड़े कष्ट में होते हैं,
1: जी
0: प्लस ये सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट के जो कारण होते हैं उसमें किसी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या किसी तरीके की और चीज़ों का
1: जी जी
0: कोई रोल नहीं है। कोई भूत प्रेत या कोई जादू टोना, ये सारी चीज़ें हम एज डॉक्टर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते
1: जी।
0: और मैं लोगों की उसके बीच में नहीं जाना चाहता कि कौन क्या मानता है क्या नहीं मानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मदर को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कारण से। ये उनके कंट्रोल में नहीं है जो हुआ है और इससे उनका कष्ट बढ़ता ही है पेरेंट्स का। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही मतलब क्लियरली इस बारे में कोई दो राय नहीं रखना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो होनी है किसी भी वजह से।
1: जी
0: वो असली वजह साइंस को पता है और हम उन चीज़ पे ध्यान दें,
1: जी
0: ना कि हम बाकी चीज़ों के पीछे।
1: जी जी और डॉक्टर साहब एक बात ये है कि ये जो समस्या है ये आनुवंशिक है, जेनेटिक है, यानी कि घर में अगर एक बच्चे को ये समस्या है, वो बच्चा इस समस्या से जूझ रहा है, तो आने वाला जो दूसरा बच्चा है उसे भी ये समस्या होगी ही होगी।
0: ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है, वो इसलिए क्योंकि एक तो है कि माँ और फादर, मदर फादर को क्लेफ्ट लिप नहीं है, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं, लेकिन उनके घर पे भी ऐसा कुछ नहीं है, बट बच्चे को क्लेफ्ट लिप है।
1: जी
0: ऐसा होने की संभावना 600 से 800 बच्चों में एक है, यानी अगर 600 से 800 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से किसी एक बच्चे को क्लेफ्ट लिप होगा अगर पेरेंट्स को क्लेफ्ट लिप नहीं है। लेकिन अगर दो पेरेंट्स में से किसी एक को क्लेफ्ट लिप है या पैलेट है तो बच्चे को इसके होने की संभावना 5% है, 5 से लेके 8% है।
1: जी
0: और अगर एक बच्चे को, पहले बच्चे को है तो भी दूसरे बच्चे की होने की संभावना अराउंड 8% है।
1: जी
0: तो अगर किसी ऐसे सिचुएशन है जब पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि जैसे उनको भी क्लेफ्ट लिप है, तो मैं यही कहता हूँ कि एक पेरेंट अगर क्लेफ्ट लिप से है तो नेक्स्ट जो फर्स्ट जो चाइल्ड या कोई भी चाइल्ड बच्चा होगा उसकी चांस 5-8% होगी। और अगर दोनों ही पेरेंट्स
1: जी
0: उनको क्लेफ्ट लिप या पैलेट है
1: जी,
0: तो 20% चांस है कि उनके बच्चे को क्लेफ्ट लिप पैलेट
1: हो सकता है, होगा
0: होगा 20% चांस। मतलब अगर से 5 बच्चे हो रहे हैं तो एक बच्चे को क्लेफ्ट लिप पैलेट
1: होगा,
0: हो सकता है।
1: और डॉक्टर साहब एक बात और है कि अगर किसी का कटा हुआ तालू हो, क्लेफ्ट पैलेट जैसा आप बोल रहे हैं, तो क्या बार बार उसे कान का संक्रमण यानी कि ईयर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है?
0: हाँ जी बिल्कुल। अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती
1: हैं। जी जी
0: जी तो अगर हम चलिए लिप को तो हम थोड़ी देर में बात कर सकते हैं, पैलेट की प्रॉब्लम क्या हो सकती है। जो पैलेट है हमारा उसको तालू बोलते हैं
1: जी।
0: अगर हम खुद ही अपनी जीभ से देखें तो आगे का हिस्सा हार्ड होता है और पीछे वाला जो ऐसे लटक सा रहा होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं और आगे वाले को हार्ड पैलेट होता है।
1: जी।
0: इनका काम होता है कि मुंह और नाक को अलग करना। और इसके सिवा जो सॉफ्ट पैलेट की जो मसल्स होती हैं
1: जी,
0: वो एक यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग, एक गले में एक ओपनिंग होती है जो कि कान के साथ जुड़ती है, तो उस ओपनिंग के अराउंड वो मसल्स अटैच होती हैं। तो जब क्लेफ्ट पैलेट होता है तो वो हमारी जो ओपनिंग पूरी तरीके से खुलती नहीं है और बच्चों को बार बार कान का इन्फेक्शन, कान पकना होता है, और सर्जरी के बाद ये चीज़ इम्प्रूव हो जाती है। और कई बार इसमें अगर कान का पकना बहुत ज़्यादा होता है तो वो ग्रोमेट लगवाना पड़ता है
1: जी
0: और एक छोटी सी आप होज कह सकते हैं या पाइप कर सकते हैं जो कि जो कान में जमा पानी है उसको निकालता है।
1: जी
0: परंतु यदि ऐसा होता है तो इस चीज़ का इलाज संभव होता है।
1: जी और हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से बता दें कि आज

0: कार्यक्रम आरोग्य में आप जानकारी हासिल कर रहे हैं जिस विषय पर, वो है कटे होंठ का समाधान। और थोड़ी ही देर में हम दिवाली के पटाखों से होने वाली जलन का उपचार कैसे किया जाए, इस विषय पर भी बात करेंगे। और हमारे स्टूडियो में समय मौजूद हैं प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर ठाकुर थुस्सु, और श्रोता भी उनसे अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं और साथ ही जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए डायल करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर जो है 01892224391। और डॉक्टर साहब आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं।
1: थैंक यू।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
5: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
4: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
5: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
4: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
5: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
7: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
6: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
7: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
6: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
7: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में एक बार फिर से स्वागत है और डॉक्टर ठाकुर थुस्सु का भी हम कार्यक्रम में फिर से स्वागत कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कटे होंठ की समस्या के बारे में, उसके समाधान के बारे में। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि जन्म से ही बच्चा इस समस्या से ग्रसित होता है, तो ऐसे में मदर जब उसको दूध पिलाती है यानी कि फीडिंग करवाती है, तो उसे कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो इस समस्या से बच सकती है?
1: ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बच्चों की बात करते हैं
0: जी,
1: तो उनके न्यूट्रिशन जो है, उनकी फीडिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू होता है। जैसे मैंने बताया कि होंठ कटे और तालुक कटे होने की वजह से बच्चे के फीड में बड़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जब बच्चा लैच करता है और दूध पीने की कोशिश करता है, तो जो होंठ कटे होने की वजह से वो सक्शन नहीं क्रिएट हो पाता
0: जी,
1: इसलिए वो दूध ठीक से नहीं पी पाता। दूसरी प्रॉब्लम है जितना वो दूध मुंह में डालता है, तो तालू कटा हुआ होने की वजह से वो दूध नाक में चला जाता है और बाहर निकल जाता है
0: जी।
1: तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो बच्चा जितना दूध पी सकता है वो नहीं पी पाता और बच्चे का वेट गेन नहीं होता। ये एक कॉमन और एक ऑलमोस्ट हर क्लेफ्ट के बच्चे में हम देखते हैं कि फीडिंग की वजह से या फीडिंग की इनएडिक्वेट होने की वजह से बच्चे हमेशा वेट में कम रहते हैं, उनका हीमोग्लोबिन ब्लड कम रहता है और इसके कारण वो और भी समस्याओं और बीमारियों के लिए वो ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लेफ्ट लिप और पैलेट का। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं कि जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं
0: जी,
1: तो उसकी

0: पोजीशन हमें 45 40 45 डिग्री के एंगल पे रखनी चाहिए और दूध पिलाने के तरीकों को हमें चेंज करना चाहिए
1: जी।
0: उसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग चम्मच से दूध पिला सकते हैं और निप्पल और बोतल से मैं बहुत ज़्यादा एडवाइज़ नहीं करूँगा, हालांकि उससे थोड़ा आसान हो जाता है, बट हम मानते हैं कि उससे ज़्यादा दूध का बोलस जो है वो गले में जाता है, हो सकता है वो बच्चा उसको ठीक से ना निकल पाए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बच्चे को बार बार दूध पिलाना है। वो बार बार इसलिए पिलाना है क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो आधा दूध तो वो नाक से निकाल देता है
1: जी
0: और बाकी चीज़ वो हवा जो है पेट में डाल देता है, पेट हवा की वजह से फूलता है और उसको लगता है कि पेट भर गया है और बच्चा फिर सो जाता है।
1: जी
0: माँ को भी लगता है कि बच्चा सो गया है और कंफर्टेबल है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाता है कि पेट में ज़्यादा हवा होती है, दूध कम होता है, तो बच्चे का वेट गेन नहीं होता।
1: जी
0: तो बार बार दूध पिलाना, बार बार बच्चे को पीठ थपथपाना ताकि उसकी जो है एयर निकले,
1: जी
0: और जैसी वो निकलती बच्चा और दूध पीता है। दूसरा तीसरा है बच्चे को ऑलमोस्ट 45 या 45 डिग्री के एंगल पर रख के उसको दूध पिलाना है और थोड़ा कष्ट करके लेकिन बच्चे फीड कर लेते हैं।
1: जी
0: दूसरी जो इसकी समस्या होती है जो ग्रोइंग बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है कि जब बच्चा स्कूल चला जाता है तो उस टाइम पे उसकी बात बाकी के बच्चे नहीं समझ
1: समझ
0: पाते।
1: पाते हैं जी
0: ये बच्चे तो बच्चे मतलब टीचर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये बच्चे के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और फिजिकल प्रॉब्लम के साथ एक साइकोलॉजिकल जो इसका एस्पेक्ट होता है वो भी सामने आ
1: और
0: जाता है।
1: वो
0: बच्चा
1: सबसे
0: रिक्लूज हो
1: बड़ा
0: जाता है,
1: चैलेंज है माता
0: बच्चे
1: पिता
0: की
1: के
0: बात
1: लिए।
0: सिर्फ उसकी मदर समझ पाती
1: जी
0: है
1: जी
0: या फादर,
1: जी
0: तो बच्चा उन्हीं से ही बात करता है, खेलता नहीं है
1: जी
0: और क्योंकि उसे शर्म लगती है कि मैं जाऊँगा मेरे पे कोई हंस सकते हैं बच्चे
1: जी
0: या वो मेरी बात ही नहीं समझेंगे या मैं स्कूल में कुछ बोलने जाता हूँ तो सब इधर उधर देखते हैं या। तो ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ में। अगर हम एक बच्चा बन के सोचें जिसको
1: जी
0: क्लेफ्ट पैलेट
1: जी
0: है और
1: जी
0: वो बोल पा रहा है लेकिन उसकी बात नहीं कोई समझ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि इसका जो साइकोलॉजिकल पहलू बहुत मनोवैज्ञानिक पहलू बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है।
1: जी और एक तरह से माता पिता के लिए चैलेंज होता है कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको भी अच्छा रखें, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं वो घबराता है फिर औरों से बात शेयर करने के लिए, क्योंकि लोग उसकी बात ही नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में आपने अभी बात की, हमें जानकारी दी, जो बच्चे दूध पीते हैं लेकिन 6 महीने के बाद हम बच्चे को ऊपरी आहार भी देना
0: हाँ
1: शुरू
0: जी
1: कर
0: हाँ
1: देते
0: जी
1: हैं, तो ऐसे में माता पिता किस तरह से उसकी जो पोषण की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चे को खिलाना पिलाना थोड़ा सा
0: थोड़ा मुश्किल होता है।
1: डिफ़िकल्ट
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: थोड़ा सा मुश्किल है, तो माता पिता किस तरह से उसको ऐसा खाना दें, ऐसा आहार दें ताकि उसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकें और उसका विकास जो है वो भी दूसरे बच्चों की तरह हो?
0: देखिए, इसका जो अगर आंसर मैं देना चाहूँ तो एक चीज़ से ये काम नहीं हो सकती।
1: जी
0: जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है और उसका टाइम ऊपरी आहार लेने का हो जाता है, उस टाइम ही इसकी फर्स्ट 6 to 8 मंथ्स की एज में फर्स्ट सर्जरी प्लान की जाती है।
1: जी
0: उसका कारण ये होता है कि एटलीस्ट जो फर्स्ट सर्जरी होती है इसकी वो होंठों की होती है, शुरुआत में तालू की नहीं होती, तो कुछ जो इश्यूज़ होते हैं वो उस सर्जरी के बाद रिजॉल्व हो जाते हैं, सारे इशू नहीं क्योंकि तालू अभी कटा ही हुआ है।
1: जी जी
0: तो जिन बच्चों का सिर्फ होंठ कटा है तो उनका तो वो रिजॉल्व हो जाता है फर्स्ट सर्जरी के बाद, जिनका तालू भी कटा है तो फर्स्ट सर्जरी के बाद जो होंठ वाले इशू हैं फीडिंग के वो रिजॉल्व हो जाते हैं,
1: जी
0: तो कुछ इम्प्रूवमेंट उससे आ जाती है। प्लस हालांकि फीडिंग मुश्किल होती है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती अगर पेशेंट्स के साथ वो प्रॉपरली जो पीडियाट्रिशियन की बात माने और समझे, तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है। और जब तालू का भी ऑपरेशन हो जाता है 9वें महीने से 12वें महीने तक, उस टाइम ये वाला जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाता है कि जो तालू से जो खाना खाते हैं वो नाक से नहीं निकलता। तो फीडिंग जो एडवाइस है और सर्जरी दोनों को अगर हम मिला के चलते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा जब तक 9 महीने साल का होता है उसके काफ़ी सारे बच्चे के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं।
1: जी
0: फिर लैंग्वेज का इशू रह जाता है जो कि साल भर के बाद स्टार्ट होता है क्योंकि बच्चा बोलना तब ठीक से
1: जी जी
0: थोड़ा बहुत शुरू करता
1: जी
0: है।
1: और डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि इस समस्या के लिए जो समाधान है सर्जरी, वो बहुत कम, बहुत छोटे बच्चे को भी की जा सकती
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: लेकिन ऐसे में क्या है कि इतने छोटे बच्चे के लिए सर्जरी की बात सुन के ही माता पिता घबरा जाते हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ सर्जरी

0: इसका एकमात्र उपाय है या मेडिकल साइंस में कोई और तरीका भी है, कोई और इलाज भी है जिससे इस समस्या से माता पिता जो है वो आसानी से बाहर आ सकते हैं?
1: देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर छोटे बच्चे की सर्जरी होनी है तो माता पिता परेशान होंगे और इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है, सभी होंगे, है ना। अगर मैं भी पेरेंट हूँ तो मैं भी परेशान होऊंगा ही होऊंगा,
0: जी
1: बट इस चीज़ का इलाज सर्जरी ही है और किसी और तरीके से, किसी दवाई से या किसी और तरीके से हम इस क्लेफ्ट को बंद नहीं कर सकते। हाँ, तो आगे जो ऑपरेशन करना है उसके लिए इसीलिए कुछ एज बताई गई है। जैसे क्लेफ्ट लिप तो पहले दिन ही होता है बच्चे को पैदा होते, तो पहले दिन नहीं कर सकते ऑपरेशन।
0: जी
1: यूजुअली ऑपरेशन 3 मंथ्स के बाद लिप्स का होता है और उसमें भी 6 महीने के बाद ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। 6 महीने में बच्चा कुछ बड़ा हो चुका होता है और जैसे जैसे टाइम बीता है, जो पीडियाट्रिक एनेस्थीजिया जो बच्चों को निश्चेतन करते हैं, एनेस्थीजिया करते हैं, उसकी जो जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता जा रहा है, तो पहले से ये एनेस्थीजिया सेफ़ हो चुका है और पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में इसकी सर्जरीज होती हैं और अगर ठीक जगह से और ठीक तरीके से कराई जाए तो चांसेस किसी भी प्रॉब्लम्स के कम होते हैं। देखिए, ज़ीरो तो आप नहीं कह सकते कभी
0: जी
1: भी
0: जी
1: मेडिकल उसमें, बट श्योरली इस चीज़ में मैं पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि देखिए, जब जिस चीज़ का और कोई इलाज है नहीं तो हम उसका इलाज करें, लेकिन पूरा एहतियात बरत के रखें और
0: जी
1: आशा करें कि सब ठीक रहेगा।
0: और डॉक्टर साहब, सिर्फ एक ही सर्जरी करवानी पड़ती है या एक से अधिक सर्जरी होती है?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है मैम कि बच्चे को प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। से
0: जी
1: फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के सिर्फ क्लेफ्ट लिप है तो सिर्फ क्लेफ्ट लिप का ही ऑपरेशन करने से बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर क्लेफ्ट लिप है और पैलेट भी कटा हुआ है तो अगर किसी श्रोता ने बच्चे को देखा हो तो आप देखेंगे कि लिप और पैलेट जब कटा होता है तो नाक भी टेढ़ी होती है, प्लस जो जॉ लाइन से जब वो क्लेफ्ट जाता है तो वहाँ पर दांत का भी गैप बना होता है। तो ऐसे में बच्चों को एक से ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। पहला ऑपरेशन लिप का, दूसरा ऑपरेशन पैलेट का होता है जो कि साल सवा साल तक हो जाना चाहिए। 3 से 5 साल की उम्र में जो है ना, अगर तालू में कोई छेद रहता है तो उसका ऑपरेशन होता है। जब बच्चे का दांत आना शुरू होता है करीब 9 से लेकर 12 साल की उम्र में, तब जो दांत वाले एरिया में गैप होता है वहाँ बोन डाली जाती है। उसके बाद 16 से 18 साल की उम्र में जब बच्चा बड़ा हो चुका होता है तो उसकी नाक का ऑपरेशन होता है। तो मल्टीपल सर्जरीज करने की ज़रूरत पड़ती है
0: जी
1: और बट जो इम्पॉर्टेंट पहली दूसरी जो सर्जरी है, लिप और पैलेट की सर्जरी, ये साल सवा साल तक की उम्र में हो जानी चाहिए।
0: और सर्जरी के बाद बच्चा पूरी तरह से सामान्य जीवन जीता है?
1: ऐसा है कि सर्जरी के बाद बच्चा 100% सामान्य जीवन जीता है।
0: जी
1: हाँ, श्योरली अगर आप पूछें कि क्या वहाँ पे कोई कट का निशान या कोई टाँकों का निशान रहता है, तो बिल्कुल रहता है,
0: जी
1: बिल्कुल रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उसके फीडिंग में आसानी होती है, उसकी बच्चे की स्पीच इम्प्रूव्ड होती है, बच्चे की जो फेस की जो जो जो दिखने में जो पहले अलग सा लगता था वैसा नहीं लगता है, तो आई थिंक बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं और पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और देर इज़ नो रीज़न कि बच्चा जो कैपेबिलिटीज़ रखता है उसको ना अचीव कर पाए।
0: जी और डॉक्टर साहब, इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और
1: धन्यवाद।
0: अब रुक करते हैं दूसरे विषय की तरफ।
1: हाँ
0: जैसा
1: जी,
0: कि हमारे श्रोता जानते हैं कि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है और आज तो नवरात्रि का पहला
1: पहला
0: दिन
1: दिन
0: भी
1: है
0: है और इसके बाद दशहरा, दिवाली, मतलब खूब मौज मस्ती, धूम धड़ाका होगा। और इन त्योहारों की खास बात यह है कि इसमें पटाखे बहुत चलते हैं।
1: हाँ जी,
0: जी और लोग उसको एंजॉय भी बहुत करते हैं, आतिशबाजी को। लेकिन खुशियों में रंग में भंग तब डल जाता है जब पटाखे फोड़ते समय, दिए जलाते समय कोई दुर्घटना हो जाती है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो इसी बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम पटाखे चलाना शुरू करते हैं, दिए जलाना शुरू करते हैं, आतिशबाजी देखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने पास कौन कौन से सुरक्षा के साधन रखने चाहिए?
1: देखिए, ये चीज़ और ये टॉपिक भी मेरे लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं दोनों तरफ रह चुका हूँ।
0: जी
1: एज ए चाइल्ड मुझे पता है कि पटाखों से कितना मज़ा आता है
0: जी जी
1: और

0: डिसिप्लिन होना चाहिए। हमें पता है कि हम पटाखे रोज़ नहीं फोड़ते, हम पटाखे फोड़ने वाले प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। जो पटाखे फोड़ रहे हैं वो बच्चे फोड़ रहे हैं या बड़े फोड़ रहे हैं, और उस टाइम खुशी में मौज मस्ती में जितना ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रख पा रहे, ये हमें सबको पता है। हमें ये भी पता है कि पटाखा जब फूटता है तो उससे आग लग सकती है, हमने सुना हुआ है, हमने देखा हुआ है, हर साल ऐसा होता है। तो आई वुड से कि खुशी तो हमें मनानी, बिल्कुल मनानी है, लेकिन उसके साथ हमें डिसिप्लिन को जोड़ना है। डिसिप्लिन अपने कपड़ों में, जो हम कपड़े पहनते हैं, डिसिप्लिन अपने उस टाइम के चाल चलन में, डिसिप्लिन जब हम पटाखे फोड़ते हैं तब मुझे लगता है कि पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं, एनक्लोज स्पेस तो नहीं है, ऐसी जगह जहाँ पे रनिंग सोर्स ऑफ वाटर या पानी रखा जाए, बाल्टी रखा जाए, कपड़े ऐसे सिंथेटिक ना पहने जो आग पकड़ें, दिए जलाते टाइम, और इवन जो सिंपल पटाखे माने जाते हैं, आप लोगों को मतलब आश्चर्य होगा कि हमें लगता है कि बम से आग लगती है या बम खतरनाक है, बम खतरनाक है, बिल्कुल नो डाउट बम खतरनाक है, बट सबसे ज़्यादा जो जल जाते हैं लोगों अनार से,
1: अच्छा,
0: और अनार को हम सबसे ज़्यादा सेफ पटाखा मानते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और 65% जो दीपावली के जो भुवंस होते हैं अनार से होते हैं। तो आई वुड से अगेन एंड अगेन हमें पता है चीज़ों का और हम जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करें हर लेवल पे,
1: जी,
0: स्पेशली डिसिप्लिन
1: जी। और अगर सावधानी बरतें लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाए, हाँ, और थोड़ी सी असावधानी हो जाए, वही कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो अगर हाथ जल जाए तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए?
0: देखिए, अगर जब हम दीपावली मनाते हैं तो जिस एरिया में हम पटाखे चला रहे हैं
1: जी
0: या दिए जो भी चीज़ें हैं, तो उस एरिया में हमें एक पानी की बाल्टी रखनी चाहिए। अगर वहाँ पे नलका नहीं है, बेस्ट तो है कि अगर रनिंग सोर्स है वाटर का जैसे नलका। दूसरा है, जो पानी हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि हमें बिल्कुल फ्रिज का पानी डालना है, ये बड़ा ज़रूरी है। नॉर्मल टैप वाटर, जो टेम्परेचर उस टाइम एम्बियंट टेम्परेचर है, वही वाला पानी होना चाहिए। अच्छा, बर्फ़ नहीं लगानी है।
1: अच्छा, बर्फ, लेकिन कई लोग लगा देते हैं बर्फ, है ना?
0: ये सोर्स हमको पानी का वहीं रखना है। और जैसे ही हमें लगता है कि हाथ जो बर्न्स होते हैं दीपावली, जो माइनर बर्न्स होते हैं, वो हाथ के होते हैं या फेस के होते हैं
1: जी,
0: और कहने के लिए माइनर होते हैं, लेकिन मतलब हमारी प्लास्टिक सर्जरी उसमें हम इनको स्पेशल एरिया बर्न्स बोलते हैं, क्योंकि हाथ के बर्न्स जो है हाथ को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, और जो फेस का बर्न है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आँखों पर हो सकता है। तो सबसे पहले तो जहाँ पर भी बर्न हुआ है और हम देखें कि वो एरिया आसपास का सेफ है कि नहीं,
1: जी,
0: उसके और जलने की या और आग लगने की संभावना तो नहीं, सबसे पहले पेशेंट को सेफ जगह लगाया लाया जाए, उसके हाथ को, अगर हाथ जलाए या फेस को, अच्छी तरह पानी से 10 से 15 मिनट धोया जाए। ऊपर आलू अंडा या कोई टूथपेस्ट या कोई भी ऐसी चीज़,
1: एलोवेरा जेल,
0: कुछ भी ना लगाए, आइडियली तो मैं कहूँगा कुछ भी ना लगाया जाए, और आसपास के हॉस्पिटल ले जाया जाए, और लोगों के पास कुछ एंटीबायोटिक क्रीम्स होती हैं वो लगा लें तो लगा लें, बट कोई और ऐसी चीज़ जिससे इन्फेक्शन हो सकता है वो ना लगाया जाए, और एक साफ़ कपड़े में जस्ट उसको लपेट के ले जाना चाहिए। बट सबसे ज़रूरी ये तब होगा जब उस टाइम हमारा जो है अवेयरनेस होगी कि जो हो चुका है वो बढ़े ना, तो हम पेशेंट को एक सेफ जगह पे रखें, और हमने पहले से ही उस टाइम, फिर आप पानी ढूंढेंगे, फिर मग्गा ढूंढेंगे, तो वो पहले से ही वहाँ पे पड़ा हुआ होना चाहिए। प्लस जो हमारी प्रैक्टिसेज हैं कि हम कैसे अनार जला रहे हैं, कौन जला रहा है, और उसको कैसे सुपरवाइज किया जा रहा है, वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ हमें देखनी चाहिए।
1: और आपने अभी कहा कि जैसे कोई लग जाए हाथ में, जल जाए, तो उसको साफ़ कपड़े से करना, हाँ, चाहिए, कवर करना है या उसको बांधना
0: नहीं,
1: है, किस तरह
0: नहीं,
1: से?
0: बिल्कुल ही बांधना नहीं। देखिए, उसको पहले तो पानी से धोना है
1: जी,
0: और धोना है, यूजुअली हम कहते हैं कि हम 10 से 15 मिनट उसको पानी से धोना है, जब तक उसमें जलन ख़त्म ना हो जाए
1: जी।
0: लेकिन देखा जाता है कि जब बर्न्स थोड़े सुपरफिशियल होते हैं तो उसकी जलन ख़त्म नहीं होती, दर्द हो रही होती
1: जी, जी, जी।
0: तो बेस्ट है कि 10-15 मिनट धो के एक साफ़ कपड़े से जस्ट उसको ढक के सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाए अगर पूरा हाथ जला है, बहुत ही माइनर बर्न है। हाँ, अगर ऐसा है जहाँ आपको लगता है कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, तो उसको आप 15 मिनट धो के उसके बाद आप उसके ऊपर एंटीबायोटिक कोई भी क्रीम लगा सकते हैं और उसको वैसा छोड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि बर्न इतना बड़ा है कि उसमें पट्टी की ज़रूरत है, या पाम के

0: पर बर्न है। पाम जो है इसको हम स्पेशल एरिया बर्न बोलते हैं, क्योंकि जो पाम का बर्न अगर डीप हो और हम ध्यान ना दें ज़्यादा,
1: हथेली जल जाए अगर।
0: हथेली,
1: जी
0: पाम
1: जी
0: माने हथेली जो आगे
1: जी
0: वाला
1: जी
0: पार्ट है या पीछे
1: जी
0: वाला जो भी, तो उससे उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं जब वो हील होता है ना, तो वो टेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए जब पाम का बर्न है तो उसके लिए मुझे लगता है आपको हॉस्पिटल जाना स्पेशली। दूसरा है कि जो फेस का बर्न है,
1: जी
0: फेस के बर्न में आंख जल जाने का बहुत बड़ा एक रिस्क
1: जी
0: होता है।
1: आंखों में अगर चिंगारी लग जाए तो क्या करें।
0: चिंगारी या बारूद
1: जी जी
0: दोनों चले जाए तो हमें ये सारी चीज़ें तो करनी है, लेकिन हमें फिर इसमें तो श्योरली हॉस्पिटल जाना है और वहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आइज़ के डॉक्टर अवेलेबल हो।
1: जी
0: क्योंकि इस आँख को हम खुद भी धोते हैं, लेकिन आँखों को धोने का भी तरीका होता है कि
1: जी
0: उसको अंदर से बाहर की तरफ धोना होता है, कितनी देर के लिए धोना होता है, कॉर्निया में कितना डैमेज है, कंजक्टिवा में कितना डैमेज है, ये सारी चीज़ असेस करनी पड़ती है। क्योंकि वो चीज़ अल्टीमेटली फिर विजन लॉस में या विजन इम्पेयरमेंट में या कॉर्नियल जो होता है स्कारिंग में प्रॉब्लम कर सकता है।
1: जी
0: तो इनको बड़े ही सीरियसली लेना चाहिए हमें, और हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। पहले तो कोई दुर्घटना ना हो उसके
1: जी
0: लिए तैयार होना
1: जी
0: चाहिए,
1: जी
0: और अगर दुर्घटना हो तो क्या करना है, ये पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए हमें।
1: जी और डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा हाथ जलता है तो हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उस जगह पे फफोले पड़ जाते
0: हाँ
1: हैं
0: जी
1: और कई लोग क्या करते हैं कि उनको खुद ही फोड़ देते
0: हाँ जी,
1: हैं, पानी निकलता है उनसे, तो ये सही है क्या ऐसा करना?
0: देखिए फफोले अगर अगर आप एज ए प्लास्टिक सर्जन पूछें तो 2 सेंटीमीटर से छोटा अगर है
1: जी
0: नॉर्मली,
1: जी जी
0: मैं ये तो लोगों को एडवाइज़ नहीं करूँगा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, तो हम उसको फोड़ना नहीं चाहते ड्रेसिंग के दौरान। लेकिन अगर फफोला 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हम उसको यूजुअली फोड़ना चाहते हैं। बट मेरी सजेशन ये है कि अगर इतना जल गया ही है ऑर्गन, हाथ या बाँह जहाँ फफोले उग गए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली भी अगर जहाँ फफोले हैं तो वो एक सुपरफिशियल बर्न होता है, डीप बर्न्स में फफोले नहीं होते।
1: अच्छा
0: सो
1: जी
0: इसका मतलब है वो ठीक हो जाएगा। बट श्योरली अगर आप एक किसी भी मेडिकल उसमें जाएँ तो वो आपकी जो ड्रेसिंग है वो एक स्टेराइल तरीके से करेंगे। साथ में इट इज़ ऑल्सो पर्टिनेंट कि टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाया जाए और कुछ एंटीबायोटिक्स भी लिए जाएँ ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर बिल्कुल ही माइनर बर्न्स के लिए तो चलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ फफोले वगैरह हो गए हैं तो इट्स बेटर टू टेक अ मेडिकल
1: जी
0: ओपिनियन।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे हम घरों पे करते हैं कि थोड़ा सा बर्न हो उसके बाद हम थोड़ा ठीक होती है वो जगह, तो वहाँ पे हम नारियल का तेल लगाना शुरू कर देते हैं, और ऐसा कहा जाता है, मतलब घर में माता पिता कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नारियल का तेल लगाओगे तो निशान नहीं रहेगा जलने का, तो ये सही है क्या, ऐसा करना चाहिए?
0: देखिए पार्टली करेक्ट है बिल्कुल, और लेकिन जब तक हम पूरी चीज़ नहीं समझेंगे तब तक ये करेक्ट नहीं है।
1: जी
0: जो कभी भी कोई बर्न है अगर वो बिल्कुल सुपरफिशियल नहीं है तो वो स्कारिंग के साथ हील होगा, है ना। स्कारलेस हीलिंग हमारे पास अभी तक आई नहीं है। तो सबसे पहले तो जो भी नारियल तेल हम लगाते हैं हम भी एडवाइस करते हैं, तो पहला तो है उसका एम ये होता है कि जो स्कार बन गया है, इसमें इम्पॉर्टेंट है स्कार बन चुका होना चाहिए, मतलब वो घाव भरा हुआ होना
1: जी
0: चाहिए,
1: जी
0: अभी घाव नहीं होना चाहिए।
1: जी जी जी
0: एक बार घाव भर जाता है तो हम स्कार मॉड्यूलेशन जिसको बोलते हैं, मतलब उसको उस घाव को उस स्कार को सॉरी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसका एक स्टेप होता है कि हम उसकी मसाज करते हैं प्रेशर से। जब मसाज करते हैं तो उसके लिए एक मसाज के लिए एक लुब्रिकेंट की ज़रूरत होती है, कोकोनट ऑयल वो एक लुब्रिकेंट होता है। इसके सिवा हम लोग उसके ऊपर सिलिकॉन की शीट वगैरह लगाते हैं या प्रेशर गारमेंट्स पहनते हैं, ये अलग अलग तरीके होते हैं ताकि स्कार कम हो। तो नारियल तेल की मालिश करना प्रेशर के साथ एक तरीका है, सिर्फ नारियल तेल लगा लेने से बात नहीं बनती, बट
1: जी जी
0: श्योरली मसाज करने से।
1: फ़ायदेमंद
0: हाँ
1: होता
0: जी
1: है
0: हाँ
1: जी।
0: जी
1: और डॉक्टर साहब, पूरी सावधानी बरतते हैं लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इस त्यौहार के लिए और पटाखे चलाने के लिए, तो ऐसे में माता पिता को क्या कहेंगे कि किस तरह बच्चों का ध्यान रखें?
0: देखिए मैं फिर कहता हूँ, मैं भी एक बच्चा ही था और मैं अपनी बात याद कर सकता हूँ कि मैं क्या
1: जी
0: सोचता था, और मैं एक पेरेंट भी हूँ। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए बच्चे तो जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो करना ही चाहते हैं,
1: बिल्कुल
0: क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट ही खेलना है,
1: जी
0: आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम ही खानी है,
1: जी
0: वैसे ही पटाखे भी हैं। तो आई वुड से जो सेंट्रल वर्ड है वो डिसिप्लिन है, कि डिसिप्लिन हम अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं, कुछ चीज़ें होनी चाहिए और जो चीज़ नहीं हो

0: चाहिए, वो नहीं होनी
1: नहीं
0: चाहिए।
1: होनी चाहिए
0: तो
1: बिल्कुल।
0: जैसे दिन को पटाखे फोड़ने, बिना गाइडेंस के पटाखे फोड़ने, आई थिंक ये सब नहीं होना चाहिए। अगर
1: जी
0: बच्चे पटाखे फोड़ना चाहते हैं तो एज अ पेरेंट्स वी शुड बी देयर, और बच्चों को मना होना चाहिए कि वो अकेले पटाखे नहीं फोड़ेंगे। दिन को पटाखे में क्या होता है, उसमें आग लगती है, हमें पता नहीं चलता
1: पता नहीं चलता
0: और
1: जी,
0: वो फट जाता है।
1: और चिंगारी कहाँ गिरी है वो भी
0: हाँ,
1: पता
0: कुछ
1: नहीं
0: नहीं पता
1: चलता
0: चलता।
1: जी
0: तो ऐसी चीज़ें हैं, तो ये पेरेंट्स जानते हैं सब,
1: जी
0: बट हमको इम्प्लीमेंट करना होता है ना। हम कभी टाइम की कमी की वजह से बोलते हैं, अच्छा जाओ तुम पटाखे फोड़ लो, हम आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, पटाखे फोड़ने हैं तो हमारे सामने फोड़ने।
1: जी
0: उससे बच्चों को भी लगेगा कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए, है ना।
1: जी
0: तो वो एक मेरी तरफ से जो है पेरेंट्स के लिए मैसेज
1: जी
0: होगा।
1: और यही है कि त्योहार को मिलजुल कर मनाएं और
0: हाँ
1: अपने
0: जी
1: बच्चों के लिए समय जरूर निकालें।
0: बिल्कुल, बच्चों के लिए, और खुशी से मनाएं, शुरू भी खुशी से करें और अंत भी खुशी से ही
1: जी
0: करें,
1: बिल्कुल सही कहा, और हम भी यही कहेंगे कि पटाखों की रोशनी तभी तक खूबसूरत है जब तक हम सुरक्षित हैं, और छोटी सी सावधानी हमारे त्यौहार की खुशियों को दोगुना कर सकती है। डॉक्टर ठाकुर थुसु, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें और हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।
1: जी श्रोताओं, और हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और आप तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला सुरेंद्र कपूर से। अब अपनी रेडियो दोस्त वंदना रैना को दीजिए अनुमति। आप सब सुरक्षित रहिए और मिलजुल कर त्योहारों को मनाइए और उनका आनंद लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम आरोग्यम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 9:50 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ DTS तथा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज पूरा हुआ एक वर्ष। प्रदेश मंत्रिमंडल की कल शिमला में आयोजित बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। निर्विरोध चुनी गई पंचायतें जारी प्रोत्साहन राशि को 7 प्रकार के कार्यों पर खर्च कर सकेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के तीसरे दीक्षा समारोह में करेंगे शिरकत। और शारदीय नवरात्र आज से शुरू, प्रदेश के शक्तिपीठों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 14,000 नई नौकरियों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपये तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने को मंजूरी दी। बैठक में विधवाओं, निराश्रित और एकल महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए वार्षिक आय सीमा को

0: 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की गई। विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वन मित्रों का मासिक मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि 3 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में सरकारी विभागों को अपनी दूध और दुग्ध उत्पादकों की आवश्यकताओं की खरीद मिल्कफेड से करने के निर्देश देने का निर्णय लिया गया। बैठक में एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए कांगड़ा और मंडी में विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके परिवारों के लिए राष्ट्रपति मेधावी सहायता योजना के तहत अचानक उत्पन्न गंभीर संकट, बीमारी या चोट की स्थिति में वित्तीय सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी। मृत्यु की स्थिति में 1,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को मुख्यमंत्री द्वारा सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरिणी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने तथा सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने 9 इको टूरिज्म स्थलों के आवंटन को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश ई स्टाम्पिंग नियम 2026 में संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में सुजानपुर के राज्य स्तरीय होले मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में बैठक में एचपी शिवा परियोजना की अवधि को 2 वर्ष बढ़ाकर जून 2028 से जून 2030 करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पोषण नीति 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं अनिल राजपूत।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा महाकुंभ 6.0 के दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कांगड़ा के लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
2: एनआईटी हमीरपुर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा महाकुंभ 6.0 के दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कांगड़ा के लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दूसरे दिन का केंद्रीय विषय विज्ञान में भारत विकसित भारत रहा, जिसके अंतर्गत विज्ञान अनुसंधान नवाचार और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा महाकुंभ केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि शिक्षा विज्ञान अनुसंधान नवाचार और राष्ट्र निर्माण को एक मंच से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार शोध और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज तकनीक दुनिया को तेजी से बदल रही है, ऐसे में समाज की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं होना चाहिए बल्कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनना चाहिए कि वे रोजगार तलाशने वाले ही नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं।
3: यार 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है
4: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
5: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
4: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जिला किन्नौर में पंचायत चुनावों के दौरान निर्विरोध चुनी गई 18 ग्राम पंचायतों को 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि निर्धारित 7 प्रकार के कार्यों पर खर्च कर सकेंगी। जिला पंचायत अधिकारी किन्नौर संजय ठाकुर ने बताया कि इस संबंध में जिले के 3 विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विस्तृत ब्यूरो के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
6: पंचायतें इस राशि से पुस्तकालयों का निर्माण और साज सज्जा, व्यायाम शालाओं की स्थापना, पार्किंग स्थलों का निर्माण, पार्कों और बच्चों के खेल क्षेत्रों का विकास, ओपन एयर जिम तथा खेल मैदानों का निर्माण

0: एवं रख रखाव कर सकेगी। इसके अलावा पंचायत भवनों की छतों पर सरकारी नियमों के अनुसार नेट मीटरिंग सहित रूफटॉप सोलर पावर पॉइंट स्थापित करने और सरकार की मंजूरी से अन्य कार्य करवाने का भी प्रावधान है। निर्देशों के अनुसार पंचायतों को प्रस्तावित कार्यों की सूची ग्राम सभा से स्वीकृत करवानी होगी। प्रोत्साहन राशि का उपयोग एक वर्ष के भीतर करवाना अनिवार्य होगा। किन्नौर जिले में कुल 80 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें कल्पा विकास खंड की 26, पूह की 27 और निचार की 27 पंचायतें शामिल हैं। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के तीसरे दीक्षा समारोह में आज तीन न्यायिक हस्तियों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए मानद उपाधियों से सम्मानित किया जाएगा। समारोह समरहिल स्थित ज्ञान पथ सभागार में आयोजित किया जाएगा। इनमें भारत के मुख्य पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MS रामचंद्र राव और झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। शारदीय नवरात्र आज से आरंभ हो गए हैं। नवरात्र के चलते प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कांगड़ा जिला में प्रसिद्ध शक्तिपीठों माँ ज्वाला जी, श्री ब्रजेश्वरी देवी व चामुंडा देवी सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता से।
2: जिला कांगड़ा के तीन प्रमुख शक्तिपीठों माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर और माता चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में नवरात्रों के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे और मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठे। नवरात्रों के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान भी आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के कपाट सुबह 5 बजे से ही खोल दिए गए हैं। नवरात्रों के अवसर पर मंदिरों को फूलों से विशेष रूप से सजाया गया है। नवरात्रों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए 200 रुपए की पर्ची पर शीघ्र दर्शन की विशेष सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इस जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दौरान शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए विशेष भीड़ प्रबंधन व्यवस्था की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: इस बीच नवरात्र को लेकर राजधानी शिमला के तारादेवी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने आधे घंटे के अंतराल पर पुराने बस अड्डे से बसें चलाएगा। ये व्यवस्था 11 से 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बस सेवा सुबह 9:15 बजे से शुरू होगी। निगम प्रबंधन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर देंगे हैं। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने कल हुई कैबिनेट मीटिंग के लिए किए गए निर्णयों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती को स्वीकृति। पंजाब केसरी, दिव्य हिमाचल व हिमाचल दस्तक के मुताबिक सुक्खू सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 14,000 पद भरने को मंजूरी। जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं, अलग अलग विभागों में 14,000 पद भरे जाएंगे, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में। दैनिक भास्कर लिखता है, चिंतपूर्णी में 24 घंटे खुले रहेंगे कपाट, ज्वालाजी में 5 बजे खुलेगा मंदिर। हिमाचल दस्तक की एक अन्य खबर है, आंदोलन से घबरा गई है केंद्र सरकार। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, सीजेपी प्रदर्शन को सीएम सुक्खू का समर्थन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जन धन धान्य कृषि योजना का आज पूरा हुआ 1 वर्ष। प्रदेश मंत्रिमंडल की कल शिमला में आयोजित बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। निर्विरोध चुनी गई पंचायतें जारी प्रोत्साहन राशि को 7 प्रकार के कार्यों पर खर्च कर सकेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के तीसरे दीक्षा समारोह में करेंगे शिरकत। और शारदीय नवरात्र आज से शुरू, प्रदेश के शक्तिपीठों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
4: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
3: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
4: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां। आप सभी अजीज श्रोताओं को ज्योति

स्नेह अभिवादन। श्रोताओं, आज का दिन बेहद पावन है। आज से शक्ति की उपासना का महापर्व यानी शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। आज पहला दिन है जहां हम सब मिलकर माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं। चारों तरफ फैली भक्ति की इस महक और घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बीच आकाशवाणी धर्मशाला की ओर से आप सभी श्रोताओं को नवरात्रि की अनंत मंगल कामनाएं। आइए माँ के चरणों में हाजिरी लगाएं और माता की ये आरती गाएं।

0: आकाशवाणी धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। कारवां को आगे बढ़ाते हैं और श्रोताओं को बता देते हैं एक बार फिर कि श्रोताओं, आज है सदी के महानायक, हम सब के चहेते अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिवस। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म अमर अकबर एंथनी से ये गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन है, किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन साहब की आवाजें।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babosate.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट, मैं

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.
0: Who's

0: हालत वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट।

0: हर जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी, सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: जी श्रोताओं, कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस कारवां को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। करण अर्जुन फिल्म से ये गीत आपको सुनवाते हैं। कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक के मिले जुले स्वर, इंदिवर के बोलों को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

ये संगीत है राम लक्ष्मण का। रविंद्र रावल के बोलों को आइए सुनते हैं फिल्म हम साथ साथ हैं के इस गीत में। हरिहरन, प्रतिमा राय और साथियों की आवाजें हैं।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज से सजा ये गीत फिल्म आदमी खिलौना है से। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम, श्रवण।

श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम गीतों के कारवां की अंतिम पेशकश। इसी के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करने की लेते हैं आपसे अनुमति। नमस्कार। एक 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं माता की इस भेंट के साथ।

भुवनेश्वरी तनवर की आवाज में ये लोकगीत आपने सुना। आकाशवाणी धर्मशाला से हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं और इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर का। कार्यक्रम का अगला लोकगीत अब आपको सुनवा रहे हैं अमर सिंह भरमोरिया की आवाज में।

0: कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में लौटकर आएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई। बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले लोकगीत में बलदेव सांख्यान को।

कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। और कार्यक्रम में अब अगला लोकगीत आपको सुनवाते हैं।

0: कार्यक्रम के इसी अंतिम लोकगीत के साथ अब लेते हैं आप सभी श्रोताओं से कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। शारदीय नवरात्र आज से आरंभ हो गए हैं। नवरात्र के चलते प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कांगड़ा जिला में प्रसिद्ध शक्तिपीठों मां ज्वालाजी, श्री बृजेश्वरी देवी व चामुंडा देवी सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता से।
2: कांगड़ा के तीन प्रमुख शक्तिपीठों माता बृजेश्वरी देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर और माता चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में नवरात्रों के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे और मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठे। नवरात्रों के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान भी आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के कपाट सुबह 5 बजे से ही खोल दिए गए हैं। नवरात्रों के अवसर पर मंदिरों को फूलों से विशेष रूप से सजाया गया है। नवरात्रों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए 200 रुपए की पर्ची पर शीघ्र दर्शन की विशेष सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इस जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दौरान शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए विशेष भीड़ प्रबंधन व्यवस्था की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: इस बीच नवरात्र को लेकर राजधानी शिमला स्थित कालीबाड़ी मंदिर व तारादेवी मंदिर में माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तारादेवी मंदिर के लिए श्रद्धालुओं के लिए पथ परिवहन निगम आधे घंटे के अंतराल पर पुराने बस अड्डे से बसें चलाएगा। ये व्यवस्था 11 से 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बस सेवा सुबह 9:15 बजे शुरू होगी। निगम प्रबंधन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के तीसरे दीक्षा समारोह में आज 3 न्यायिक हस्तियों को उनके विशिष्ट योगदान के

0: मानद उपाधियों से सम्मानित किया जाएगा। समारोह समरहिल स्थित ज्ञान पथ सभागार में आयोजित किया जाएगा। इनमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MS रामचंद्र राव और झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस MM सुंदरेश समारोह की अध्यक्षता करेंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना विशिष्ट अतिथि होंगे, जबकि हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व HPNLU के चांसलर जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा महाकुंभ 6.0 के दूसरे दिन कल राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कांगड़ा के लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: NIT हमीरपुर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा महाकुंभ 6.0 के दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कांगड़ा के लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दूसरे दिन का केंद्रीय विषय विज्ञान में भारत विकसित भारत रहा, जिसके अंतर्गत विज्ञान अनुसंधान नवाचार और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा महाकुंभ केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि शिक्षा विज्ञान अनुसंधान नवाचार और राष्ट्र निर्माण को एक मंच से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार शोध और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज तकनीक दुनिया को तेजी से बदल रही है, ऐसे में समाज की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं होना चाहिए बल्कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनना चाहिए कि वे रोजगार तलाशने वाले ही नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जयंत प्रकाश नड्डा कल 12 अक्टूबर को केलांग में हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इस केंद्र के माध्यम से ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर शोध को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान केलांग पुलिस मैदान में वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। इसी के साथ सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए।

0: श्रोताओ नमस्कार, मैं हूँ नर्मदा शर्मा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे श्रीमती निष्ठा वासन जी से, जो कि आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं। आप धर्मशाला के निवासी हैं। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: हम अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं।
1: हाँ नर्मदा जी, मैं धर्मशाला की ही निवासी हूँ। मैं यहाँ बड़ोल में रहती हूँ और मैं एक रिटायर्ड अध्यापिका हूँ। मेरा लगभग नौकरी का जो समय है वो 31 साल तक रहा है और बहुत अच्छा समय था हमारा, क्योंकि उस समय वॉक टॉक और चौक का टाइम था
0: जी जी।
1: और वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था, अच्छा लगता था पढ़ाना भी और बच्चों को हम लोगों से पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था।
0: अच्छा, कितने साल हो गए आपको सेवानिवृत्त हुए?
1: मुझे सेवानिवृत्त हो गए लगभग दो साल
0: हुए अभी। अच्छा, तो वो पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो बचपन का टाइम था वो कैसा रहा और कैसे आप उस समय को आज भी याद करती हैं?
1: नर्मदा जी, हमारा बचपन का समय बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग मिलजुल के रहते थे। ये नहीं पता होता था कि ये गली का लड़का है या गली की लड़की है
0: जी।
1: बहुत प्रेम भाव होता था, एक भाई बहन वाली भावना होती थी। और शाम को टाइम, मतलब हम लोग देखते थे कि कब घड़ी की सुइयां आएं और 4 बजे हम लोग बाहर निकल जाएं और हमें खेलना है। और हम दौड़ दौड़ के खेलते थे, रेत में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे।

0: ऐसी कोई सेंसिटिविटी थी नहीं, ना पेरेंट्स में ना बच्चों में, कि हाँ कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, माहौल बड़ा साफ सुथरा था।
1: सबसे बड़ी बात जो है वो यही है, आज का और उस समय का जो फर्क हम महसूस करते हैं कि कोई रोक टोक नहीं होती थी।
0: जिन बातों के लिए नर्मदा जी होनी चाहिए वो तो थी, लेकिन ये है कि हाँ। खेलते हम खुलेआम थे, बचपन का टाइम था, हाँ। भावनाएं बड़ी साफ सुथरी थी,
1: बिल्कुल,
0: और विचार बड़े सुच्चे थे सब लोगों के।
1: वही कह रही हूँ ना कि अपना जो मोहल्ला था तो उसमें एक घर की बेटी है तो वो मतलब पूरे मोहल्ले की बेटी है,
0: बिल्कुल
1: ऐसा
0: बिल्कुल,
1: माहौल रहता था।
0: हाँ बिल्कुल नम्रता जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि एक मोहल्ले की बेटी क्या, एक कॉलोनी की बेटी जो है वो पूरी कॉलोनी की बेटी ही होती थी।
1: जी जी
0: हाँ जी, स्कूल में छुट्टी होती थी तो हम लोग इकट्ठे घर आते थे, अगर एक भी छूट जाता था तो स्कूल के मतलब अपनी कॉलोनी के लड़की लड़के पहले काउंट करते कि हम लोग पूरे हो गए ना,
1: जी
0: चलो जी अब चलते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल दूर हुआ करते थे,
1: दूर हुआ करते थे। और जो समय है आज का, इसके साथ अगर हम तुलना करें तो आज अगर 10-15 मिनट का रास्ता भी है तो भी पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं बच्चों को, और वो समय ऐसा होता था कि हम लोग पैदल जाते थे जैसे सभी लोग मिलके इकट्ठे, और कितनी भी दूर, कितने कितने किलोमीटर दूर स्कूल होते थे तब भी, क्योंकि पहले इतने पास पास स्कूल नहीं होते थे, आजकल तो हर 100 मीटर पे एक स्कूल है,
0: हर 100 मीटर पे स्कूल है।
1: जी
0: ठीक बोल रही हैं आप, वही वाली बात है नर्मदा जी, आज का समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पेरेंट्स बहुत पॉजेसिव हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कम,
1: बच्चे कम,
0: एक एक दो दो घरों में बच्चे हैं, पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि असली प्रॉपर्टी यही है, और उसका थोड़ा सा इफेक्ट अलग से जा रहा है, बच्चों को आदत हो गई हुई है पेरेंट्स के हर चीज के साथ चलने की, और पेरेंट्स को आदत हो गई है हर बच्चे के साथ चलने की।
1: बिल्कुल,
0: हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हमें खुला छोड़ा जाता था।
1: थोड़ा सा ये भी समझ सकते हैं हम कि ये भी फर्क है कि जो दुर्घटनाएं मैं कह सकती हूँ कि अब हो रही हैं, जो घटनाएं अब घट रही हैं, वैसा भी कुछ नहीं होता था पहले।
0: नहीं बिल्कुल तो, भी नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि उस समय बचपन होता था।
1: जी
0: आज के समय में टेक्नोलॉजी ने बच्चों को इतना ज्यादा मतलब एडवांस कर दिया है कि बच्चों में बचपन खत्म हो गया।
1: बिल्कुल,
0: बचपन रहा ही नहीं बच्चों में, अब बच्चे इतने मैच्योर हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसी मैच्योर बातें करते हैं और ऐसे ऐसे जवाब भी कई बार दे देते हैं पेरेंट्स को, हम लोग सुनते हैं, बींग टीचर हम लोग देखते थे कई बार सामने सामने उलझ भी जाते थे बच्चे पेरेंट्स के साथ। ऐसा हमारे समय में नहीं होता था, क्योंकि एक गैप था और पता होता था कि पेरेंट्स के सामने कौन सी बात करनी है, और टीचर्स का भी डर होता था,
1: डर होता था।
0: आज वो समय बिल्कुल खत्म हो गया,
1: आज तो टीचर डांट भी नहीं सकते हैं बच्चों को, और उस समय खूब पिटाई भी होती थी है ना
0: तभी तो बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाते थे है ना, इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होता था। आज तो बच्चों को, पेरेंट्स को भी होता है कि नहीं अगर इसके इतने मार्क्स आए हैं तो मेरे बच्चे के इससे ज्यादा आने चाहिए, बच्चे स्ट्रेस में जी रहे हैं आज के जमाने में।
1: आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि आप कौन कौन सी खेलें खेलती थी।
0: नर्मदा जी हम लोग तो देखो लड़कियां थी ना, तो हम लोग खो खो खेल लेते थे, जब चार लड़के भी आ गए मोहल्ले के तो हम पिट्ठू बड़ा एंजॉय करते थे, छुपन छुपाई बड़ी एंजॉय करते थे है ना, रेत के घर बनाते थे हम लोग और देखते थे कि किसका घर सबसे ऊंचा हो गया और किसका घर सबसे नीचे है, तो इन चीजों को बहुत एंजॉय करते थे। आज के बच्चे उस चीज को नहीं एंजॉय कर पा रहे, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी का टाइम है, बच्चे उसी के साथ लगे रह रहे हैं,
1: समय ही नहीं है बच्चों के पास, समय ही नहीं है, घर आते ही पढ़ाई फिर से करनी है।
0: और नर्मदा जी एक बात और है ना, हमारे समय में कहां जिम का जमाना था,
1: जी बिल्कुल,
0: हम लोग दौड़ कूद के ही अपना जमाना, यही जिम था,
1: यही जिम होता था।
0: आज बच्चे जिम में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि वो घर में कुछ काम करें, पेरेंट्स की हेल्प करवाएं या कुछ गार्डनिंग का काम कर लें, वो उनको अपनी डिग्निटी से बहुत डाउन काम लगता है।
1: तो आप इसमें मतलब किसको दोषी मानती हैं, कि बच्चों का कसूर है या पेरेंट्स का?
0: नर्मदा जी दोष तो समय का है, समय का इसलिए दोष है कि अब वो समय रहा ही नहीं, क्योंकि बच्चे कम हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग दौड़ दौड़ के इसी पे आश्रित हैं, क्योंकि अगर बच्चा 5 मिनट ट्यूशन के लिए लेट हो गया तो भी मुसीबत है। हमारे टाइम में ट्यूशन को एक बड़ी मतलब ऐसे समझा जाता कि हाँ उसने ट्यूशन लगाई हुई है, माय गॉड यार क्या हो गया इसको है ना, आज तो वो जमाना खत्म हो गया, तो हम किसको दोष दे सकते हैं, स्ट्रेस को ही दोष देंगे कि स्ट्रेस इतना ज्यादा है बच्चों को कि पेरेंट्स उसको रिलीज नहीं कर सकते, बल्कि और ज्यादा बच्चे स्ट्रेस में जी रहे हैं इसीलिए कि नहीं कंपटीशन बड़ा ज्यादा है,
1: अपेक्षाएं भी कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं,
0: अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा हैं, और कुछ बच्चे भी देख सुन के अपने आप को समझ

0: सोचते हैं कि नहीं हमें इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है, उस दौड़ में क्या है कि वो बस एक किताबी कीड़ा बन के रह जा रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहां तक मेरी भावना है।
1: जी जी।
0: दूसरी बात ये है कि उनके शरीर का कोई एक्सरसाइज नहीं है, मानसिक संतुलन जो है एक लेवल तक है, क्योंकि हम लोग चार लोगों में जाते थे, बातें करते थे, सुनते थे, समझते थे एक दूसरे को। आज बच्चे सिर्फ मोबाइल से ही बात करते हैं, फेसबुक से बात करते हैं,
1: मिलना जुलना कम हो गया,
0: मिलना जुलना रहा ही नहीं, बहुत कम हो गया बच्चों का। ट्यूशन है, ट्यूशन पे जाके सिर्फ पढ़ेंगे, चलो पढ़ा तो भी ठीक है, जो ना पढ़ पाए वो भी ठीक है, लेकिन टाइम सारा मतलब बाउंडिंग्स बहुत ज्यादा हैं टाइम
1: जी। अच्छा, आपने बताया कि आप शिक्षिका रही हैं, तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली?
0: नर्मदा जी, मैं इस विभाग से बहुत ज्यादा संपर्क में रही, क्यों कि मेरे मदर भी टीचर थे।
1: अच्छा।
0: उस समय में
1: जी, जी।
0: और वो रिटायर हुए एज ए प्रिंसिपल, तो जब मम्मी हमें घर आके कोई बातें सुनाते थे तो हमारा मन मचलता था कि हम भी कभी इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो चलो, बहुत अच्छी एजुकेशन हमने भी ली, पेरेंट्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी,
1: बिल्कुल,
0: तो चलो आज तक इस मुकाम तक इसीलिए पहुंचे हैं, ड्यूटी ओवर पेरेंट्स एंड माँ को देख के। माँ का बड़ा ज्यादा रोल था,
1: माँ का बहुत बड़ा
0: बहुत ज्यादा रोल
1: है।
0: था।
1: हर माएं सोचती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, मतलब माँ बाप दोनों ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे भी आगे निकले।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या आपके उस जीवन की कोई ऐसी बात जो आपको आज भी याद हो?
0: मेरे जीवन की बात ये है कि उस समय नर्मदा जी हमने एनसीसी ले रखी थी।
1: अच्छा।
0: तो एनसीसी में मुझे स्टेट में अकेले पैराशूट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया।
1: अच्छा।
0: और मैंने वो आगरा में करी, 35 दिन का था। और मेरे आने पर जब मैं वो सक्सेसफुल होके आई, सर्टिफिकेट लेके आई, तो मेरा बहुत ज़्यादा ऑनर मिला मेरे को। रेडियो स्टेशन में बुलाया गया, वहाँ एक्चुअली मेरा संपर्क वहीं से जुड़ा था स्टेशन के साथ, तो बड़ा अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया गया। तब टीवी नए नए चले थे, तो मतलब बड़ा ऑनर मिला। वो पल मुझे भूलते नहीं है कि कैसे उन्होंने मेरे को कोट पैंट ऑफर किया, फिर 26 जनवरी की परेड में मैं वो पहन के गई, फिर मेरा वहाँ पे बकायदा अनाउंस हुआ कि ये आज की हमारी स्टेट की सबसे बड़ी और बहुत जो भी था, चलो अच्छी या कैसे भी करके ये हमारे स्टेट को इसने रिप्रेजेंट किया और सक्सेसफुल होके आई है। तो वो समय भूलता नहीं है, वो टिल डेथ चलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो ये यादें होती हैं जो हम संजो कर रखते हैं ना, कब कब कौन से हमें प्राइज मिले, किसने अप्रिशिएट किया, तो ये जो काम होते हैं याद रहते हैं जिंदगी भर। तो अब आप सेवानिवृत्त हो गई हैं, तो अभी का समय जो है वो आपका कैसे बीत रहा है?
0: नर्मदा जी, ऐसा है ना कि नौकरी में बंदा एक्टिव रहता है, दौड़ता है, भागता है, हर चीज को मैनेज करके रखता है ना। लेकिन सेवानिवृत्ति का भी एक टाइम उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट रखा ही हुआ है, क्योंकि उस समय फिर इंद्रियां थोड़ी थोड़ी ढीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये है कि जो स्मार्टनेस है ना वो बॉडी में रहती है
1: वही ना, तो आप
0: एक डिसिप्लिन बना रहते हैं
1: और किसी ना किसी गतिविधियों में तो जुड़े ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी टीचर हमने देखे कि वो रिटायर हो गए हैं लेकिन फिर भी कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, या घर में कोई मेड आती है उनके बच्चों को पढ़ाना, या कुछ मतलब किसी ना किसी जो सोशल वर्क जिसको हम बोल सकते हैं उनमें जुड़ी रहती हैं। तो अपने अपने तरीके से हर कोई अपना समय जो है व्यतीत करता है, तो वो आप कैसे करती हैं?
0: जैसे मैं रिटायर अभी नहीं हुई थी, तो
1: अच्छा।
0: मैंने इनर व्हील एक संस्था है,
1: जी,
0: मैं इनर व्हील के साथ जुड़ी अच्छा। पहले ही जुड़ गई थी मैं।
1: अच्छा।
0: तो उसका संपर्क ज्यादा ये है कि स्कूलों के साथ ही होता है, तो चलो बच्चों को भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं जितना
1: जी जी।
0: हो पाए, है ना।
1: मैंने सुना है उनका लड़कियों की शादियों में भी काफी कुछ दान देते हैं, सहयोग देते हैं।
0: और पिछले साल मैं प्रेसिडेंट भी रही हूँ इसकी।
1: अच्छा।
0: और मैंने रिप्रेजेंट किया अपने क्लब को
1: जी।
0: और काफी अच्छा गया मेरा टेन्योर। और यही है कि स्कूलों के साथ जुड़ के रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो स्कूल ही बसा होता है कि बच्चों के साथ जुड़ के रहो, इनकी हेल्प करो, है ना, जितना भी हो सके इनके साथ इनको गाइड करो।
1: बिल्कुल।
0: ये मिस गाइड अगर हैं तो इनकी काउंसलिंग करो, तो वो मैं अंदर मेरे आज भी है।
1: हाँ, वही ना, वो जो टैलेंट आपके अंदर है तो वो आप औरों को बताएंगे, समझाएंगे उनको। अच्छा, मैंने सुना है कि आप कुछ लिखती भी हैं।
0: हाँ नर्मदा जी, मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ।
1: तो ये कब से शौक है आपको लिखने का?
0: ये शौक मेरा शुरू से ही था।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि मैं बताया मेरे मदर टीचर थे, संस्कृत के टीचर थे वो।
1: अच्छा।
0: और वो बहुत अच्छा लिखते थे।
1: ठीक।
0: तो स्कूल में कोई थॉट लिखना होता था तो मेरा इंतजार होता था कि आज मेरे मदर का नाम था श्रीमती तारा देवी।
1: अच्छा जी।
0: तो कि आज तारा बहन जी की बेटी ने बोर्ड पे पता नहीं क्या लिखना है।
1: अच्छा।
0: तो मैं होता तो माँ का ही पीछे बैग था, लेकिन मैं लिखती थी आज

0: का थॉट मैं कभी दोबारा रिपीट नहीं करती थी। अच्छा। तो वहीं से मेरे अंदर ये भावना आई लिखने की, तो मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ।
1: अच्छा, तो हमारे श्रोताओं के लिए आज कुछ सुनाएंगी आप?
0: हाँ, मैं ज़रूर, मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत लिखने की। तो मैं, ये जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है ना,
1: जी जी,
0: इनके लिए मैंने थोड़ा सा लिखा है कि घबराना। अच्छा, नहीं,
1: ठीक, बहुत अच्छे।
0: ऐसा है ना कि एक तरफ तो हम निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी, जिंदगी तो सट के बाद शुरू हुई है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि पहले तो हम ऐसे ही भागते दौड़ते कूदते, उधर बच्चे लेके जा रहे हैं, आज उधर बच्चे लेके जा रहे हैं,
1: जिम्मेदारियां बहुत होती,
0: स्कूल की जिम्मेवारियां, और घर में आना तो घर का बस ऐसे आके चुन्नी टांगनी और फटाफट किचन देखना कि बच्चों का खाना लेट ना हो जाए, घर के बुजुर्ग जो है इनको हर चीज टाइमली मिलनी चाहिए, और अपने आप को हमने इग्नोर किया।
1: बिल्कुल, और ये टाइम ऐसा होता था कि तब कोई हेल्पर भी नहीं होते थे घर,
0: नहीं होते थे हेल्पर,
1: खुद ही करना होता था सारा काम,
0: हम सब काम खुद ही करते थे। और अब मुझे ये फील होता है कि नहीं, मेरी जिंदगी तो अब शुरू हुई है। मेरे ख्याल में हर जो सीनियर सिटीजन है, हर किसी के मन में यही है कि 60 साल के बाद ही जिंदगी शुरू होती है,
1: बच्चों की शादियां हो गई होती हैं या जॉब कर रहे होते हैं बच्चे, तो आप फ्री होते हैं,
0: फ्री हो जाते हैं हम लोग, चलो घर बन चुके होते हैं, बच्चों के एजुकेशन कम्प्लीट हो जाती है, शादियां भी चलो टाइमली हो ही जाती है बच्चों की। लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो अपना मन मार के बैठ जाते हैं कि नहीं, अब हम सटके हो गए हैं, अब नहीं। मैं कहती हूँ नहीं, सट के बाद ही जिंदगी शुरू हुई है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने ये चार लाइनें लिखी हैं
1: जी,
0: मैं उम्मीद करूंगी श्रोताओं को जरूर अच्छी लगेंगी।
1: जरूर जरूर।
0: अब तो वो मुकाम है कि हर किसी के लिए दिलदारी रख, दिल ना दुखे किसी का बस इतनी सी समझदारी रख, जीवन के इस पड़ाव पर हटकर पहचान वाली कलाकारी रख, सच है कि मन भीगता नहीं हर किसी से, ये सच है कि मन भीगता नहीं हर किसी से, फिर भी जुबान पे एक प्यारी सी मुस्कान रख, बस यूं ही जिंदगी चलती है, और चलते रहो वक्त के साथ, थोड़ा थोड़ा बदलते रहो, ठोकरें खाकर भी संभलते रहो, उम्र भर कोई साथ नहीं निभाता, उम्र भर कोई साथ नहीं निभाता, अकेले में भी थोड़ा मुस्कुराना सीखो, छोटा सा जीवन है, बस फूलों की तरह महकते और मुस्कुराना सीखो। बस यही चंद लाइनें मैंने लिखी थी कि ये मेरे जो साथी हैं उनको थोड़ी सी प्रेरणा हो जाएगी।
1: चलिए, ये तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपका बहुत खूबसूरत सा संदेश हुआ, अपने युवाओं के लिए और जो शिक्षक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: मैं युवाओं को यही कहूंगी कि वैसे तो हम मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये कर रहे हैं, वहां दान दे रहे हैं, सब कुछ है ना, लेकिन जो घर में तुम्हारे बुजुर्ग बैठे हैं ना, उनके आशीर्वाद लो, वो असली दान है, उनका सहयोग दो, उनको समय दो, वो असली दान। मैं युवाओं को यही संदेश दूंगी कि उनको थोड़ा, ठीक है समय के साथ थोड़ा सा इंसान, मैं वहमी तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये है कि वो अकेलापन महसूस करता है, उस महसूसियत को थोड़ा सा कोऑपरेट करो।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी होता है कि अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनके साथ वो कुछ चाहते नहीं है, है ना, उनको ये रहता है कि हमारे साथ कोई थोड़ा सा समय बिता ले,
0: बस
1: हमारे साथ बातचीत करे, है ना, अपना सुबह शाम के वक्त में से थोड़ा सा टाइम उनके लिए दे।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी
1: है ना, उनका और हाल चाल पूछ लिया, थोड़ी देर उनके साथ समय बिता लिया। कई सारे बुजुर्ग ऐसे भी हमने देखे कि अकेले रहते हैं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस किया कि जहाँ कभी कहीं गए और वो अकेले रहते हैं तो फिर वो उठने नहीं देते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास और बैठे।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
1: तब ये चीज महसूस होती है कि ये कितने प्यासे हैं इस चीज के लिए कि हमारे अपने जो हैं, जिन बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, जो टाइम है वो उनके
0: कहीं
1: साथ,
0: कहीं नर्मदा जी हमारे बच्चे भी मजबूर हैं, क्योंकि आज कमाई का साधन बड़ा टफ हो गया, बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और ऑनलाइन काम करना मुश्किल है, काफी टफ है, तो हमें भी बच्चों को वहाँ कोऑपरेट करना है। हाँ, ये है कि संस्थाएं ज्वाइन करो, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ के, उनको चाहिए किसी संस्था के साथ जुड़ जाएं, और वो लोग आते हैं घर में, करते हैं बातचीत, ऐसी कोई बात नहीं, इनकी पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करते हैं,
1: साधन है ये अच्छा एक, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं किसी न किसी संस्था से जुड़े हैं जहां उनका आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है, सभी एक ही मिलती जुलती आयु के होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं,
0: अपने अपने एज ग्रुप के होते हैं, अच्छा लगता है, और उस साइड पे ही ज्यादा हमें जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी कसूर कम है, लेकिन जहां तक हो सके बच्चों को जरूर साथ देना चाहिए, पेरेंट्स का थोड़ी बातचीत, हालचाल पूछने से ही काफी ज्यादा पेरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब खुश भी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें पूछा।
1: अब वरिष्ठ नागरिकों की बात हो रही है, ऐसा तो थोड़ा

0: सा मुझे एक चीज़ और कि कई बार हम मार्केट में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अकेले चले होते हैं, तो ऐसे में बच्चों को मतलब समझना चाहिए कि अगर उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो खुद लेके जाएं, छुट्टी ले लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना बिल्कुल इस मतलब इस तरह से वो बिजी रहते हैं कि बिल्कुल भी टाइम, अगर उनके अपने बच्चे के साथ ऐसा होता है कि बच्चा बीमार है तब भी तो टाइम निकालते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: मुझे जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख लगता है इस
1: नहीं
0: चीज़ का
1: नर्मदा जी, ये कारण ये बात ही दुख वाली है कि पेरेंट्स अकेले चले हुए हैं। इसी एज में कई बार चक्कर आ जाता है, कई बार इंसान थक जाता है, कई बार पसीने से वो थोड़ा सा, बच्चों को आप ठीक बोल रहे हो, सोचना चाहिए, समय देना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग एक ऐसी चीज है ना कि जो समय निकल गया या हाथ से बंदा निकल गया, बाद में रोने का धोने का कोई फायदा नहीं होता। ये सब काशी विश्वनाथ सब कुछ यही है जो हमारे घर के अंदर है, इसी
0: बिल्कुल।
1: की पूजा करो, यही असली संसार है।
0: और बहुत सारे परिवार ऐसे भी देखे हैं कि जो अपने बुजुर्गों को साथ रखते हैं वो बहुत फल फूल रहे हैं, वो उन्हीं का आशीर्वाद होता है कि,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: नर्मदा जी, दुआएं कभी बेकार नहीं जाती।
0: जी।
1: कहते हैं दुआ और बददुआ दोनों रंग दिखाती हैं, लेकिन बददुआ बहुत जल्दी रंग दिखाती है। दुआ प्रभु समेट के रख लेते हैं कि तेरे को वक्त पे मिलेगी, इसका जवाब तेरे को वक्त पे मिलेगा, तो वो फलते हैं, ऐसी
0: अच्छा,
1: बात
0: चलिए
1: है।
0: अब चलते चलते आप अपने जीवन की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहती है और जब भी याद आती है तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो आप बांटना चाहें।
1: हाँ नर्मदा जी, ये तो है, बचपन ही है, बचपन सबको अच्छा लगता है या कुआरापन सबको अच्छा लगता है, क्योंकि
0: जी
1: वो एक फ्री लाइफ होती है।
0: बिल्कुल।
1: मैं वैसे बेसिकली जम्मू से बिलोंग करती हूँ, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी
0: अच्छा
1: और बड़ा डिसिप्लिन लाइफ थी और अच्छा लगता था वो सारा। वही मैं वही याद करके रह जाती हूँ कि देखो हमारे घरों में ऐसे होता था, आज वो सारा मतलब खत्म ही हो गया, सारा कोई सिस्टम, हमारा पढ़ाई का अंदाज खत्म हो गया, हमारा खेलने का अंदाज खत्म हो गया, हमारी साफ सफाई का या जो भी कैसे भी कर लो, हमारी दोस्ती का एक अंदाज साफ सुथरा सब खत्म हो गया। वो सब याद आता है कि आज के समय में और उस समय में बड़ा फर्क था, वो समय वाकई मेमोरेबल था।
0: तो निष्ठा वासन जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके जो जीवन है उसके बारे में जान के। अब अपने परिवार के बारे में बताएंगी, आप कौन कौन है आपके परिवार में?
1: मेरे इधर वाले परिवार में मेरे हस्बैंड हैं
0: जी
1: और मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी मेरी MSc टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी,
0: जी
1: मैरिड है जम्मू में,
0: अच्छा
1: और यहाँ बेटा मेरा, हमारा ऑप्टिकल्स का बिजनेस है और वो यहीं पे हैं, उन्होंने मतलब दृष्टि के उसमें ही अच्छे से वो एजुकेशन ली हुई है। और एक मेरी बहू है, मेरा नाता पोता सब
0: सब
1: है,
0: हैं, छोटे छोटे
1: हाँ
0: बच्चे, तो
1: छोटा सा
0: कैसा लगता
1: परिवार
0: है? अब
1: है।
0: दादी हैं, नानी हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है इस स्टेज पे, तो यही चीज़ें अच्छी लगती है
0: बिल्कुल।
1: कि बच्चे खुश रहें, खेल रहे हमारे साथ, है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ हाँ
1: तो उनके साथ तुतली तुतली भाषा में बात बात करो तो ऐसे लगता है कि हम अपने बच्चों का इतना बचपन नहीं देख पाए, क्योंकि हम नौकरी में भी थे, कुछ हम परिवारों में भी बंधे हुए थे,
0: जी
1: तो आज वो ऐसे लगता है कि वो बचपन वापिस आ गया, तो अच्छा लगता है।
0: बचपन वापस आ गया ऐसा महसूस करते हैं, और जो अपने बच्चों के साथ इतना टाइम आप नहीं दे पाए होते हैं ना, तो उसको अपने वो जो दोते और पोतरे होते हैं उनमें देखते हैं, और
1: बिल्कुल
0: ऐसा बोलते हैं ना कि अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार उनके साथ
1: हाँ,
0: होता
1: ये
0: है,
1: तो
0: दादा
1: पक्की,
0: दादी और नाना नानी को।
1: हाँ नर्मदा जी, ये पक्की बात है कि मूल से सूद प्यारा होता ही
0: जी
1: है ना,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: कहीं ऊंचा भी रो पड़े तो हमें ऐसे लगता पता नहीं क्या हो
0: जैसे देखो आपने डांटा होगा
1: गया।
0: अपने बच्चों को, लेकिन जब उनको कोई डांटता है तो आप अपने बहू बेटों को नाराज होते होंगे, या बेटी है आपकी तो उनको भी
1: बिल्कुल
0: नाराज
1: बिल्कुल,
0: होते होंगे ना,
1: नहीं
0: ऐसा
1: मैं नाराज तो नहीं होती उनको बिल्कुल भी, लेकिन ये
0: मतलब
1: है
0: उनको रोकते होंगे
1: कि
0: कि नहीं मत डांटो, या फिर
1: ये कि अपने
0: बच्चे
1: सुझाव देते हैं कि देखो
0: हाँ
1: इस समय इसको ऐसे तो ऐसे ही कर लेते हैं, ये वाली घुट्टी दे दो, ये कर लो वो कर लो, थोड़ा सा ऐसे
0: वो तो
1: अच्छा लगता
0: होता
1: है घर
0: है
1: में।
0: घर में ये
1: हाँ
0: चीजें, जैसे पुराने तो जो
1: बिल्कुल
0: उनको एक्सपीरियंस होता था दादा दादी नाना नानी को,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: घर में क्या बच्चों को कौन सी बीमारी हो गई है तो क्या देना है, घरेलू नुस्खे जो है वो भी
1: हाँ
0: दादी नानियों को
1: बिल्कुल,
0: आते हैं,
1: दादी
0: तो
1: नानी को
0: उनको अपना के भी बहुत, तभी इसीलिए बोलते हैं ना कि जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं दादा दादी नाना नानी के साथ रहने में
1: हाँ,
0: कितना फायदा होता
1: ये तो है
0: है
1: ये
0: ना,
1: तो
0: और
1: है,
0: आजकल जो एकल परिवार हैं तो उनको कितनी मुश्किलें आती होंगी,
1: बिल्कुल जी,
0: है
1: आज का
0: ना।
1: जमाना ये है ना नर्मदा जी कि सारे कमाएं तभी घर चलता है,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: उसके लिए हम लोग बच्चों को कहीं क्रच में छोड़ें या कोई हेल्पर रखें या कुछ कैसे भी करके, लेकिन ये है कि एक सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं इसके दादा दादी नाना

0: नहीं घर में है, हम आजादी से जा सकते हैं, बेशक हेल्पर है लेकिन फिर भी उसको भी देख रेख करने वाला कोई है घर में, तो हम उस चीज को बहुत इंजॉय करती हूँ मैं
1: जी, जी, जी।
0: कि नहीं मैं बच्चों को देखना है, हमने अभी इस समय कहीं नहीं जाना, बच्चे आएंगे, बच्चे इन द सेंस के मेरे बेटा बेटी या बहू बेटा जब आएंगे उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि इसको हमने अकेले नहीं छोड़ना है,
1: जिम्मेवारी समझते हैं ना, तभी परिवार चलते हैं कि एक दूसरे को समझो, है ना, आपने उनको ये उनकी हेल्प होती है कि वो अगर जॉब कर रही है तो आपने बच्चों को संभाला है, और बच्चों को तभी अटैचमेंट भी होती है, प्यार भी होता है,
0: ये तो है, बच्चों का अटैचमेंट तभी होती है अगर आप अटैचमेंट दोगे,
1: बिल्कुल,
0: ये तो आदान प्रदान है, अच्छा लगता है,
1: दादा दादियों को भी अच्छा लगता है, और बच्चों को भी ज्यादा प्यार होता है कि जब कोई फरमाइश उनकी पूरी नहीं हो रही है तो वो अपने दादी नानी के पास जाते हैं,
0: ग्रैंड पेरेंट्स के पास ही जाते हैं कि ये लेना, ये करना, ऐसे करना, समझाने वाली जगह पे हम समझा देते हैं कि ये चीज नहीं लेनी, जो लेके देनी है वहाँ शौक से जाते हैं, बच्चे अच्छा समझते हैं।
1: अच्छा, जैसा ये होता है कि दादी नानियाँ जो है वो कहानियां भी सुनाती हैं, किससे कहानियां कई बच्चों को सुनाती हैं ना, तो आप भी सुनाती हैं?
0: हाँ, नर्मदा जी कभी कभार सुना भी लेते हैं, लेकिन वही बात है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, आजकल बच्चों को खाना भी खिलाना हो तो थोड़ा सा उनको कार्टून वगैरह लगा दो, उसी में बहुत अच्छी स्टोरीज आ जाती हैं, बहुत सारे हनुमान चालीसा आ जाते हैं, लेकिन हम लगाते ऐसे ही चैनल हैं जो शिक्षाप्रद हों, और लगाने बहुत कम है, सिर्फ ये है कि बच्चों को थोड़ा सा खुश रखने के लिए, या थोड़ा सा जैसे पेरेंट्स बाहर हैं तो उनको थोड़ा एंगेज रखने के लिए, वो स्टोरीज वहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब बच्चे सुन सकते हैं, हमें भी अच्छा लगता है।
1: अच्छा, आप शिक्षिका रही हैं 31 साल तक ना?
0: जी,
1: तो आपके समय का खैर ज्यादा पुराना तो नहीं हुआ है आपका भी समय, लेकिन फिर भी पिछले 31 साल से आप पढ़ा रही हैं, तब के और आज के जो शिक्षक हैं उनमें क्या फर्क है, और आप कुछ अपने सुझाव देना चाहती हैं क्या?
0: हाँ नर्मदा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि जब हमारा समय था ना वो था वॉक टॉक एंड ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो वो बोर्ड का समय और वो चौक टॉक बहुत अच्छा समय था, बच्चे ड्रॉ करते थे, हम बच्चों से बोर्ड पे लिखवाते थे, और बच्चों की राइटिंग बड़ी खूबसूरत होती थी, कॉपी का पेन पे बहुत अच्छा लिख लेते थे। आज के बच्चों में ये कमी है, उनकी राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है। हमारे जब पेपर होता था 3 घंटे में, तो हमें ये होता था कि सुंदर भी लिखना है और पेपर कंप्लीट भी करना है। आज बच्चों के पेपर छूट जाते हैं क्योंकि उनकी लिखाई में वो इतना दम नहीं है, ना वो खूबसूरती है, ना वो इतनी समझ है। अब देखो ना, हमारे समय में अगर हम इंग्लिश पढ़ाते थे तो हम उसको ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा बच्चों को करते थे कि नहीं ये आपने ग्रामेटिकली मिस्टेक किया। आजकल तो स्लैंग, बच्चे ठीक है, अगले को समझ आना चाहिए, आपने बोल दिया उसने भी सुन लिया, लेकिन वो चीज वो गहराई नहीं रह गई एजुकेशन में।
1: और राइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते थे,
0: राइटिंग
1: वो भी बच्चों में रहता था क्रेज की किसकी हमारी ये ज्यादा
0: कॉम्पिटिशन होता था,
1: कॉम्पिटिशन होता
0: बाकायदा कॉम्पिटिशन होता था, और बोलने का बड़ा अच्छा कंपटीशन होता था, कौन पोयम अच्छी बोल सकता है, कौन सुर ताल के साथ बोल सकता है, विद एक्शंस कौन बोल सकता है
1: जी।
0: आज वो जमाना कहाँ, टेक्नोलॉजी खा गई वही समय खत्म हो गया।
1: चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमारे स्टूडियोज में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आकाशवाणी धर्मशाला से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हमारा अगला कार्यक्रम है तराने मन के। श्रोताओं, आज सदी के महानायक और हम सब के चहेते अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिवस है। आज इस बेहद खास मौके पर आकाशवाणी धर्मशाला की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको ले चलेंगे उनके फिल्मी सफर पर। उत्तर प्रदेश के संगम शहर इलाहाबाद में 11 अक्टूबर 1942 को प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर एक बालक ने जन्म लिया। पिता ने नाम सोचा इंकलाब, लेकिन मित्र सुमित्रा नंदर पंत के कहने पर नाम रखा गया अमिताभ, यानी ऐसा प्रकाश जो कभी ना बुझे। और देखिए ये नाम आज कितना सार्थक सिद्ध

श्रोताओं, उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत होती है साल 1969 से। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी से एक लंबे दुबले पतले नौजवान ने पहली बार पर्दे

0: कभी तो हंसाए।
1: श्रोताओं, फिर आया साल 1973 जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। फिल्म थी प्रकाश मेहरा की जंजीर। इस फिल्म ने देश को एक नया नायक दिया, एंग्री यंग मैन। इंस्पेक्टर विजय के रूप में अमिताभ बच्चन ने उस दौर के आम आदमी के आक्रोश, उसकी बेबसी और व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई को पर्दे पर जीवंत कर दिया। इसके बाद तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर बच्चन नाम का तूफान आ गया। दीवार, शोले, त्रिशूल और काला पत्थर जैसी फिल्मों ने उन्हें देश के कोने कोने में घर घर का चहेता बना दिया।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने मन के, और आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अमिताभ बच्चन जी द्वारा अभिनीत फिल्मों में से कुछ चुनिंदा गीत, क्योंकि आज है बच्चन साहब का जन्मदिवस। श्रोताओं, अमिताभ बच्चन जी सिर्फ गुस्से और एक्शन के पर्याय नहीं हैं, उनके व्यक्तित्व में गजब की कशिश और रोमानियत भी है। एक तरफ अगर वो मुकद्दर का सिकंदर और डॉन बनकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ कभी कभी सिलसिला और अभिमान जैसी फिल्मों में उन्होंने एक भावुक प्रेमी और संवेदनशील कलाकार की भूमिका निभाकर सबके दिलों को छू लिया। वहीं अमर अकबर एंथनी और नमक हलाल जैसी फिल्मों में उनके मजाकिया अंदाज ने साबित कर दिया कि वो अभिनय के हर रंग में माहिर हैं। जिंदगी लेकिन श्रोताओं हमेशा एक जैसी नहीं चलती। साल 1982 में फिल्म कूली के सेट पर एक भयानक दुर्घटना हुई और पूरा देश स्तब्ध था। करोड़ों दुआएं उठी और मौत के मुंह से निकलकर जब ये महानायक वापस लौटा तो लोगों ने राहत की सांस ली।

श्रोताओं, साल 2000 में उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा कौन बनेगा करोड़पति के साथ अपनी जादुई आवाज और शालीनता से पूरे देश को फिर से बांध लिया। इसके तुरंत बाद फिल्मों में उनकी दूसरी पारी शुरू हुई और क्या शानदार पारी थी। मोहब्बतें, बागवान, ब्लैक, पा, पीकू और पिंक जैसी फिल्मों में उन्होंने उम्र को महज एक नंबर साबित कर दिया। उनका काम के प्रति समर्पण और अनुशासन नए कलाकारों के लिए एक महाविद्यालय की तरह है।

Vakt Jesse Tehbiye Her Trafik

श्रोताओं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अमिताभ बच्चन जी आज सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा हैं। उनकी आवाज़, उनका अंदाज और उनका ये फिल्मी सफ़र हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर आपके भीतर लगन और हौसला है तो आप हर दीवार को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं।

आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम तराने मन के में आज बस इतना ही। अमिताभ बच्चन जी को उनके जन्म दिवस पर आकाशवाणी धर्मशाला की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला। नमस्कार।

तराने मन के ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। इस समय दिन के 12 बजे हैं। नीचे प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश के गाए हुए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है कभी कभी और इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है खयाम ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। गुलशन बाबरा का लिखा हुआ ये गीत है, संगीतबद्ध किया है आरडी वर्मन ने, फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता।

0: सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म डॉन से किशोर कुमार की आवाज में। बोल लिखे हैं अनजान ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: अनजान का लिखा हुआ गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म याराना से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, बोल लिखे हैं अनजान ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

और श्रोताओ कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल सभा।

नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और ढेर सारा प्यार हमारे नन्हे मुन्हे सिपाहियों को। आकाशवाणी धर्मशाला से जुड़े सभी नटखट बाल दोस्तों को रेडियो दीदी ज्योति का बहुत बहुत प्यार और दुलार। जय माता दी। नवरात्रि पर्व की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। हाजिर हैं एक बार फिर आपका पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा लेकर। पता है दोस्तों, जैसे ही घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए ना, हम तो भई खुशी से झूम उठे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी तरह हमारे प्यारे बच्चों को भी इंतज़ार रहता है कार्यक्रम बाल सभा का। तभी तो रेडियो सेट से कैसे चिपक कर बैठ गए हैं आप सब, कान रेडियो सेट से आपने लगा रखे हैं और दीदी की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सचमुच रेडियो सुनने वाले बच्चे बड़े होशियार होते हैं, है ना? फिर चलिए, आज हम शब्दों के माध्यम से एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जहां भक्ति का रंग भी है, समाज को एक नई दिशा देने का संकल्प भी है और साथ ही साथ रोचक जानकारियां हैं, अनोखी बातें जिन्हें सुनकर आप कहेंगे अरे वाह। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बाल सभा का ये मज़ेदार सफ़र। प्यारे बच्चों, खिड़की से बाहर ज़रा झांक कर देखिए। अरे भाई, सिर्फ झांक कर देखना है, निकल नहीं जाना है। ध्यान से देखिए, चारों तरफ भक्तिमय वातावरण है। रंग बिरंगी रोशनी, फूलों से सजे माँ के दरबार और मंदिरों से आती माँ दुर्गा के भजनों की आवाज़, धूप और अगरबत्ती की महक और हवा में बिखरी हलवे पूरी की खुशबू। भाई वाह, क्या बात है! यही तो है हमारी प्यारी नवरात्रि। नन्हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है? बताइए, चलिए जानते हैं। नव यानी नौ और रात्रि यानी रातें। इन नौ रातों और 10 दिनों के दौरान हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग दिव्य रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। माँ शैलपुत्री से शुरू होकर माँ सिद्धिदात्री तक हर रूप हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सब

सिखाता है। चलिए आज आपको इन 9 रूपों के नाम और उनका एक जादुई संदेश बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। नवरात्र के पहले दिन यानी आज हम पूजा अर्चना कर रहे हैं माँ शैल पुत्री की, पहाड़ों की बेटी, जो हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य पर हिमालय की तरह अड़िग रहना चाहिए। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी, जो हमें हमेशा नई चीज़ें सीखने और पढ़ाई करने की प्रेरणा देती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन हम आराधना करते हैं माँ चंद्रघंटा की, जिनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, जो हमें हमेशा शांत और एकाग्र रहना सिखाती हैं। माँ कूष्मांडा, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को अपनी मुस्कान से बनाया है। माँ स्कंद माता, जो माँ के असीम प्यार का प्रतीक हैं। माँ कात्यायनी, जो बुराई के खिलाफ लड़ना हमें सिखाती हैं। माँ कालरात्रि, नवरात्र के में माँ कालरात्रि जी की पूजा आराधना हमारे मन के अंधेरे और डर को दूर भगाती हैं। माँ महागौरी, जो शांति और पवित्रता का रूप हैं। और माँ सिद्धिदात्री, ये माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप है, जो ज्ञान और मेहनत के फल का प्रतीक है, यानी हमें अपने काम में परफेक्ट बनाने का ये आशीर्वाद देती हैं। तो बच्चों, याद रखिएगा कि ये 9 रूप हमें एक अच्छा, साहसी और सच्चा इंसान बनने की सीख देते हैं। और ये त्यौहार, नवरात्रि का त्यौहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का है। ये त्यौहार असल में हमें ये भरोसा दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, जीत हमेशा सच्चाई अच्छाई की ही होती है, है ना बच्चों? जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसके अत्याचारों से लोग बहुत परेशान हो गए थे। और बच्चों, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, है ना? नन्ही नन्ही बच्चियों को घर में आदर से बुलाया जाता है, फिर उन्हें घर में बिठाकर, उनके पैर धुलाकर, लाल चुनरी से सिर को ढककर, फिर गर्मा गर्म पूरियाँ, चने और हलवा, खीर उन्हें खिलाई जाती है। उपहार भी उन्हें दिए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। क्या आपके घर में भी कन्या पूजन होता है, व्रत रखा जाता है? दीदी को ज़रूर बताना है, आप सभी नन्हे श्रोताओं ने। और अभी दीदी आपको मिलेगी इस गीत के बाद।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
6: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हैं और इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम बाल सभा अपनी रेडियो दीदी ज्योति के साथ। प्यारे बच्चों, आज की बाल सभा का दूसरा विषय कौन सा है बता दें आपको? ये विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो 11 अक्टूबर यानी आज के दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। देखिए ना दोस्तों, आज हम नवरात्रि का पर्व भी मना रहे हैं जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना होती है और अपनी बेटियों को भी तो हम देवी का ही रूप मानते हैं ना। कन्या पूजन की भी अभी दीदी ने बात की, फिर भी हमें ये दिन अलग से मनाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा प्रश्न मन में आपके भी आ रहा होगा और आना स्वाभाविक ही तो है। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये दिन हमें याद दिलाता

लगता है कि हमारे घर की, हमारे स्कूल की, हमारे देश की बेटियाँ कितनी अनमोल हैं। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या फिर अंतरिक्ष की सैर हो, आज बेटियाँ हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। अब एक कहानी सुनोगे? बताइए, सुनेंगे हमारे प्यारे बच्चे कहानी? दीदी आपके लिए ना एक कहानी लाई है जो बिल्कुल सच्ची है। तो सुनिए ध्यान से। ये कहानी है हमारे अपने हिमाचल प्रदेश की दो जांबाज बेटियों की। पहली कहानी है चंबा के रेटा गांव की हमारी दोस्त सीमा कुमारी की। सीमा ने बहुत छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, उन्हें मवेशी चराने भी जाना पड़ता था, लेकिन सीमा के पैरों में गजब की रफ्तार थी। उन्होंने खेतों और पहाड़ों की पगडंडियों पर दौड़ना शुरू किया। इसके बाद धर्मशाला के स्पोर्ट्स हॉस्टल में कड़ी मेहनत की और जानते हैं बच्चों फिर क्या हुआ? इसी साल और अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2026 में सीमा ने देश के लिए 10,000 मीटर की रेस में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। जब वो मेडल जीतकर अपने गांव लौटी तो उन्होंने सबसे पहले वो मेडल अपनी माँ के गले में पहना दिया। ऐसी ही एक कहानी है दीदी पुष्पा राणा की, जो हिमाचल के सिरमौर ज़िले से ताल्लुक रखती हैं। पुष्पा दीदी बचपन से ही कबड्डी खेलने की बेहद शौकीन थीं। उन्होंने मिट्टी के मैदानों से शुरुआत की, अपनी कड़क रेड से सबको चौंका दिया और मेहनत के दम पर वो भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान बनी और हाल ही में उनकी शानदार कप्तानी में भारत ने एशियन गेम्स 2026 में कबड्डी का गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं हमारी बहादुर बेटियों की जो ये साबित करती हैं कि उन्हें भी खुलकर जीने, पढ़ने, लिखने और अपने सपनों की उड़ान भरने का पूरा हक है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आप लड़के हो या फिर लड़कियां, एक बात हमेशा याद रखनी है, हम सब बराबर हैं, हम सब एक समान हैं। रेडियो सुन रहे हैं जितने भी हमारे बाल श्रोता, आज वो अपनी बहनों, माताओं, सहेलियों से एक वादा ज़रूर करेंगे। वादा ये है कि आप हमेशा उनका सम्मान करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उनके सपनों में नए रंग भरेंगे। और जो हमारी देवियां हैं ना, उनसे दीदी कहना चाहती है कि खूब पढ़ो, खूब खेलो और हमेशा निडर होकर आगे बढ़ो। कोई आपको आपके सपनों की उड़ान भरने से नहीं रोक सकता है। लेकिन इस बीच आपने अपनी जो प्यारी सी मुस्कान है ना, उसे बिल्कुल कायम रखना है, उसे नहीं भूलना है और अच्छा खान पान लेना है, अच्छा आहार, और अपने माता पिता से कोई भी बात छुपानी नहीं है, उन्हें अपना सच्चा दोस्त बनाना है और हर बात उनको बतानी है। मानोगे ना दीदी की ये बात? तो चलिए इसी बात पर अब ये प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम बाल सभा में एक बार फिर से दीदी बहुत बहुत स्वागत करती है। और अब वक्त है रोचक जानकारियों के जादुई पिटारे को खोलने का। तो चलिए देखते हैं कि आज इस पिटारे में से कौन कौन से अनोखे रहस्य बाहर निकलते हैं। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि पानी के ऊपर दौड़ कर दिखाओ तो क्या आप दौड़ पाएंगे? नहीं ना, हम तो भाई छपाक से पानी में डूब जाएंगे। लेकिन

हमारे जंगलों में एक ऐसी जादुई छिपकली रहती है जो पानी के ऊपर ऐसे दौड़ती है जैसे कि सड़क पर दौड़ रही है। इसे वैज्ञानिक वैसिलिस्क लिजर्ड कहते हैं और लोग प्यार से इसे जीजस लिजर्ड भी कहते हैं। इसके पैरों के पंजे ऐसे होते हैं कि जब ये बहुत तेजी से अपने पैर पानी पर मारती है तो पानी के अंदर हवा के छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं जो इसे डूबने नहीं देते। ये इतनी फुर्तीली होती है कि पलक झपकते ही नदी पार कर जाती है। है ना मजेदार बात। प्यारे बच्चों, क्या आपने बिना पंखों वाला पक्षी देखा है? जी, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला कीवी इकलौता ऐसा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं और ये उड़ नहीं सकता। बच्चों, अगली रोचक जानकारी अब आपको बता रहे हैं। एक प्लास्टिक बोतल को नष्ट होने में 450 साल लगते हैं, लेकिन एक कांच की बोतल को पूरी तरह नष्ट होने में 4,000 से भी ज़्यादा वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हमें कांच को रिसाइकल करना चाहिए। तो ये थी आज की रोचक और मज़ेदार सी बातें, जानकारियाँ। एक और गीत, प्यारा सा गीत अपने बच्चों को अब हम सुनवा रहे हैं।

तो प्यारे बच्चों, आज की ये बाल सभा अब यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि रोज़ कुछ ना कुछ नया आपने सीखना है, बड़ों का आदर करना है और त्योहारों का ये मौसम है तो इसका खूब आनंद आपने लेना है, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, लड़का लड़की में भेद नहीं करना है। और एक बार फिर नवरात्रि पर्व की और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की आपको अनंत मंगल कामनाएं।

चलते चलते आपको बताते चलें कि आज के कार्यक्रम में मैं आपके साथ रही आपकी रेडियो दीदी ज्योति। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया सुरेंद्र कपूर ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर

0: आकाशवाणी धर्मशाला से अभी आप सुन रहे थे नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम बाल सभा। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बासमुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली तेल शोधन संयंत्र में ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना का शिलान्यास करेंगे। वे कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी ताकि यात्रियों को ये सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी 1-1 नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर नगर निगम, थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा।

0: conducted concurrently for vacant seats in Kheralu, Chhotaudaipur and Bayad municipalities, along with the seats in the Devbhumi Dwarka district panchayat and the Padadhari Taluka panchayat. Navratri, the 9-day long festival to worship goddess Durga, begins today with religious fervor and gaiety. During Navratri, the 9 forms of goddess Durga are worshipped. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर. दोपहर के 1:10 हुए हैं. आइए अब आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम.
2: लिख दी है, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं, कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया और उसकी क्या खासियत थी, ये आप हमें लिख कर भेज सकते हैं. और बहुत सारे उनके डायलॉग हैं जिसमें से कुछ तो हमारे श्रोताओं ने लिख के हमें भेज दिए हैं. और भी कोई डायलॉग आपको याद आ रहे हो जो आपको बहुत पसंद आए हो, तो फिल्म के नाम के साथ उस डायलॉग को हमें लिख करके भेज सकते हैं. चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं. इस गाने ने सचमुच सभी के मन को छुआ. 11 फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़, अनजान के बोल, राजेश रोशन का संगीत. अमिताभ बच्चन के साथ कौन सी अभिनेत्री दिखाई दे रही हैं, ये आप बताइए.

मेरे मन को। अमिताभ बच्चन के साथ जो अभिनेत्री इसमें दिखाई देती हैं वो है नीतू सिंह। आपके जवाब हम तक पहुंचे, बहुत धन्यवाद। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये कश्मीर है ये जो गीत हमने सुना, हाय हाय ये गीत सुनकर तो ठंड लगने लग गई, अब तो भाई रजाई निकालो। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेमिसाल फिल्म का सदाबहार गीत, ये कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये आपने सुना है। आर डी बर्मन द्वारा रचित और आनंद बख्शी द्वारा लिखित एक बहुत ही खूबसूरत ये रचना है और इसमें कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मानवीय भावना और रिश्तों की गहराई को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दाग जब दामन की जगह दिल में लगी हो तो कभी कभी हर तस्वीर में दिलरुबा ही नज़र आती है, हर किरदार का तलबकार युवा आक्रोश में गुस्सेल विद्रोही दहाड़, व्यवस्था विरुद्ध विद्रोही तेवर, कभी कभी कभी विदूषक तो कभी दिल की तन्हाइयों में एकाकी जूझता एकमात्र लंबी अवधि का सुपर स्टार अमिताभ बच्चन आधारित ये जो सफ़र है ये हमें पसंद आया। अभिमान फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एस डी बर्मन का।

लीजिए, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे डायलॉग हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि अमर अकबर एंथनी इस फिल्म में एंथनी गोंसाल्विस के मज़ेदार अंदाज और हास्यपूर्ण संवाद आज भी लोकप्रिय है। एक साथी लिख रहे हैं नमक हलाल फिल्म का डायलॉग, आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश। एक साथी लिखते हैं त्रिशूल फिल्म के लिए मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और एक साथी लिख रहे हैं हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। एक साथी ने शोले फिल्म के लिए लिखा है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये फिल्म का मशहूर गीत है जिसे जय और वीरू की दोस्ती के लिए याद किया जाता है। और एक साथी ने जंजीर फिल्म के लिए लिखा है जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। और एक साथी ने अग्निपथ फिल्म का डायलॉग लिख करके भेजा है विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम है मेरा। डॉन फिल्म के लिए डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, ये बात लिखी है। और शराबी फिल्म का एक डायलॉग उन्होंने लिख करके भेजा है कि मूछें हों तो नथुलाल जैसी वरना ना हो। और शहनशाह फिल्म के लिए लिखा है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं नाम है शहनशाह। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी है, धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनते हैं, सिलसिला फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल, संगीत शिवहरी का। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, मोहब्बतें फिल्म का ये डायलॉग हमारे एक साथी ने लिख करके भेजा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, पीटर ये ताला मैं तेरी जेब से ही चाबी निकाल कर खोलूँगा, ये डायलॉग उन्होंने लिख के भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शक्ति मूवी जो है अमिताभ जी की, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे परिवार की कहानी लगती है और मेरे पति भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं, मेरे बेटे और पति का संबंध दिलीप कुमार और अमिताभ जी जैसे रहे हैं और मैंने ये मूवी उनकी कई बार देखी है। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कहते हैं ना कि जिसे आप प्यार करो तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है, बस दर्द को कितना प्यार था कविता, आप किसी भी रोल में अदा करें लोग उन्हें पसंद करते थे, मुझे भी उनकी बहुत सारी फिल्में पसंद हैं। उनके किरदार में एक फिल्म है जुर्माना जो मेरे दिल के बेहद करीब है, फिल्म में जब इंदर का अहंकार टूटता है और वह अपनी गलती स्वीकार करता है, नायक को यह घमंड था कि वह अपनी दौलत और पैसे की ताकत से किसी भी इंसान के जज्बात और रिश्ते को खरीद सकता है, तो इस तरह की जो कहानी है ये उन्हें बहुत पसंद आई। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिनेमा घरों की टिकट खिड़कियों पर कभी लंबी कतारें लगना उनकी लोकप्रियता का सबूत था, लेकिन चार दशकों से भी अधिक समय से हर रविवार को उनके बंगले के बाहर जुटने वाली जो भीड़ है वो इस बात की गवाही देती कि रिश्ता महज अभिनेता और दर्शक का नहीं बल्कि गहरी आस्था और अपनेपन का है, और ये अमिताभ जी ने अपने सरल स्वभाव से कमाया है, ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए। एक साथी ने हमारे ये लिखा है कि आपने अभी तक नवरात्रि की शुभकामनाएँ नहीं दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि देना चाहिए? अगर आपने हमारा इससे पहले वाला कार्यक्रम अगर सुना होगा तो हमने नवरात्रि की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं दी हैं और बहुत सारे गीत भी नवरात्रि से संबंधित सुना है, लेकिन एक बार फिर हम आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अगला गाना शोले फिल्म से है, किशोर कुमार मन्ना डे की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आर डी बर्मन का।

एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायलॉग की जहाँ तक बात है तो उन्होंने लिख करके भेजा है कि ये क्या है, कोल्हापुरी कितना नंबर है, 9 नंबर। और एक और डायलॉग, मुंशी जी हमारी ज़िंदगी का तंबू 3 बम्बुओं पर खड़ा है, फिल्म शराबी का ये डायलॉग है। और एक और शोले का डायलॉग, अब क्या करूं मौसी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, ये इन्होंने लिख करके भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन, मिली फिल्म का ये जो गाना है ये किशोर कुमार का गाया हुआ और एक बेहद मधुर और भावुक गीत है जो प्रेम याद और दिल की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। जब प्रिय व्यक्ति की याद आती है तो भीतर का सुनापन संगीत में बदल जाता है और जीवन में एक अलग ही ताजगी आ जाती है, इसलिए ये मुझे बड़ा पसंद है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अमित जी ने अपनी इस लंबी पारी में एक से बढ़कर एक नायाब किरदार निभाए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मुझे मुकद्दर का सिकंदर के बहुत मुतासिर हुआ हूँ मैं इस फिल्म से। इस फिल्म में अमित जी ने जो बेमिसाल अभिनय किया है उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अकेलेपन का दर्द, एक तरफा प्यार की कशिश, दोस्त और माँ बहन के लिए असीम प्यार, इन सभी भावनाओं को उन्होंने जिस शिद्दत के साथ बयान किया है उसके बारे में क्या कहें। इस फिल्म के गीत के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। चलिए इसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का किशोर कुमार की आवाज़, अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

गद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें जो अभिनेत्री हैं वो हैं राखी। एक साथी लिख रहे हैं कि बागबान फिल्म मुझे बहुत पसंद है, इस परिवार की फिल्म लगती है ये, आम आदमी की, हमारी खुद की फिल्म जब भी देखने बैठते हैं तो उठने का मन नहीं करता। हेमा मालिनी जी और अमिताभ जी का बिछड़ना दिल को छू जाता है। और एक डायलॉग लिखा है कि जय और वीरू ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये जो शोले फिल्म में का की बात इन्होंने लिखी। और लिखा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये भी एक डायलॉग है शायद वो उन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी से मैं स्वयं और हम सभी ये प्रेरणा ले सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र कभी भी उस व्यक्ति के काम में बाधा नहीं बन सकती है। अगर उसमें इच्छा शक्ति है, समर्पण है, काबिलियत है, समय के पाबंद है और मधुरभाषी है तो

सफलता उसके कदम चूमती ही है, ये बात इन्होंने लिखी है। और शोले के एक डायलॉग के बारे में लिखा है कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भूंज के रख दूंगा, जेल में पिस्तौल, डिचुम डिचुम, जय तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ये इन्होंने डायलॉग लिख करके भेजा है। चलिए आपका

ही उठाता, जिसका पूरा नाम सुनते ही उनकी विजय दीनानाथ चौहान की दमदार छवि आंखों के सामने तैर जाती है। सच उनके इस अंदाज के लिए दिल बस यही कहता है कि आप जिए हजारों साल। ये इनकी बात है। चलिए धन्यवाद। मजबूर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ का गाया हुआ फिल्म एक नज़र का ये गीत अमिताभ बच्चन और जया जी पर फिल्माया गया है, जो मेरे दिल के बेहद करीब है। इस गीत में दोनों की ही मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं करते, वे अपने किरदारों से लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी की दमदार आवाज़, संवाद बोलने का अंदाज़ और दशकों तक दर्शकों से जुड़ा उनकी खास पहचान है। समय बदलता रहा, पीढ़ियाँ बदलती रही, लेकिन उनके प्रति लोगों का प्यार आज भी कायम है। तो इसी के साथ हम अगला गाना शक्ति फिल्म का आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, संगीता आर डी बर्मन का।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कालिया मूवी में जब वो कहते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, होठों पर मुस्कान आ जाती है। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के शहंशाह, सदी के महानायक और आज एक आज तक भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार हैं। शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष रहा, जहां तक रेडियो जॉकी में उनकी आवाज़ की रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं पहली 10-12 फिल्मों की असफलता के बाद जब फिल्म जंजीर बनी तो भारतीय फिल्मों का को एक ऐसा एंग्री यंग मैन मिला जिसके अभिनय का जादू सारे जहान में छा गया। दीवार, डॉन, त्रिशूल, अमर अकबर, एंथनी, लावारिस और भी कई ऐसी फिल्में हैं अमिताभ बच्चन की जिसने सिने दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। और आज भी अमिताभ जी बेशक 80 बरस के ऊपर हो गए लेकिन फिल्मों और टीवी प्रोग्राम में वो सक्रिय हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, सौदागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज़, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

अमिताभ बच्चन यानी अभिनय की यूनिवर्सिटी और एक नेक इंसान महान व्यक्ति, तो ये हमारे एक साथी ने लिखा है। और ये भी लिखा है कि फिल्म कोहराम में अमिताभ जी और नाना पाटेकर जी का शानदार अभिनय हमें देखने को मिला। एक साथी ने फिल्म बागबान का एक डायलॉग लिखा है कि औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है वो कल उनका भी होगा, आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। मैं कभी किसी युवा को बुज़ुर्गों का अपमान करते हुए देखता हूँ तो यही बात मैं बोलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, स्वयं भी सभी बुज़ुर्गों की इज्जत करता हूँ। ये साथियों ने हमारे बात लिखी। और ये भी लिखा है कि अमिताभ हमारे सदी के वे अभिनेता हैं जो किसी ख्वाब के पूरे होने की दास्तान है। उन्होंने पर्दे पर न जाने कितनी तरह के रंग बिखेरे और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी दो जिंदगी हैं, एक पर्दे के बाहर की और पर्दे के भीतर की, और दोनों ही तरफ उन्होंने खूब शोहरत बटोरी। अमिताभ में एक आभा है और अपने काम के प्रति गहरा समर्पण, ये दो चीज़ें ही हम सबका समय समय पर मन मोहती रहती है। और गजब की बात यह कि जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं उस उम्र में भी वो खूब सक्रिय हैं। चलिए आगे, सत्ते पे सत्ता, इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़, गुलशन बावरा के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रतिभा, अटूट अनुशासन और असफलताओं से सीखकर दोबारा खड़े होने की जिद इंसान को कैसे अमर बना देती है। वे भारतीय सिनेमा के सूर्य हैं जिनकी चमक का दायरा कभी कम नहीं होता। उनके संवाद, उनकी आवाज़ का जादू ऐसा है कि साधारण से साधारण पंक्ति के भी सिनेमाई इतिहास का हिस्सा बन जाता है। और एक साथी ने ये लिखा है कि उम्र उनके चेहरे पर लकीरें खींच सकती है, वक्त उनके कदमों की रफ्तार बदल सकता है, लेकिन करोड़ों दिलों में उनके लिए जो मोहब्बत है उसे कभी कम नहीं कर सकता, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, हमारी कई पीढ़ियों की यादों में बसी एक आवाज़ है, एक ऐसा जादू जो पर्दा गिरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। चलिए अगला और अंतिम गाना, डॉन फिल्म का गाना।

नमस्कार, मैं हूं मंजू द्विवेदी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। बेटी माता पिता के जीवन में रंग भरती है और घर को अलहड़ शरारतों से गुलजार करती है। उसके होने से मन को सुकून मिलता है। गहरी तकलीफ में वो हौसला बंधाती है और उसकी खिलखिलाहटें दर्द में भी हंसने का बहाना देती है। घर को सचमुच घर बनाती है बिटिया। घर में जब बेटी का जन्म होता है तो क्या उसे देखकर हम ये कहते हैं, उसकी बातों में शहद सी मिठास, उसकी सांसों में इतर की महकास, होंठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे कि दहके अनार, मेरे घर आई एक नन्ही परी। क्या बेटी के जन्म लेने पर हम उतने ही खुश होते हैं जितना बेटे के जन्म लेने पर? बेटियाँ शुभकामनाएँ हैं, बेटियाँ पावन दुआएं हैं। बेटियों के आने पर बाह पसार कर उनका स्वागत कीजिए।

हमारे देश में बालिका को कितने ही रूपों में पूजा जाता है। नन्ही बच्चियों को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और विवाहित बेटी को पार्वती का। हर प्रतीक, हर रूप के पीछे न जाने कितनी कथाएं और कितनी आस्थाएं हैं, पर वास्तविक जीवन में कई बार हम इस शक्ति को पहचानने में भूल कर जाते हैं। बालिका शक्ति स्वरूपा भी है और भविष्य में सृजन का आधार भी। बच्चों की परवरिश बच्चों की तरह होनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की। माता पिता

के शब्द और व्यवहार बच्चियों की सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लड़की और लड़के के जन्म के बाद परिवार में दोहरी मानसिकता देखी जाती है, चाहे बात खान पान की हो, शिक्षा की हो या खेलने की। लड़कों के साथ अलग व्यवहार और लड़कियों के साथ अलग। हालांकि इस मानसिकता में कुछ हद तक बदलाव आया है, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

जहां बच्चियों को देवी तुल्य मानकर पूजने की परंपरा है, वहां यौन हिंसा जैसी बातें मन को विचलित कर देती है। बच्चियों के प्रति गंदी सोच रखना, लिंग भेद करना और उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार देना, ये बातें हमें झकझोर देती है या छलावा लगती है। बेटियां पराया धन नहीं है, उन्हें पढ़ाएं फिर देखें, वो अपनी राह खुद बना लेंगी। जब बेटियों की थालियां और बस्ते बेटों के समान सजते हैं तो अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। खेल के मैदान गवाह हैं कि जाने कितनी बार देश का मान बेटियों ने बढ़ाया है। राजनीति, कॉरपोरेट, शिक्षा, सेना, हर क्षेत्र में बेटियों ने अपनी पताका फहराई है, तो फिर हम बेटी के आगमन पर खुश क्यों नहीं होते। आइए आज के दिन हम ये प्रण लें कि रूढ़ियों को तोड़कर लड़के और लड़कियों को बिना भेदभाव के पढ़ाएं लिखाएं और करियर के अवसर दें, मुसीबत में उनका साथ

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा ना हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने

0: होगी। और आज 11 तारीख है, 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।
2: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
3: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये पीपल्स पद्म बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
2: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
4: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक हैं उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
2: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की ही तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का एक एक नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
5: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्मम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों की जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।

0: सऊदी का यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
1: लोगों ने अलर्ट किया है, लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
0: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी, सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
2: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है।
4: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने

0: जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
0: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
0: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
0: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
0: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
0: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
0: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
0: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
0: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
0: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आप जुड़े हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। आइए एक बार फिर आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी परछाइयां, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में असद भोपाली का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म आया तूफान।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। चित्रलेखा इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रोशन का।

शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीत बद किया ये गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दूर की आवाज़।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, आइए अब सुनते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आई मिलन की बेला।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बेटी बेटे। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से पहले प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी।
1: मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
3: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
4: दे रे भाई, RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले में हरोली विधानसभा क्षेत्र के रोड़ा में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का शिलान्यास किया। इसका निर्माण कार्य 9 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस स्टेशन के शुरू होने से वाहनों की टेस्टिंग, जांच और पासिंग आधुनिक मशीनों के माध्यम से होगी। अग्निहोत्री ने बताया कि रामपुर पुल से हरोली जल भवन तक के क्षेत्र को न्यू हरोली के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज सोलन में महाराजा अग्रसेन को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

0: उन्होंने समाज कल्याण के लिए महाराजा अग्रसेन द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और उनके योगदान को सराहा। राज्यपाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और सभी को उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
1: समाज कल्याण हेतु जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं का मार्गदर्शन है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं। और विशेष करके अग्रवाल समाज, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो, सभी जगह अपना योगदान सबसे ज्यादा देता है। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार के जो महापुरुष रहते हैं उनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर चल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए।
0: राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं भी दी। उनका आज देर शाम बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित होने वाली रामलीला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने का भी कार्यक्रम है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि विपक्ष कुछ विदेशी ताकतों के एजेंडे के अनुरूप भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। कांगड़ा में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष चुनाव हारने के बाद संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर झूठ के आधार पर राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर के अणु में छात्राओं की राज्य स्तरीय अंडर 19 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में करीब 800 से अधिक छात्राएं 10 स्पर्धाओं में भाग ले रही हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि नादौन में अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का जल्द शुभारंभ किया जाएगा। इस स्टेडियम में 14 खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं का प्रावधान है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। ऐसे में सुबह से ही शक्तिपीठों सहित धार्मिक स्थलों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हिमाचल सहित बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु शक्तिपीठों में पहुंच रहे हैं। कांगड़ा जिले में नवरात्र के दौरान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना व धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने आज चामुंडा शक्तिपीठ में विशेष यज्ञ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नवरात्र के चलते जिले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: काफ़ी ज़्यादा जो संख्या में श्रद्धालु आते हैं वो सप्तमी अष्टमी नवमी में आते हैं, तो समय रहते हम लोग यहाँ पर मॉक ड्रिल्स भी आयोजित करेंगे और जो कमी बेसी उसको भी दूर करेंगे। हमने जो सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त यहाँ पर हम मैन पावर तैनात करेंगे, जो यहाँ पर इस वक्त साफ सफाई के लिए स्पेशली हमने यहाँ पर लोगों की तैनाती करनी है।
0: श्री चामुंडा शक्तिपीठ में नवरात्र के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए जाएंगे। संस्कृत महाविद्यालय चामुंडा के प्रधानाचार्य हरीश कुमार ने बताया कि इस दौरान सभी की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है।
3: यहाँ यज्ञ अनुष्ठान और बाकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए यह आयोजन किया जा रहा है। इस बार जो यहाँ यज्ञ हो रहा है उसमें लगभग 61 जो हैं वो विद्वान बाहर से बुलाए गए हैं और 20 जो हैं वो सहायक ब्राह्मण के रूप में संस्कृत महाविद्यालय से लिए गए हैं। इस बार सहस्त्र चंडी महायज्ञ, रुद्राभिषेक, गायत्री, स्पादलाक्ष और इसके अतिरिक्त और बहुत सारी जो पूजाएं वो यहाँ पर इन 9 दिनों में सम्पन्न कराई जाएंगी।
0: प्रदेश के अन्य जिलों में भी नवरात्र के चलते मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और कई क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से ही बर्फबारी का क्रम जारी है। लाहौल स्पीति जिले में ताजा बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर दारचा शिंकुला मार्ग को दोपहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया है। साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ऊंचाई वालों क्षेत्रों की ओर ना जाने की अपील की है। इधर राजधानी शिमला सहित अन्य जिलों में हो रही वर्षा से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर वर्षा व ऊंची चोटियों पर हिमपात की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने। आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है स्वच्छ भारत मिशन की सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन की संचार यात्रा। वाचक स्वर है अनुराग पराशर।
0: स्वच्छ भारत मिशन SBM ने

0: व्यवहार परिवर्तन को स्वच्छता के केंद्र में रखते हुए बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे बढ़ स्थायीचयी व्यवहारों और सामाजिक मानदंडों की ओर रुख किया है। सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार SBCC ने संचार को केवल सूचना के प्रसार तक सीमित न रखकर उसे संवाद, सहभागिता और सामूहिक कार्यवाही में परिवर्तित कर दिया है। महात्मा गांधी तथा स्वच्छता और स्वयं सेवा के उनके आदर्श SBM के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए हैं। सामुदायिक संस्थाओं और स्वच्छाग्रहियों जैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को सामुदायिक स्तर पर साझा मापदंडों में बदलने की मदद की। संचार के विभिन्न माध्यमों ने स्वच्छता के संदेशों को घरों, समुदायों, सार्वजनिक स्थानों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों तक पहुंचाने और उन्हें सुदृढ़ करने में योगदान दिया। 2 अक्टूबर 2014 से आरंभ हुआ स्वच्छ भारत मिशन भारत के विशालतम सरकारी स्वच्छता आंदोलन में से एक बन चुका है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता के लिए अपने अभियान की शुरुआत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान चंपारण से की थी। उनके आदर्श गांवों की परिकल्पना में उत्तम स्वच्छता व्यवस्था तथा गांव की गलियों और सड़कों को अनावश्यक धूल मिट्टी से मुक्त रखना शामिल था। अपनी पुस्तक आश्रम ऑब्जर्वेंस इन एक्शन में गांधी जी ने लिखा कि स्वच्छता सेवा एक आवश्यक और पवित्र सेवा है। उनके सेवाग्राम आश्रम में इस कार्य के लिए बाहरी श्रमिकों पर निर्भर न रहने पर जोर दिया गया। आश्रम के सदस्य स्वयं बारी बारी से परिसर की सफाई करते थे। आश्रम के नियमों में यह भी निर्धारित था कि आश्रम वासियों के लिए हाथ धोना और उन्हें स्वच्छ रूमाल से पोंछना आवश्यक है। SBM ने SBCC के सिद्धांतों को सीधे समुदाय स्तरीय सहभागिता में रूपांतरित किया। स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए पारस्परिक संचार IPC एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। एक तरफा संदेशों के विपरीत IPC संचारकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों के बीच संवाद को संभव बनाता है। IPC से सामुदायिक लामबंदी तक की यात्रा व्यवहार परिवर्तन की इकाई में आए बदलाव को दर्शाती है। ये प्रगति SBM के अंतर्गत SBCC दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संचार तब समाप्त नहीं होता जब कोई संदेश किसी व्यक्ति तक पहुंच जाता है, बल्कि उसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब लोग उस संदेश के बारे में चर्चा करते हैं, उसे अपने संधारणीय संदर्भ के अनुरूप अपनाते हैं और सामूहिक कार्यवाही में भाग लेते हैं। सुरक्षा, सुविधा और आत्मसम्मान स्वच्छता को महिलाओं के दैनिक जीवन और अनुभवों से जोड़ते हैं। ये प्रभाव महिलाओं द्वारा साझा किए गए अनुभवों में परिलक्षित होता है। जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 93% महिलाओं को अब शौच के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा चोट पहुंचाए जाने या जानवरों से नुकसान पहुंचने का डर नहीं सताता। 91% महिलाओं ने बताया कि प्रतिदिन उनके 1 घंटे तक के समय की बचत होती है और उन्हें 1 किलोमीटर तक की दूरी तय नहीं करनी पड़ती। यही 93% महिलाओं ने यह भी बताया कि स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अब भोजन या पानी के सेवन को सीमित नहीं करना पड़ता। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए केवल प्रारंभिक जागरूकता और सामुदायिक लामबंदी पर्याप्त नहीं है। SBM का दृष्टिकोण प्रमाणीकरण, मान्यता, प्रेरक उपाय और सामुदायिक प्रोत्साहनों को एक साथ जोड़ता है। ये तंत्र सहभागिता बनाए रखने और लोगों को वांछित स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को लगातार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं।
1: आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

आपका मनचाहा अगला जो गीत है वो लता मंगेशकर और बप्पी लहिरी की आवाज़ों में आपकी खातिर इस फिल्म का गाना है, शैली शैलेंद्र के बोल और संगीत बप्पी लहिरी का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे ने, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आज़ाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने, और इसके अलावा विनोद कुमार अफ्रीका वाला, इनका पत्र आया है पातड़ी ज़िला सुरेंद्र नगर गुजरात से, और नंदग्राम गाज़ियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना गौरव, प्रतीक्षा शिवानी, चंचल और खुशी आनंद का। आपकी पसंद का है आपकी खातिर इस फिल्म का ये गाना।

खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा बानो, नजीब खान, बाबू भाई और अशरफ खान, ग्राम बगोता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामेश्वर रैकवार, पीयूष, तरुण, दीपेश, दयानंद और राम मिलन रैकवार और महामाया प्रसाद ओझा। आपका पत्र अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आया है। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु पथिक, सोनाली और कृष्ण नारंग। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का पत्र हमें मिला है। आपने फरमाइश किया है भाभी फिल्म के गाने के लिए। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है चित्रगुप्त का।

अगला जो गीत है जिसकी फरमाइश हमें श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है दीवाना फिल्म का गाना, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरोल, रणपिस नेग अकोला से शिवराज भारती, टीना, तनीषा, राज भारती, रीनाताई, रोहित और राज भारती। इसके अलावा नरोत्तम गोड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं और रथ चौक बहादुरपुर से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दड़गंगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। इसके अलावा एरोड्रम थाने से इंदौर से ये पत्र आया है, रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की रघुवंशी का, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का। आपकी पसंद का ये गाना दीवाना फिल्म से।

0: दीवाना फिल्म का ये गाना यही था आज के मंचाई गीत कार्यक्रम का अंतिम गाना। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम सहयोग हमें मिला धनश्री साठे से और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
3: नाट्य तरंग श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं प्लास्टिक की घास, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। निर्देशक दीना नाथ।
4: मिस्टर शर्मा करमारकर के दफ्तर से निकलकर बिरला मंदिर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते मन में कई किस्म के विचार उठ रहे थे।
5: करमारकर साहब जरूर मेरी मदद करेगा, पर बड़ी गलती हुई। करमारकर साहब के पास जाते हुए मुझे कुछ फल वल ले जाने चाहिए थे। फल कितने महंगे हो गए हैं। कुछ भी हो, ऐसे मुश्किल वक्त में

0: से कम उन्हें देखना चाहिए।
1: ओए देख के चलो ए तुरी जाना है चलो तो तू उत्ते पहुंच जाना सी।
2: ओए केड़े पिंडो आया है
1: पता नहीं तेनू शहर विच लोकी फुटपाथ ते चलदे ने।
3: अपने ही शहर में मिस्टर शर्मा आज परदेसी लग रहे थे। थके हारे घर पहुंचे तो मिसेस शर्मा बाहर ही खड़ी थी।
4: क्यों जी कुछ बात बनी?
5: हाँ, आज करमारकर साहब से मिला था।
4: क्या कहते हैं?
5: कहते हैं ऑल द बेस्ट।
4: इसका मतलब?
5: सब कुछ ठीक हो जाएगा।
4: हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बला कटी।
6: ये कैसे समझ लिया तुमने कि बला टली? करमारकर साहब ने सिर्फ यही तो कहा है कि उनकी प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
4: यानी वो खुद कुछ नहीं करेंगे?
5: कोशिश करेंगे।
4: तो आज के जमाने में ये भी कौन करता है? दोपहर को पड़ोसन आई थी, कह रही थी भटनागर साहब की भी एक बार ट्रांसफर हुई थी मगर उन्होंने रुकवा ली थी।
5: हो सकता है।
4: कह रही थी भाई साहब से कहना उनसे सलाह मशवरा कर ले।
6: अरे तुम तो जानती हो वो शराबी कबाबी आदमी है। पिताजी कहा करते थे शराब की इल्लत से बचने के लिए जरूरी है कि शराबी की संगत से बचो।
4: आए हाय जरा सी सलाह लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? जा जाओ मिलाओ ना दो मिनट।
6: ओहो लेकिन वो
4: दो मिनट बात करने में क्या हर्ज है तो अपना पड़ोसी ही ना।
5: अच्छा ठीक है तुम कहती हो तो चला जाता हूँ।
7: अरे आइए आइए शर्मा जी।
6: नमस्ते नमस्ते
7: नमस्ते, नमस्ते। अरे साहब धन्य भाग्य हमारे आप हमारे घर पधारे।
6: अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप?
7: इतने करीब रहकर भी कभी आए नहीं
6: हैं आप तो जानते ही हैं दिन भर दफ्तर में ही निकल जाता है। काम इतना है कि घर पर भी लाना पड़ता है।
7: हाँ आप बैठिए।
6: हाँ बस मैं ठीक हूँ ठीक हूँ।
7: और सुनाइए।
6: वो बस ऐसा था कि
7: पहले ये बताइए कि क्या लेंगे आप?
6: जी नहीं
7: पानी है सोडा?
6: नहीं नहीं मैं नहीं लेता ये मैं नहीं लेता।
7: मैं भी नहीं आई डोंट ड्रिंक।
6: वो बात ये है मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था। योर एडवाइस।
7: आई डोंट ड्रिंक।
6: हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल हुआ क्या कि अचानक
7: यू नो मिस्टर शर्मा आई डोंट ड्रिंक।
6: हाँ हाँ
7: आप इसे अपना ही घर समझ।
6: जी हाँ जी हाँ मैं अपना ही घर समझ कर आया हूँ। क्या बताऊँ बहुत विपता आन पड़ी है। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
7: बहुत बुरी बात। मैंने बस सब छोड़ दिया है। आई डोंट ड्रिंक।
6: सुना है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि
7: क्या हुआ?
6: सुना है आपके भी ट्रांसफर का कुछ चक्कर चला था।
7: चक्कर घनघोर चक्कर बट आई डोंट ड्रिंक।
6: मैं वो ट्रांसफर की बात कर रहा था।
7: ट्रांसफर करना किसी को घर से उजाड़ना बहुत कोशिश की हूँ। बहुत कोशिश की।
6: फिर आपने क्या किया?
7: बहुत कोशिश की हूँ।
6: फिर आपने क्या किया?
7: मैंने
6: हाँ आपने क्या किया?
7: मैं ऊपर गया और कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी।
6: फिर
7: मैंने उनसे कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी है।
6: तो आपकी ट्रांसफर रोक दी गई?
7: नहीं।
6: फिर
7: मैं और ऊपर गया।
6: अच्छा फिर
7: वहां भी न रुके
6: तो
7: मैं और ऊपर गया
6: और वहां हाँ फिर वहां क्या हुआ?
7: वहां क्या होना था? आई डोंट ड्रिंक।
6: और वो लोग?
7: वो लोग नहीं माने।
6: फिर आपने क्या किया?
7: करना क्या था? कह दिया उनसे।
6: क्या
7: कह दिया उनसे? नहीं मानते तो कर लो ट्रांसफर। पहले इसके के ऑर्डर मेरे दफ्तर पहुंचे मैंने लीव ले ली।
6: छुट्टी ले ली? कितनी?
7: पहले एक महीने की फिर दो महीने की फिर तीसरे महीने की।
6: लेकिन इतनी लंबी ली?
7: मेडिकल।
6: यानी आपने ऐसे ही सर्टिफिकेट वगैरह?
7: नो मिस्टर शर्मा आई डोंट ड्रिंक।
6: जी जानता हूँ लेकिन वो सर्टिफिकेट?
7: पहले तीन महीने का झूठा सर्टिफिकेट और उसके बाद का सच्चा।
6: क्या मतलब?
7: तीन महीने की छुट्टी थी काम का कुछ था नहीं। ऐसे कभी कभार जरा सा शौक कर लेता था। वैसे यू नो आई डोंट ड्रिंक। बस तीसरे महीने लीवर यू नो मिस्टर शर्मा लीवर।
6: हाँ हाँ जिगर जिगर।
7: बस बोल गया हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। छूटे सर्टिफिकेट की जरूरत भी खत्म हो गई।
6: हाँ और आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स?
7: जब दफ्तर ज्वाइन ही नहीं करूँगा तो ऑर्डर सर्व कैसे करेंगे? सारे कहते थे ट्रांसफर रुक नहीं सकती। अब रुकी है ना साल भर।

0: हाँ जी मिला है, क्या मशवरा दिया उन्होंने?
1: शराब पियो, अपना जिगर खराब करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ। सरकारी ट्रांसफर तो अपने आप रुक जाएगा, इस दुनिया से ट्रांसफर भले ही हो जाए।
2: मैंने तो आपको पहले ही कहा था पिताजी, ये सब एक्शन बेकार है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, बिना ढोल बजाए कोई नहीं सुनता।
1: तो क्या करूं फिर?
2: मेरी मानिए तो यूनियन लीडर से मिलिए।
1: यूनियन? मैंने तो आज तक किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया।
2: यही यही यही तो गलती की है आपने, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी मानिए, कल सुबह ही यूनियन के लीडर से मिलिए, जो काम ऑफिसर्स नहीं कर सके ये मिनटों में कर लेते हैं।
1: लेकिन हमारी यूनियन का लीडर तो शायद घनश्याम है।
2: ओ, जो कोई भी हो, उसके घर जाकर उसे फौरन मिलिए।
1: ये कैसे हो सकता है, वो तो क्लास फोर है।
2: और बस बस यही तो कमजोरी है हम लोगों में, हम लोग क्लासों के चक्कर में फंस कर बट गए। क्लास वन क्लास टू से नहीं मिलता, क्लास टू क्लास फोर से बात नहीं करना चाहता, और इसी बात का फायदा उठाकर वो आप पर वार करते हैं, इंसानों को उंगलियों पर ना चाहते हैं।
0: ठीक ही तो कहता है किशन, उस नीच को भूल के जहां से भी मदद मिलती हो ले लेनी चाहिए, जरूर मिल आई जाकर सुबह उससे।
1: अच्छा, अगर तुम लोग कहते हो तो मिल आऊंगा। हाँ, लेने आ गया क्या?
0: वो बेचारा भी इसी चक्कर में किसी से मिलने गया है।
1: और उषा?
0: उषा, उसने तो कल से रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, ना कुछ खाया है ना पिया है।
1: इस ट्रांसफर से उसे इतना सदमा हुआ।
0: मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके तो आंसू भी नहीं थमते।
3: अरे बस बस उषा, धीरज रखो, क्यों रो रो कर अपना मन हलकान कर रही हो?
4: ना जाने तुम किस पत्थर के बने हो, मैं तो ये सोच सोच कर कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं, बस होश ही गवा बैठी हूँ। पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो आंखों में पानी भर आता है और तुम्हारी सूरत डूबती नजर आती है।
3: मौत से पहले मन में कहरों का काम है, जब जुदा होने का वक्त आएगा तब जुदाई की आग में जलकर जी लेंगे। लेकिन अभी तो तुम मेरे पास हो, फिर अभी से रोना धोना क्यों?
4: तुम मत लोग होते ही बेवफा हो, बस सिर्फ इस पल के जीने को जीना समझते हो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, लेकिन पिताजी के इस ट्रांसफर ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए।
3: घबराओ नहीं उषा, भगवान ने चाहा तो ये ट्रांसफर जरूर रुक जाएगा और तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने से बच जाएंगे। तुमने सुना नहीं, सच्चे प्रेमियों की आहो पुकार में बड़ी शक्ति होती है। आओ हम और तुम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो दो दिलों को टूटने से बचा ले और इस ट्रांसफर को रुकवा दे।
4: राकेश, भगवान हमारी सुन लेंगे।
3: अगर प्यार हमारा सच्चा है तो
4: मेरा तो बिल्कुल सच्चा है।
3: और मेरे प्रेम पर कोई संदेह है तुम्हें?
4: संदेह ना करूं तो और क्या करूं? हम लोग इतनी विपता में फंसे, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का खतरा है और तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने को कहते हो।
3: हाँ हाँ, उसकी दो वजह है, एक भगवान की शक्ति अपरंपार है और दूसरे उसका सेवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूँ जो इस ट्रांसफर को रुकवा सकूं।
4: मुझे पहले पता होता तो मैं ये भूल कभी ना करती।
3: कैसी भूल उषी?
4: किसी कवि की बजाय किसी बड़े आदमी के बेटे से प्रेम कर।
3: हाँ, तो अब भी क्या बिगड़ा है, जाओ ढूंढ लो कोई।
4: तुम जानते हो ना, कोई शरीफ लड़की बार बार प्रेम नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो।
3: उषा चुप करो, चुप कर जाओ मेरी प्यारी, मेरी जान से दुलारी, अब चुप कर जाओ। जुदाई के वक्त तो रोना ही रोना है, कुछ आंसू उस वक्त के लिए मैं बचा के रखूं। मैं वचन देता हूँ, अगर तुम आगरे चली गई तो मैं संडे के संडे तुमसे मिलने वहां आया करूंगा।
4: आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मुझे यकीन है मेरे जाते ही तुम मुझे भूल जाओगे।
3: उषा, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ
4: तो
3: तुम भी मुझे हमेशा के लिए भुला देना।
4: मैंने तुमसे प्रेम भूलने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए किया है। सुनो, मुझे एक तरकीब समझ में आई है।
3: क्या?
4: हम शादी कर ले।
3: ये कैसे हो सकता है?
4: बारात लाकर, बाजी बजाकर।
3: नहीं, मेरा मतलब है, मेरे माँ बाप तैयार हूँ, तुम्हारे माँ बाप माने तो।
4: मैं कह दूंगी अपने पिताजी से, या तो अपनी ट्रांसफर रुकवाए या दिल्ली छोड़ने से पहले मेरे शादी तुम्हारे साथ करते जाए। बस मैंने फैसला कर लिया है।
0: सुना, आपकी बेटी क्या कह रही है?
1: क्या बात है?
0: कहती है अगर ट्रांसफर ना रुकी तो वो यहाँ किसी से शादी कर लेगी।
1: लेकिन मैंने तो अभी उसकी शादी कहीं तय नहीं की।
0: राम जाने क्या उल जलूल पक रही है।
1: हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। जरा सा संकट आया तो सारा परिवार ही मेरी जान।

0: अरे आइए आइए बड़े बाबू, धन्य भाग हमारे, आपके चरण हमारी कुटिया पर पड़े। आपने कष्ट क्यों किया? सेवक को बुला भेजा होता।
1: अरे तुमने मुझे पहचान लिया घनश्याम जी?
0: क्या बात करते हो बड़े बाबू, 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग आपके ही दफ्तर में तो थी। क्यों?
1: मुझे तो याद है, पर बहुत वक्त गुजर गया था इसलिए मैंने सोचा कि शायद।
0: क्या पियेंगे आप, ठंडा या गर्म? अरे सुनती हो, जरा देख तो कौन आया है, जरा शरबत वरबत तो
1: नहीं
0: लेकर
1: नहीं
0: के आ।
1: नहीं उसकी जरूरत नहीं है,
0: हाँ?
1: मुझे जरा जल्दी ही वापस भी जाना है। हाँ, वो मैं अपने एक निजी काम से आया था।
0: हुक्म दें।
1: वो ऐसा है कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
0: ट्रांसफर और आपकी? राम राम राम, ये किस दुष्ट का काम है?
1: ट्रांसफर जिस किसी ने भी किया है वो खुद ही भुगतेगा। हाँ, तो बात इतनी सी है कि किसी तरह अगर ये ट्रांसफर रुक जाए तो।
0: किसी तरह से क्या बड़े बाबू, हर तरह से ये ट्रांसफर रुकनी ही होगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आज ही ऊपर जाता हूं और ये ट्रांसफर रुकवाता हूं। अगर सीधी तरह नहीं माने तो परसों से स्ट्राइक, फिर नहीं माने तो हंगर स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक।
2: क्यों खड़ा है?
1: कुछ नहीं, वो
2: इस जुलूस के साथ है?
1: नहीं नहीं मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ।
2: तो भैया जाओ जाओ अपने काम पर जाओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो?
1: हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। क्यों भाई साहब, ये मिस्टर घनश्याम जी का क्वार्टर?
3: वो सामने जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: कहिए। कहिए क्या बात है
1: जी? वो घनश्याम जी का निवास।
0: ठीक है बोलिए।
1: उनसे मिलना है।
0: अपॉइंटमेंट लिया है?
1: नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया।
0: तो फिर मुश्किल है, किसी और रोज आना।
1: लेकिन काम बहुत जरूरी था।
0: बिना जरूरी काम के तो यहाँ कोई आता नहीं। घनश्याम जी इस वक्त एक उपमंत्री जी से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद 2 MP उनसे मिलने के इंतजार में, और फिर वह दूसरी यूएन के सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं।
1: कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा।
0: आपका नाम?
1: HP शर्मा।
0: ठीक है, बाहर लान पे बैठ जाइए, मौका मिला तो बुला लूंगा।
1: थैंक यू। सुनिए, यहाँ एक गिलास पानी मिलेगा?
0: इधर पीछे नल है।
1: थैंक यू।
0: मिस्टर शर्मा अंदर आइए।
1: थैंक यू। नमस्कार घनश्याम जी।
4: आइए रतनलाल जी, कहिए।
1: जी मैं HP शर्मा।
4: हाँ काम बताइए।
1: घनश्याम जी बहुत अनर्थ हुआ है मेरे साथ।
4: वही तो पूछ रहा हूँ
1: जी। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं 17 जून को सुबह 10:29 पर, जब मैं दफ्तर में।
4: साल में कितनी बार होती है ऐसी ट्रांसफर?
1: 25 साल में पहली बार, पूरे 25 साल बाद।
4: तो फिर अनर्थ कैसा?
1: लेकिन जब इतने साल नहीं किया तो अब क्यों?
4: भाई वो तो सरकार की मर्जी है।
1: लेकिन हमारी मर्जी भी तो उन्हें पूछनी चाहिए थी, अगर आप चाहें तो।
4: देखो रतनलाल
1: जी, HP शर्मा हूँ, HP शर्मा। देखिए 15 साल पहले आपकी पोस्टिंग मेरे ही डिपार्टमेंट।
4: ठीक है ठीक है, आप ऐसा कीजिए अपनी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा।
1: लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो मैं लिखकर नहीं लाया हूँ
4: जी। बड़े अजीब आदमी है आप भी, रिप्रेजेंटेशन साथ तक नहीं लाए?
1: मैंने सोचा आपसे जबानी ही।
4: अरे साहब इतनी बड़ी यूनियन का पूरा बोझ है मेरे कंधों पर, जरा सोचिए जुबानी में क्या क्या याद रख सकता हूँ।
1: मैं अभी लिख लाता हूँ।
4: उधर बाहर बाबू को दे दीजिए। जी सुनती हो?
1: नहीं नहीं पानी वानी का कष्ट न करें मैं।
4: ओहो हमारी यूनिफॉर्म भिजवा दो, दफ्तर को देर हो रही है।
5: जिस दौड़ धूप में 17, 18 और 19 जून गुजरे, उसी दौड़ धूप में 20 जून भी गुजर गई, लेकिन शर्मा जी को अपनी समस्या का अभी तक कोई हल नजर नहीं आया। दिन भर शर्मा जी इस दफ्तर से उस दफ्तर की खाक छानते रहे। उषा शर्मा राकेश का हाथ पकड़ पकड़ कर शादी के लिए मनाती रही, शादी न हुई तो अपनी जान दे देने की धमकी देती रही। उधर कृष्ण कुमार सिगरेट पे सिगरेट फूंक सारी दुनिया फूंक डालने की तरकीबें सोचता रहा। मिसेस शर्मा हर तरह से मिस्टर शर्मा को यकीन दिलाने लगी कि ये मामला अब इंसान के बस से बाहर हो चुका है, इसे अब या तो सिर्फ भगवान या भगवान का कोई पहुंचा हुआ भगत ही हल कर सकता है, यानी नक्षत्र बाबा को बुलवाकर यज्ञ करवाया जाए। विनय हर शाम मिस्टर शर्मा को अपने दोस्त के

0: एडी से मिलने के लिए तैयार करता रहा।
1: आइए आइए मिस्टर शर्मा, मैं तो कई दिनों से आपके आने की राह देख रहा था। वो विनय ने बताया था मुझे कि
2: आना तो था, बस
1: ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे आजकल आपके मिनिस्टर कौन है?
2: जी वो मिनिस्टर तो, लेकिन ऑर्डर्स तो किसी अफसर ने।
1: नो नो नो, मैं ये अफसर अफसरों को मुंह बिल्कुल नहीं लगाता। यू नो आई कीप ओनली टॉप कॉन्टेक्ट्स।
2: जी
1: आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे जरा तमाम डिटेल्स लिखकर दे दीजिएगा, मैं आज ही आदमी काम पर लगाता हूँ। यू नो अंग्रेजों का जमाना इस लिहाज से बहुत अच्छा था, रिश्वत देकर सब काम हो जाते थे। लेकिन अब आजकल तो ये सब चलता नहीं है, बस कॉन्टेक्ट की बात है।
2: जी
1: कॉन्टेक्ट मैं करूँगा, आप सिर्फ डिटेल्स दे दीजिएगा। बाकी जो हमारे आदमी इधर उधर जाएंगे उनके खर्चे वगैरह के लिए, वो आप ऐसा कीजिए कि अभी कोई 5,000 रुपये छोड़ जाइए, बाकी खर्चा मैं कर लूँगा, बाद में आता रहेगा।
2: 5,000?
1: हाँ बस मेरा ख्याल है कि इतना ही खर्चा और आएगा।
2: वो तो
1: क्या किया जाए,
2: वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा।
1: अरे शर्मा जी ये कोई खर्चा थोड़ी ही है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। इस सीट पर रहेंगे तो कई 5,000 आ जाएंगे।
2: ना ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है ये।
1: तो फिर ट्रांसफर से परेशान क्यों है?
2: मुझे मैं अपने घर से बेघर हो जाना नहीं चाहता। देखिए ना मेरा सारा घर बर्बाद हो रहा है, सारा परिवार बिखर जाएगा।
1: अम्बक ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे आपकी मर्जी है। बात यह है शर्मा जी कि मेरा बिजनेस ही पब्लिक रिलेशंस का है। आपका ये काम 1,500 में हो सकता होता तो ना मांगता, लेकिन खर्चा तो 10,000 हो सकता है। अब इतना पैसा मैं भी कहाँ से, आप ही सोचिए।
2: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस में होता तो इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 20,000 भी खर्च कर डालता, लेकिन क्या करूँ, सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं कि 5,000 खर्च कर सकूं।
1: ओह आई सी, अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके लिए ठंडा मंगवाऊं?
2: नहीं नहीं बस शुक्रिया, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा।
1: आपका अपना ही घर है, वैसे कभी कोई काम हो तो बिना झिझक चले आइएगा। कॉन्टेक्ट मांगने में मुझसे बेहतर आपको कोई ना मिलेगा।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: नक्षत्र बाबा कह रहे थे बड़ा ही अच्छा मुहूर्त निकला है यज्ञ का।
2: यज्ञ तो ठीक है पर पीछे ये हलवाई वगैरह।
3: 201 ब्राह्मणों का भोज करवाना है यज्ञ के बाद।
2: 201 ब्राह्मणों का?
3: हलवा पूरी समेत कुल 7 पकवान पकेंगे। वो तो कह रहे थे वनस्पति में बनवा लो, पर मेरा मन नहीं माना, देवताओं का यज्ञ है, यहाँ कंजूसी कैसी। मैंने देसी घी के भी कनस्तर मंगवा लिए।
2: मगर इतना पैसा
3: आए तो कौन सा अभी दे देना है, जब तनख्वाह आएगी हिसाब चुका देंगे।
4: पिताजी कोई आपसे मिलने आए?
5: अरे भाई जिजमान आओ आओ, पूर्ण आहुति का समय हो गया है।
4: जो भी हो उसे बैठाओ, मैं यज्ञ करवा लूँ।
3: नक्षत्र बाबा मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप भी यज्ञ में कोई कमी ना छोड़ी, ये ग्रह तो किसी तरह टलना ही चाहिए।
5: कैसी बातें करती हो देवी, नक्षत्र बाबा के यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाते।
3: बाबा ग्रह टल जाएंगे ना।
5: हाँ, भाई अन्य महात्मा संत ग्रहों से प्रार्थना कर अपने जिजमानों के काम निकलवाते हैं, लेकिन नक्षत्र बाबा अपने योग बल से ग्रहों के ऑर्बिट बदल डालते हैं। ऑर्बिट? ऑर्बिट का मतलब समझती है ना देवी?
2: मैं समझता हूँ महाराज।
5: तो ये भी समझ ले हर प्रसाद की तेरी जगह आने वाले दुष्ट के नक्षत्र बहुत बलवान हो रहे थे, हमने अभी अभी अपनी तपस्या के योग बल से देखा।
4: सच बाबा?
5: हाँ देवी को बताया था हमने कि कर 1.5 तोले सोने का दान।
4: 1.5 तोला सोना?
5: देवी के दान करते ही अपने यज्ञ बल से हमने दुष्ट के ग्रहों के ऑर्बिट ऊपर नीचे कर डाले।
4: राजवंती 1.5 तोला सोने का दान?
3: ये वक्त क्या सोने का मुंह देखने का है। बाबा अब तो ट्रांसफर रुक जाएगी ना?
5: अवश्य रुक जाएगा, अवश्य रुक जाएगा।
4: सच कह रहे हैं आप?
5: अरे ग्रहों के ऑर्बिट बदलते ही वो दुष्ट अपनी बुद्धि खो बैठेगा, फिर रास्ता खो बैठेगा, और फिर भी अगर उसने इधर आने की हिम्मत की तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोलो जब चार्ज लेने वाला ही नहीं आएगा तो चार्ज देने वाला कहाँ जाएगा।
4: धन्य हो बाबा, धन्य हो।
6: माजी माजी माजी,
7: क्या बात है?
3: ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो?
6: माँ जी पूरे 200 ब्राह्मण तो जीन चुके हैं, परंतु 201 ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और मुहूर्त निकलता जा रहा है।
3: हाय भगवान।

0: आप शकुन हैं, अब क्या होगा?
1: मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ?
2: पिताजी, ये आपसे मिलने आए थे।
3: ओह, आप क्या?
1: 100% ब्राह्मण, चंद्रकांत यादव।
0: तेरी महिमा अपरंपार है भगवान, क्या समय पर ब्राह्मण भेजा है। जाओ बेटा, ले जाओ इन्हें और आदर सम्मान के साथ भोज करवाओ।
2: आइए चंद्रकांत जी।
0: देखा आपने, आज का दिन कितना शुभ है, हर कार्य अपने आप संपन्न हो रहा है। एक ब्राह्मण कम हो गया तो मानो स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर मेरे घर में आए हैं।
2: चंद्रकांत, चंद्रकांत यानी सीके यादव? नहीं नहीं नहीं, ये चंद्रकांत
0: क्या ब्राह्मण नहीं?
2: सीके यादव है
0: तो क्या ब्राह्मण?
2: हमारे लिए भगवान नहीं, यमदूत है। यमदूत?
0: क्या कह रहे हैं आप?
2: ये हमारे लिए यमदूत है, ये वही है, वही है।
3: नक्षत्र बाबा तो कहते थे कि छिन्न भिन्न हो जाएगा, रास्ता भूल जाएगा। अरे ये दुष्ट तो साक्षात घर में आधम का और भोजन भी खा गया।
0: ये क्या कह रहे हैं आप?
3: यही है वो चंद्रकांत यादव, यानी सी के यादव, जिसने कल मुझसे चार्ज ले मुझे यहाँ से रिलीव करना है। बस लाजवंती, अब राम नाम ही बोलो, अंतकाल आ गया।
0: राम कैसा अंधेरे, अरे कोई नक्षत्र बाबा को तो बुला के लाओ जल्दी से।
2: नक्षत्र बाबा तो जीम कर कभी के जा भी चुके।
0: आइए आइए, यज्ञ भोज दान दक्षिणा सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया।
2: अब रोने धोने से क्या फायदा माँ?
1: बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शर्मा। अरे ये क्या हुआ, आप लोग इस कदर उदास क्यों हैं?
0: अब हम तो चंद घड़ियों के ही मेहमान हैं।
1: लेकिन हुआ क्या है मिस्टर शर्मा?
2: खा पी कर कितना भोला बनता, पहले मालूम हो जाता कि तुम कौन हो तो हलवे पूरी के बजाय किसी और तरह से तुम्हारी खातिर करते।
1: लेकिन मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है?
2: तो सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो?
1: आप तो जानते हैं मिस्टर शर्मा, मैं इंदौर से आया हूँ और कल मुझे आपसे चार्ज लेना है।
0: तुम सचमुच आ गए हो?
1: क्या मुझे नहीं आना चाहिए था?
4: कहाँ के रहने वाले हो?
1: इंदौर का।
4: और तुम्हारे पिताजी?
1: इंदौर के।
4: और तुम्हारे दादा?
1: दादा, परदादा और लकड़ दादा सभी इंदौर के।
4: फिर भी तुम मुंह उठाए यहाँ चले आए?
1: लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सरकारी नौकर हूँ, जहाँ भी ट्रांसफर होगा जाऊंगा।
4: इसलिए कि तुम लोगों का अपनी धरती अपनी सभ्यता से कोई लगाव नहीं है। अगर जरा भी मान सम्मान वाले होते तो अपने पूर्वजों का घर छोड़ने से पहले अपने प्राण दे देते।
0: और यमदूत की तरह यहाँ आके हमारा घर बार न उजाड़ देते।
1: लेकिन मैंने किसका घर बार उजाड़ा है?
0: किसका नहीं उजाड़ा है पिताजी, पिताजी अब क्या होगा?
3: जाने का समय आ गया है बेटा।
2: सब तरकीबें नाकाम हुई, कुछ भी न वफा ने काम किया।
0: जाने से पहले मेरे हाथ तो पीले करते जाइए, आप ना हुए तो कन्यादान कैसे होगा पिताजी?
2: फिक्र ना करो उषा, बहन दान का कर्तव्य मैं निभा दूंगा।
5: बट पिताजी, आई कांट गो टू आगा विद यू।
4: ठीक ही कहते हो बेटा, इस संसार में कौन किसके साथ गया है।
1: दिल्ली से आगरा 100-125 मील का फासला भी नहीं शर्मा जी, इस मामूली से ट्रांसफर से आप इस कदर परेशान हैं?
4: सारा परिवार तबाह हो गया है, घर से बेघर हो गया हूं और तुम इसे मामूली सा ट्रांसफर कहते हो? तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अपनी सभ्यता, अपनी धरती, अपने घर से कोई लगाव नहीं। तुम लोग अपनी धरती माँ से अपना संबंध तोड़ चुके हो।
1: शायद आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आज चौथाई इंच की जड़ों वाली दूब बनकर धरती से चिपके रहने का युग नहीं, आज मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में रहने के लिए जब हमने सूती कपड़े छोड़ प्लास्टिक के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं शर्मा जी, तो अपना जीवन प्लास्टिक की घास होना चाहिए, यहां उखड़े वहां लगे, सदा हरी भरी।
5: प्लास्टिक की घास कहां मिलती है पिताजी?
4: चंद्रकांत जैसे बेवकूफों के सर पर।
6: 22 जून, साल का सबसे लंबा दिन चढ़ चुका था। सुबह के 6 बजे थे। लोधी रोड के क्वार्टर नंबर F2 15/614 के सामने एक 3-व्हीलर खड़ा था, जिसमें मुख्तसिर सा सामान रखा जा रहा था। HP शर्मा सिर झुकाए बाहर निकले। सारा परिवार गुम सुम उन्हें नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना होते हुए देख रहा था। लाचार बेबस शर्मा जी ने बड़ी हसरत से क्वार्टर पर लगी अपनी छोटी सी नेम प्लेट की तरफ देखा और 3-व्हीलर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए।

0: प्लास्टिक की घास, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आप सुन रहे थे। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

0: आप जुड़े हैं अपनी पसंदीदा फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: ये है विविध भारती,
2: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
3: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी।

0: भी उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
1: जी,
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि उत्तम जगदीश की जोड़ी कैसे बनी थी।
1: ये भी तो एक हिस्ट्री है।
0: ये भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ से म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा शुरू होती है और मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू आती है।
1: ओ जी, ऐसा है कि आपने एक फिल्म, आपको याद होगी, शिरडी के साईं बाबा।
0: जी हाँ,
1: उसमें दो गाने जो हैं आज भी चल रहे हैं। ये दो गाने जो हैं, साईं बाबा साईं नाथ बोलो, साईं बाबा बोलो, एक एक साईं नाथ तेरे हजारों, ये दोनों गाने जगदीश खन्ना के।
0: ओ हो,
1: नाम नहीं है,
0: नाम नहीं है।

0: नाम उनका शायद जो पांडुरंग दीक्षित थे जो उनका नाम है
1: जी जी,
0: लेकिन गाने ये दोनों जगदीश खन्ना के हैं और ये दोनों गाने मेरे अरेंज किए हुए हैं।
1: अरे क्या बात है,
0: क्योंकि जगदीश आया था, मेरे पास दो गाने अरेंज करने हैं, मनोज साहब फिल्म बना रहे हैं, दो गाने अब मुझे अरेंज करने, तो जैसे दूसरे में जो अटर रहते थे ये भी आ गया, तो मैंने इनके दो गाने अरेंज किए, दो गाने हिट हो गए, वो ऐसे हिट हुए कि आज तक चल रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये फिल्म उनकी हिट हो गई, मनोज साहब की, मनोज साहब की क्रांति हिट हो गई थी बहुत बड़ी, क्रांति उनकी बहुत चली, क्रांति के बाद ही वॉन्टेड टू स्टार्ट न्यू फिल्म
1: जी।
0: उस न्यू फिल्म में उनका माइंड चल गया कि छोटे भाई को हीरो बनाया जाए और अपने साले को डायरेक्टर बनाया जाए, तो उन्होंने प्लान किया कि नया म्यूजिक लेंगे, तो म्यूजिक कौन, जगदीश।
1: अच्छा, जगदीश तब तक क्या कर रहे थे?
0: जगदीश उनके घर में टीचर थे बच्चों के,
1: ओ
0: म्यूजिक टीचर थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो उनके साथ बैठ के वो काम करते रहते थे, जैसे ये गाने बना लिए, ऐसे और गाने बना लिए
1: जी।
0: तो मनोज जी को पता था कि अच्छा कंपोजर है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि ये दोनों गाने जगदीश के बनाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जगदीश उत्तम को बुला के ले,
1: मनोज जी ने कहा।
0: हाँ, तो जगदीश को पता नहीं चला कि क्यों बुला रहे, तो मैं आया, मैं कहा जी बाबा उत्तम मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जगदीश म्यूजिक दे रहा है, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो तुम जगदीश के साथ काम करो, मैंने कहा मैं तो कर ही रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, जगदीश खन्ना उत्तम सिंह,
1: अच्छा
0: म्यूजिक एक्टर, मैंने कहा पा पा मत बड़े भाई, मैंने कहा पा यू हैव टू गिव मी टाइम, क्यों, मैंने कहा नहीं मुझे आप टाइम दीजिए सोचने का, अच्छा ले लो, तो मैं बहुत बिजी था, मेरा काम सुबह शाम काम था मेरा, तो 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, हर चौथे दिन जगदीश आ जाए, मनोज साहब बुला रहे हैं, मैंने कहा यार तुम देख रहे हो कैसे काम कर रहा हूँ मैं, सब काम चल रहा है, महीना बीत गया, वो महीने में कम से कम 6-7 दफ़ा 8 दफ़ा ये आ गया जगदीश, तो एक दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो डैडी के पास बैठा मैं, मैंने कहा डैडी ऐसी ऐसी ऑफर आई है, क्या ऑफर है, मैंने कहा ऐसे ऐसे वो पिक्चर बना रहे हैं VIP,
1: मनोज जी का बैनर VIP,
0: राज कपूर VIP, मतलब
1: जी
0: इंडस्ट्री के टॉप बैनर
1: जी,
0: इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, तो वो चाह रहे हैं कि मैं म्यूजिक एक्टर बनूं लेकिन जगदीश खन्ना के साथ बनूं, जगदीश खन्ना ट्यून बनाएगा और मैं अरेंजमेंट करूंगा, तो मैंने ये बात मनोज, मैंने कहा मनोज जी मैं तो अरेंजर हूँ, आप मुझे क्यों म्यूजिक एक्टर बना रहे हैं, बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी म्यूजिक एक्टर हैं, लक्ष्मी जी ट्यून बनाते हैं और प्यारेलाल जी अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे ही तुम जगदीश के साथ, जगदीश का ट्यून बनाएगा और तुम अपना जो काम करते हो वो करो, लेकिन तुम दोनों

0: नाम आए। तो ये बात मैंने जाके डैडी को कही, तो डैडी बोलते हैं तुमको क्या लगता है? मैंने कहा नहीं नहीं आप बताइए। बोलते देखो म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो ये लास्ट स्टेज है, मतलब ये लास्ट सीढ़ी है, जहाँ पे लोग म्यूजिक खत्म होते हैं वहाँ से तुम शुरू कर रहे हो,
1: जी,
0: और अगर नहीं बनना तो मना कर दो, तुम काम तो कर ही रहे हो। मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है?
1: वाह,
0: बोलते मैं तो चाहता था कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो। तो मैंने कहा आपने मुझे ये बात कभी बोली नहीं। बोले कभी मौका ही नहीं आया।
1: अरे
0: आप
1: गजब,
0: तो मुझे म्यूजिशियन बनना चाहते, तो आपने देख लिया, अरेंजर भी आपने देख लिया, तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए आपने बोला क्यों नहीं? बोलता नहीं ऐसा कभी मौका ही नहीं आया, आज मौका आया तो बोल रहा हूँ तुमको कि मैं चाहता हूँ तो कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो।
1: ये पिताजी की बात है।
0: पिताजी की बात। तो मैं कहा हाँ बोलता हूँ। हाँ बोल दो। फिर मैं गया मनोज जी के पास 1.5 महीने के बाद।
1: जी,
0: 1.5 महीने के बाद जाके मैंने बोला कि मैं करता हूँ। तो पहला गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ पिंटर बाबू का, तू रख ले नाम, रख ले नाम, मुकद्दर सिकंदर होता है हाँ,
1: हाँ
0: वक्त सिकंदर नहीं होता, ऐसा कुछ गाना है
1: हाँ
0: दादाजी का और महेंद्र कपूर का।
1: हाँ
0: उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शायद 100 के ऊपर म्यूजिशियन था और 30-40 कोरस था।
1: ओहो,
0: हमने सुबह 9 बजे शुरू किया और 5 बजे तक गाना ख़त्म हुआ। लता जी महेंद्र जी चले गए और हम लोग का रात को 2 बजे वो गाना ख़त्म हुआ।
1: क्या बात है।
0: हम कुछ भी रख लें नाम उसका,

0: थे। इस फिल्म के दो तीन गाने बड़े हिट हुए थे,
1: बड़े हिट हुए,
0: जिसमें से कब तलक शम्मा जली,
1: ये पूरी कंपोजिशन
0: हमारे लिए गाइए ना सर ये गाना।
1: तो हमने पेंटर बाबू शुरू की, तो पहला गाना
0: वो किया,
1: वो रिकॉर्ड किया के वक्त सिकंदर होता है
0: जी।
1: उसके बाद कतिल सफाई जी का गाना लेके आई है मनोज साहब, और मुझे जगदीश ने गाना सुनाया
0: जी।
1: मैं और ये है गजल
0: बिल्कुल,
1: और इसको
0: गाने की शक्ल
1: गीत में गाना देना

0: कितना मुश्किल है।
1: क्या बात है, मतलब गजल को लेके आपने वहां ले गए और फिर पूरा वो एक ब्रेक आता है, सारा
0: ब्रेक आता है, हाँ,
1: फिर आता है,
0: ब्रेक आता है, फिर आता है, और फिर इसके अंतरे, और फिर इसमें, और बहुत बड़ा गाना था, चार अंतरों का गाना था।
1: जी जी,
0: मैंने कहा मनोज साहब चार शेर है, एक शेर कम करें ना, तुम
1: कुछ हटेगा
0: ना, जवाब शेर है
1: जी,
0: इनको कम नहीं कर सकते।
1: और अदायगी भी कमाल थी,
0: कमाल थी।
1: कपूर,
0: और फिर देखिए, फिर अपना हमने पूरे चार के चार अंतरे रखे, चारों के चारों म्यूजिक देखिए कितना डिफरेंट है, कहीं क्लैप बज रही है, कहीं चुटकियां बज रही हैं, कहीं घुंघरू बज रहा है, कहीं सारंगी बज रही है, कहीं वायलिन बज रहे हैं, कहीं लता जी का आलाप है। विद म्यूजिशियन वन टेक है ये गाना।
1: क्या बात है,
0: छह साढ़े छह सात मिनट का गाना है।
1: जी जी जी,
0: और आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत म्यूजिशियन है इसमें तो।
1: हाँ
0: खाली मेरे कहने से नहीं, आप गाना सुनो आपको लगेगा कि यस म्यूजिशियन बहुत है।
1: जी जी जी।

0: यहां से एक संगीतकार की जर्नी शुरू हुई।
1: बिल्कुल, और ये तय कैसे हुआ कि नाम जगदीश उत्तम होगा या उत्तम जगदीश होगा?
0: वो उन्होंने कर दिया अपने आप,
1: मनोज जी ने कर दिया उत्तम जगदीश,
0: उत्तम सिंह जगदीश करना, बाद में उत्तम जगदीश हो गया वो।
1: अच्छा,
0: शॉर्ट। अच्छा। बहुत हलचल में गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये गाना बाहर गया है, कब तक शम्मा जली
1: जी,
0: तब कोई बहुत बड़ी डांसर थी उस टाइम, उन्होंने बोला क्या गाना है, बड़े म्यूजिक्टर होते हैं।
1: ओहो,
0: उनको लगा कि ये शायद किसी और बड़े म्यूजिक या एलपी का गाना या किसी और का गाना।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने कहा ये नए म्यूजिक्टर हैं, ऐसा गाना नए म्यूजिक्टर, म्यूजिक्टर नहीं थे लेकिन पीछे अरेंजर तो पुराना था ना
1: जी,
0: अरेंजर को तो सालों साल बीत गए थे अरेंजमेंट करते हुए। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बात फैलाई गई।
1: क्या?
0: हमारे लिए फैलाई गई ये बात कि कंपोजर तो बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं।
1: ओ, मतलब कहीं ना कहीं कोई अड़चन पैदा करनी है।
0: महंगे बहुत है, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह शुरू होती है तो 2 बजे खत्म होती है।
1: जी जी,
0: महंगे बहुत है। मेरे को तो इन चीज़ों का कभी लाइफ में फर्क नहीं पड़ा, किसी ने महंगा बोला किसी ने कुछ बोला, हम अपना काम करते चले गए और आज भी काम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मनोज जी वॉज वेरी हैप्पी विद म्यूजिक, और म्यूजिक बहुत हिट हुआ था इसका।
1: इसका एक और गाना मैं याद करना चाहता हूँ, जब याद की बदली छाती,
0: जब याद की बदली छाती
1: तो आंख मेरी भर आती है।
0: तो मुझे उन्होंने गाना सुनाया जब याद की बदली छाती है, इतना का वाह वाह वाह क्या बात है, क्योंकि उन दिनों में उनके गाने फिल्मों में एक सैड गाना होते ही था, और वो बरसात का गाना सैड गाना। तो जब जगदीश ने सुनाया मुझे गाना, मैं कहा जगी बहुत अच्छा तुम्हारा कंपोजिशन, तो कंपोजिशन ऐसी थी कि

0: देखिए इतने मुखड़ा है
1: जी,
0: बाकी अंतरे हैं, मुखड़ा इतना ही है
1: बिल्कुल।
0: और इसमें वायलिन सोलो आप सुनेंगे वो भी मेरी बजाई हुई है,
1: बहुत शानदार, एकदम गाढ़ा वायलिन,
0: गाढ़ा वायलिन। और इस गाने को इतना अच्छा

0: एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है उत्तम जगदीश की जोड़ी की, वो है रविंद्र पीपट की फिल्म वारिस।
1: वारिस, यस, ये 1986 की फिल्म है।
0: जी जी,
1: 84 में ये फिल्म मुझे क्यों मिली थी, क्योंकि इन लोगों की, इस ग्रुप की, पीपट के ग्रुप की एक फिल्म आई थी चन प्रदेसी पंजाबी।
0: हाँ,
1: सुपर, पंजाब की बहुत बड़ी
0: सुपर हिट फिल्म थी,
1: जैसे नानक नाम जहाज,
0: जी,
1: चन प्रदेसी, ये उस कैटेगरी की। उसका काम सारा अरेंजमेंट भी मैंने किया था, सुरेंद्र कोहली का म्यूजिक था और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था।
0: अच्छा,
1: उसमें बकायदा आपको नाम मिलेगा उत्तम सिंह
0: जी जी,
1: बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो वहाँ से वो ग्रुप जो है वो मेरे पहचान में आ गया और वो मुझे पसंद करने लग पड़ा
0: जी।
1: तो उन्होंने वारिस शुरू की, तो वारिस के लिए मेरे पास उन्होंने आए थे।
0: और ये पूरी पंजाबी पृष्ठभूमि की,
1: पूरी पंजाबी, हाँ,
0: स्मिता पाटिल और राजबब्बर,
1: राजबब्बर की फिल्म थी वो, उसके गाने आज भी चल रहे हैं।
0: इसमें आपने एक बड़ा कमाल किया था, एक व्यक्ति को गायक बना दिया था
1: मनमोहन सिंह
0: जी, जो कि कैमरामैन थे।
1: कैमरामैन थे, यस,
0: ये बताइए।
1: कैमरामैन थे, क्या हुआ कि ये गाना जो है ना, दीदी का, लता जी का गाना
0: जी,
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी, कितना ऊपर है और कितनी ईज लग रहा है।
0: जी जी जी जी,
1: क्या लोग थे,
0: क्या बात है।
1: तो ये मैं गाना सुना रहा था, ये ऐसा था कि ये गाना रिकॉर्ड कैसे हुआ कि हम लोग कुछ बैठ के काम कर रहे थे, तो दीदी का मैसेज आया
0: जी, लता दीदी,
1: कल, हाँ, कल सुबह स्टूडियो खाली है, मेरी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, तुम चाहो तो गाना कर सकते हो। क्योंकि मैं इस गाने के लिए एक महीने से उनके पीछे पड़ा हुआ था। सामने से मैसेज आया कि गाना कर लो, तो गाना सिर्फ मुखड़ा बना था, बस
0: सिर्फ इतना, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी।
1: फिर ये उनको अपना बुलाया, अपना वर्मा मलिक जी को
0: जी,
1: जाके आदमी लेके, उन्होंने फोन तो हुआ नहीं करते, फोन तो मोबाइल थे नहीं, बुलाया उनको, बैठे हम लोगों ने गाना बनाया, म्यूजिशियन बुक किए, सुबह दीदी आई, दीदी का पार्ट कर लिया हमने।
0: अच्छा अच्छा,
1: दीदी के पार्ट हमने इस गाने में रिकॉर्ड कर लिए।
0: अब मेल वॉइस रह गई है,
1: अब मेल वॉइस कौन गाएगा, किसको गवाएं, उसको गवाएं, उसको गवाएं, उसको गवाएं, नहीं यार, ये सब आवाजें जो हैं सब सुनी सुनाई है, कुछ अलग होना चाहिए। तो इस बात को भी 7-8 दिन गुजर गए, गाना रिकॉर्ड हो गया,
0: फीमेल पार्ट है आपके पास,
1: फीमेल पार्ट है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब हो गया, बढ़िया, क्या लग रहा है गाना। जब वो साइलेंट हो जाए, मेल की आवाज, खाली म्यूजिक चल रहा है, दिंग कड़क, और दीदी की आवाज आ रही, तो ऐसा लग रहा है। फिर मैंने कहा यार, सबको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, मनमोहन सिंह भी आके बैठते थे, मैंने कहा मन जी आप गाओगे,
0: जबकि वो तो कैमरामैन थे ना,
1: कैमरामैन थे
0: और गायकी शौकिया थी,
1: गायक शौकिया थी, और उन्होंने उससे पहले एक उषा खन्ना का भी गाना गाया था और एक किसी और म्यूजिक डायरेक्टर का भी गाना गाया था।

0: तो मैंने कहा ब्रह्मन जी आप गाओ। बोलते मैं कैसे गाऊँ इतना मुश्किल गाना। मैं कहा गाओ तो सही, ट्राई तो करो। उन्होंने घर में रिहर्सल किया।
1: अच्छा।
0: हाँ रिहर्सल किया और माइक्रोफोन पर गए, अच्छी आवाज लग रही है और नई आवाज लग रही,
1: और राजबब्बर पे फिट हो रही है।
0: राजबब्बर पे फिट हो गई और मुझे लगता है शायद 3-4 घंटे में गाना रिकॉर्ड हो गया उनका।
1: क्या बात है।
0: वो आज भी हिस्ट्री है ये गाना,
1: और ये गाना बड़ा हिट है,
0: बहुत हिट है, आज भी चलता है ये गाना
1: जी।
0: सुना जाए इसको
1: जरूर आप थोड़ा गाएंगे।

0: बारिश के और भी गाने थे जो बहुत लोकप्रिय हुए थे। मुझे याद आता है कि किशोर कुमार का एक गाना था हुस्न की वादियों में प्यार पलता, बड़े ऊंचे सुर का गाना था, बहुत अलग तरह का गाना था। फिर घटा छा गई है, बहार आ गई है, दुनिया तो याद रखना, और एक बच्चे को खिलाने वाला गाना आशा भोसले ने गाया था, आरे मुंजे। तो वारिस फिल्म के इन गानों के हिट होने का कुछ फायदा मिला?
1: खास नहीं।
0: क्यों?
1: ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चली थी,
0: डिले बहुत हो गई थी।
1: डिले भी हो गई थी और ये फिल्म आई थी उसके साथ तुझे याद करेगा
0: कयामत
1: पापा कहते हैं। हाँ, दोनों सेम डे रिलीज हुई थी।
0: जी जी,
1: वो कयामत से कयामत तक पहुंच गई थी और बारिश हमारी पीछे रह गई।
0: जी जी जी।
1: तो इससे भी कुछ संगीतकार की जोड़ी को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
0: जी जी जी।
1: लेकिन मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं लगा हुआ था अपने काम में।
0: जी जी। अब जगदीश खन्ना का जिक्र हमारी बातचीत में इस समय बहुत सारा आया है, तो पेंटर बाबू और उसके बाद कुछ फिल्मों में उत्तम जगदीश साथ में आते हैं
1: जी।
0: और फिर जब जगदीश नहीं रहते उसके बाद आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी है और
1: दिल तो पागल से शुरू होती है।
0: जी, दिल तो पागल है से। तो टीम में काम करना और फिर स्वतंत्र रूप से काम करना, इसमें क्या फर्क रहा?
1: देखिए, टीम में काम करने से क्या है कि भार बहुत कम पड़ जाता है क्योंकि गाना वो बना रहा है तो मैं अपना म्यूजिक बना रहा हूँ जो मैं काम कर रहा था इतने सालों से।
0: जी जी।
1: तो मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जमीन प्रोड्यूस कर सकूंगा।
0: जी,
1: जमीन के ऊपर फूल लगाना वो तो मालिक का काम है लेकिन जमीन खरीदना बहुत बड़ी बात होती है।
0: जी।
1: तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं गाने इतने आराम से और ऐसे बन जाएंगे, मुझसे गाने ऐसे इजीली बन जाएंगे।
0: जी।
1: लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, आई एम एंजॉयिंग दैट साइड आल्सो एंड दिस साइड आल्सो।
0: जी, दोनों काम अब आपको खुद ही।
1: उत्तम जगदीश के साथ भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई काम करने में, बड़ा मजा आया काम करने का। पेंटर बाबू क्लर्क हो गया क्योंकि उसमें मैं तो साथ था ही।
0: हाँ।
1: ट्यून मैं भी बना रहा था, उसके भी आइडिया आ रहे थे, तो एक अच्छा एक कम्बिनेशन बन रहा था और बना भी, जितना भी हुआ, चला नहीं चला वो अलग बात है। तो अभी देखिए, गाना है भूपेंद्र जी का, उस गाने में मुखड़ा नहीं है।
0: जी,
1: मुखड़ा नहीं है, अंतरा नहीं है, वो फ्री

0: वर्स है।
1: अच्छा
0: हाँ, वो आप सुनिएगा उसको, वो फ्री वर्स है, मतलब जैसे स्टोरी लिखते हैं ना ऐसे मनोज जी की लिखी हुई है वो।
1: गजब।
0: तो मनोज जी ने मुझे कहा उत्तम ये मेरी एक स्टोरी है, क्या इसमें गाना बन सकता है? तो मैं पूरी उनसे वो लिख के घर आया, और घर आते ही वो शुरू हो गया।
1: अच्छा।

0: उत्तम जगदीश की जोड़ी बहुत ज्यादा काम क्यों नहीं कर पाई?
1: इसको आप ईगो कह दीजिए या इसको मेरी भावना कह दीजिए, यूनुस जी, मैंने आज तक किसी से काम मांगा नहीं।
0: जी जी,
1: कभी नहीं मांगा। जितना भी आप मेरा काम देख रहे हैं, जितना भी मेरा म्यूजिशियन का काम देख रहे हैं, सब घर चल के आया है।
0: जी जी,
1: मैंने वायलिन सुनाई, फादर ने कहा कि इसको सुन लीजिए, इसको काम दीजिए, ये वर्ड कभी नहीं आया।
0: जी जी,
1: तो मैंने वायलिन सुनाई, उसके बाद मैंने उनके मरने तक काम किया, चाहे वो अन्ना हो
0: जी,
1: वसंत देसाई हो या चित्रगुप्त जी हो या कोई भी हो, मैं इनको सबको वायलिन सुनाई थी मैंने।
0: जी,
1: क्योंकि वो काम को काम दे रहे थे।
0: जी जी,
1: मेरी प्लेइंग को वो काम दे रहे थे। अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट किया, उससे उसको पता चला कि वो अरेंजमेंट अच्छा करता है, उससे उसको पता चला, तो एक काम बढ़ता चले गया मेरा एज ए अरेंजर, काम बढ़ता चले गया।
0: जी,
1: फिर काम चलते चलते चलते चलते म्यूजिशियन हो गई, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं।
0: जी,
1: तो काम हम ज्यादा क्यों नहीं कर सके, क्योंकि हम किसी के पास गए नहीं काम मांगने। और ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये कहती है कि आप आओ तो हम काम देंगे। आज तो बहुत ज्यादा है
0: जी,
1: पहले भी थी, हम किसी के पास गए नहीं। और हमको लगा कि मनोज जी की फिल्म कर लिया तो मतलब ये तो टॉप एंड है ना।
0: जी जी,
1: टॉप एंड से शुरू होंगे तो अपने आप
0: काम आएगा,
1: काम आएगा। बट क्योंकि फिल्म नहीं चली, म्यूजिक बहुत चला, फिल्म पंजाब में चली।
0: जी जी,
1: बट मंडी हाउस में फिल्म नहीं चली। मंडी हाउस मतलब मुंबई बॉलीवुड, जिसको आज आप बॉलीवुड बोलते हैं।
0: जी जी,
1: वरना ये पहले फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: जी,
1: फिल्म इंडस्ट्री में हिट होना बहुत जरूरी होता था। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हिट हो गए तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा।
0: जी,
1: तो फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म चली नहीं थी,
0: उस वजह से वो काम में कन्वर्ट नहीं हुआ।
1: काम में कन्वर्ट नहीं हुआ। और फिल्में मिली भी तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ यहाँ पे।
0: जी,
1: पेंटर बाबू का जब पहला गाना रिकॉर्ड हुआ ना, ये वक्त सिकंदर होता है, तो हंगामे हो गए थे इंडस्ट्री में। बहुत कमाल का गाना हुआ, और मनोज कुमार का गाना करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड डे पंचम की रिकॉर्डिंग थी आर.डी. बर्मन की, तो मैं अपनी वायलिन लेके जा रहा था, तो सेकंड फ्लोर में स्टूडियो था, ऐसे जा रहा था तो सामने से बहुत बड़े उस टाइम के एडिटर थे, दो लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़े एडिटर थे, तो वो आ रहे थे सामने। अरे उत्तम, मैंने कहा हाँ, तुम वायलिन बजाने आ रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्यों क्या हुआ? जहाँ से संगीतकार खत्म होते हैं वहां से तो तुमने शुरू किया कल, और पूरी इंडस्ट्री में हंगामा हो गया, और सेकंड डे तुम वायलिन बजाने आ गए। तो मैंने कहा जी बात ऐसी है कि संगीतकार का आना जाना है, वायलिन का यहाँ रहना है।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: मैंने कहा ये वायलिन जो है ये
0: कायम रहेगी,
1: मेरे साथ कायम रहेगी, और संगीतकार तो आना जाना है, कभी आएंगे कभी जाएंगे।
0: ये जो वायलिन आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसकी भी एक दास्तान है।
1: जी, इसकी दास्तान मैं बताता हूँ आपको।
0: जी,
1: आज मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है।
0: जी,
1: कि आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन आपके पास हाथ का हुनर होना बहुत जरूरी है।
0: जी जी,
1: अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप भूखे नहीं मरोगे, और वो चीज प्रूफ हो रही है आज।
0: बिल्कुल,
1: एक चाय वाला करोड़ोपति बन गया, एक भेल वाला अरबों

0: पति बन गया, एक बड़ा पाव वाला बिल्डिंग बना ली, तो काम छोटा लगता है लेकिन मेहनत के पीछे फल है।
1: जी
0: तो मेरी यही जो मेहनत है वो मुझे आज तक यहाँ ले आई। मुझे लता मंगेशकर पहला अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का,
1: जी
0: लता मंगेशकर अवार्ड तो मुझे दिया गया। तो स्टेज पे मैंने बोला, मैं कहा जी मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में वायलिन दी थी।
1: जी
0: बोला बेटा ये वायलिन तेरे को दे दी है, वो सामने रास्ता है, रास्ता का एंड नजर नहीं आ रहा, ये रास्ता तो कहाँ तक पार करेगा तेरे ऊपर है।
1: हमने तो वायलिन दे दी
0: हमने तो तेरे को वायलिन गाड़ी दे दी है,
1: जी
0: अभी गाड़ी को कहाँ तक ले जाता है। तो मैंने कहा जी उनका वायलिन दी हुई मैं आज स्टेज पे बैठ पहुंच गया कि आज मुझे लता मंगेशकर का अवार्ड मिल रहा है।
1: क्या बात है
0: ये तो मेरे लिए पद्मा से भी ऊपर अवार्ड है, और लता मंगेशकर के नाम का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। और
1: जी
0: मुझे तीन तीन लता मंगेशकर के अवार्ड मिल गए,
1: जी
0: एक यहाँ का मिला, इंदौर गवर्नमेंट का मिला, अभी एक रायपुर में भी एक अवार्ड लता मंगेशकर। तो मेहनत और आपका हाथ का हुनर
1: जी
0: ये बहुत बड़ी बात है, बताइए।
1: बिल्कुल।

0: म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा दोबारा शुरू हुई उत्तम सिंह के नाम से जब यश जी ने अपनी एक फिल्म बनाई।
1: जी जी उन्हें
0: वो कहानी सुनना
1: चाहिए। बात की बात है, क्या हुआ कि उत्तम जगदीश थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, मेरा अरेंजमेंट चल रहा था तो जगदीश मेरे साथ कभी कोरस भी गा लेता था, कभी रिदम भी बजा लेता था, तो उसका घर भी चल रहा था, मेरा घर भी चल रहा था। तो 92 में एक फिल्म शुरू हुई तीर अंदाज करके,
0: जी
1: कवन मुकुट उसके प्रोड्यूसर थे
0: जी,
1: और मनमोहन सिंह डायरेक्ट कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: और उसकी स्टारकास्ट थी श्रीदेवी और सनी देओल, बहुत बड़ी फिल्म थी वो। वो फिल्म बन जाती तो एक जैसे मुगल आजम याद है ना
0: जी,
1: ऐसे लोग इस फिल्म को याद रखते, इतनी बड़ी फिल्म थी वो। तो फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड हो गया, दूसरा गाना हम लोग के लिए सुबह 9 बजे का टाइम था, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं राइटर कवर जलालाबादी राइटर थे वो बैठे हुए हम लोग, तो फोन की घंटी बजी लैंडलाइन की, तो जगदीश 9 बजे आ जाते, 9:15 बज गए थे, 9:15 बजे घंटी बजी कि जगदीश खन्ना ऑफ हो गए।
0: अरे अरे अरे,
1: हम सब हैरान हो गए, सब सिटिंग वीटिंग वहीं छोड़ी, उनके घर गए तो पता चला जी कि वो निकल रहे थे सिटिंग में आने के लिए, तो तुलसी को पानी डाल रहे थे, तुलसी के पेड़ को, वहीं पीछे गिर गए।
0: अरे बाप रे।
1: और वहीं खत्म हो गए,
0: हार्ट अटैक आया।
1: और बहुत बड़ी फिल्म थी, इतनी बड़ी फिल्म कर रहे थे तो बड़ी खुशी थी। वो फिल्म बंद हो गई
0: जी,
1: वो फिल्म बनी नहीं, जिंदगी चलती रही। 93 या 94 में मुझे उषा मंगेशकर जी का फोन आया कि उत्तम भैया, मैंने कहा जी, दीदी का एल्बम करना है साईं बाबा का।
0: अच्छा।
1: मैंने कहा जी ठीक है करते। तो मैं घर गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, इसलिए मैं आपको बड़े प्यार से पूरी बता रहा हूँ।
0: यस यस बिल्कुल।
1: तो मैंने कहा जी ठीक है, तो इसमें बात हुई और एक साल निकल गया। एवरीबडी लव साइंस गाना है उसके अंदर, वो मनोज जी का लिखा हुआ और वो जगदीश खन्ना का बनाया हुआ है।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो उसको मैंने ठीक ठाक करके उसको रिकॉर्ड किया, तो दीदी भी खुश हो गई, टिप्स वाले भी खुश हो गए, मनोज जी भी खुश हो गए। फिर उसके बाद दूसरा गाना बना, दूसरा गाना बना तो वो भी मुखड़ा था इसका, जगदीश का
0: जी,
1: अंतरे उसने बनाए तो अंतरे मैंने बनाए
0: जी,
1: दूसरा गाना भी रिकॉर्ड हो गया। अब जगदीश की कोई कंपोजिशन नहीं है, तो तीसरा गाना शुरू हुआ तो मैंने बनाया, तो मैंने जाके मनोज जी से लिखवाया, फिर उसमें उन्होंने भी लिखा, भरताचार्य ने लिखा
0: जी।
1: तो वो गाना जब मैं रिकॉर्ड करने गया तो दीदी आई, उन्होंने गाना लिखा, रिकॉर्ड किया, तो संजीव कोहली मुझे पूछते ये किसका बनाया हो, मैंने कहा ये मेरा, तो जगदीश का, जगदीश के पहले 2 गाने हो गए, ये आपने बनाया, मैंने कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 गाने रिकॉर्ड किए हमने
0: जी, उसमें से 2 जगदीश जी के थे,
1: डेढ़ जगदीश का था,
0: डेढ़ थे जी हाँ।
1: तो आप सोचिए कि कितना कॉन्फिडेंस होगा दीदी को मेरे ऊपर कि वो आती थी, क्या बन रहा है उनको पता नहीं
0: जी,
1: टिप्स वालों को क्या बन रहा है पता नहीं, मनोज जी बोले ये लिख लिया उत्तम, ये लिख लिया हो गया। नारायण अग्रवाल का एक गाना है जी, जी। तो

0: दीदी आती थी, मैं रिहर्सल कराता था, गाती थी, चले जाते थे। 12 गाने हमने रिकॉर्ड किए। हर गाने में मुझे संजीव कोहली पूछे कि ये गाना आपका है, मैंने कहा हाँ ये मेरा है। और वो गाना, वो एल्बम हिट हो गई बहुत।
1: जी जी
0: दीदी की वो आज भी वो एल्बम बहुत बड़ी हिट है।
1: जी।
2: उजाले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का 4th भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: उजाले उनकी यादों।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलो।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार और शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई के IIT मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन को एक ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा को आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी।
4: दिस इज अ हिस्टोरिक डे फॉर तमिलनाडु। टुडेज प्रोग्राम इन्वॉल्व्स प्रोजेक्ट्स वर्थ 13,000 करोड़ रुपीज। वी आर इनोग्रेटिंग मेनी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स एंड लेइंग फाउंडेशंस फॉर न्यू वंस। सम विल मेक डेली ट्रैवल इजियर, अदर्स विल स्ट्रेंथन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, टुगेदर दे विल क्रिएट जॉब फॉर यंग पीपल अक्रॉस तमिलनाडु। आई कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल ऑफ द स्टेट ऑन दिस ओकेजन।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारों में बदलाव के बावजूद तमिलनाडु के विकास और वहां के लोगों के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने तमिलनाडु के मंदिरों, वैज्ञानिक संस्थानों और मेट्रो रेल नेटवर्क का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ चल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को नवरात्र की बधाई दी। इससे पहले दिन में श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी हिस्से का उद्घाटन किया। इसे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने संयुक्त रूप से नई मेट्रो सेवाओं को झंडी दिखाकर ट्रेन में यात्रा की। ये हाल ही में आरंभ दूसरे चरण के कॉरिडोर 4 का अंग है। इसमें लगभग 15 किलोमीटर में फैले 11 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में तमिलनाडु के जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय का 5 दशकों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की ताकत बनना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया समाधान की ओर देख रही है और युवाओं में ये समाधान देने की क्षमता है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और या

यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार, इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल की सेवाएं समाप्त कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए। सऊदी अरब ने कहा कि किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की है। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर एमटी जेम नंबर 2 पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा के तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस त्रिशूल भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 26 में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के प्लायमाउथ पहुंच गया है। यह अभ्यास रॉयल नौसेना के साथ किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास के तट पर 2 चरणों में बृहस्पतिवार तक चलेगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। वहीं उदयवीर सिद्धू ने मिस्र के काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उदयवीर ने फाइनल में कुल 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आपने सुना दुर्गा माँ फिल्म से इस भक्ति रचना को आवाजें थी चांद्रानी मुखर्जी व साथियों की। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: दीदी आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
1: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
0: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
1: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
2: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन फिल्मों से, FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज के दिन आप सुना करते हैं वीकली पल्स।

युवा मंच कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को वर्षक टोश की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों, शारदीय नवरात्रों के आप सभी युवा साथियों को, हमारे श्रोताओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि आपका दामन हमेशा हमेशा खुशियों से, संपन्नता से, सुख समृद्धि से भरा रहे। तो युवा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन होता है रविवार, और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं वीकली पल्स, यानी जिसमें हम आपको देते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल अपडेट्स, और उसके साथ साथ जो भी विशेष दिन रहता है उसके बारे में भी हम आपके साथ जानकारी जो है वो साझा करते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है वो हम आधे घंटे तक आपके साथ रहेंगे, जानकारियां भी देंगे, बातें भी खूब सारी हम अपने युवा साथियों के साथ करेंगे, और आपका मनोरंजन भी करवाएंगे खूबसूरत गीतों के साथ। तो चलिए लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक।

0: फैमिली के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
1: LIC लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
0: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
2: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। युवा साथियों, जैसा कि हम पहले भी कह चुके कि आज के दिन रहता है नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल अपडेट्स का, लेकिन आज विश्व बालिका दिवस है तो थोड़ी सी जानकारी हम इसके ऊपर भी आपके साथ साझा करेंगे। युवा साथियों, हर साल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व बालिका दिवस। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। इसके अगर हम इतिहास की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर सन 2011 को एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। पहली बार ये 2012 में मनाया गया। और अगर इसके महत्व की बात करें तो ये दिन बाल विवाह, लैंगिक असमानता और भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देता है। और थीम की अगर हम बात करें तो वर्ष 2026 की थीम है। इस वर्ष की आधिकारिक थीम बाल विवाह समाप्त करें और बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करें। तो चलिए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। युवा साथियों, कहीं जाइएगा मत, फौरन हाजिर होते हैं आपकी सेवा में लेकर अन्य जानकारियां। लेकिन तब तक आप सुनेंगे ये प्यारा सा गीत।

0: सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 MHz पर। और आज के सफर में मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा कटोच, और बात हो रही है अब वीकली पल्स पर। और सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बातचीत के मौके गंवा रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका अब रूस से डीजल खरीदेगा। जेलेंस्की ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे रूस को युद्ध जारी रखने के लिए और पैसा मिलेगा। युवा साथियों, फिर लौटेंगे जानकारियों के साथ, तब तक लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
0: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और युवा मंच कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज दिन है रविवार और आज के दिन हम लाते हैं वीकली पल्स और इसमें अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर की। जी हाँ युवा साथियों, PM मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2 पूनमल्ली बड़ा पलानी खंड का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री के साथ मेट्रो की सवारी भी की। इस दौरे पर उन्होंने IIT मद्रास के ब्रेन सेंटर का दौरा किया और जलकंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान मेट्रो ट्रेन सेवाएं बंद करने, इंटरनेट बाधित करने और लोगों को हिरासत में लेने से जुड़ी याचिकाओं पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलनी चाहिए, इंटरनेट बाधित नहीं होना चाहिए और लोगों की आवाजाही नहीं रोकी जानी चाहिए।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: युवा साथियों, पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में, तो चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग, बागवानी, पशुपालन और अन्य विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों में लगभग 14,000 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। एशियन गेम्स में कबड्डी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली ऋतु नेगी सहित 4 खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। और मौसम की बात अगर हम करें तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और कई जगह ठंड बढ़ने वाली है, तो अब घड़ी की सुइयां बोल रही हैं कि अनुमति लेने का समय आ गया है। लेकिन अनुमति लेने से पहले कहना चाहेंगे कि बहुत अधिक ठंड हो गई है, ऐसे में आप अपना, बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलते हैं अगले कार्यक्रम में, फिर से मिलेंगे। चलते चलते बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के प्रसारण में शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामे गजल। शाम 6:30 पर महिलाओं के लिए विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा सुनवाया जाएगा। इसमें नवरात्रि विषय पर बातचीत की जाएगी। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको डायल करना होगा दूरभाष नंबर 01892224391। इसको डायल करके आप हमारे कार्यक्रम मिंजरा से जुड़ सकते हैं। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। इसमें जानकारियों के साथ साथ लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

रात्रि 8 बजे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा। देशगान आप सुना करते हैं रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे निर्माता निदेशक गुरुदत्त द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। रात्रि 9:30 का प्रसारण समय रहेगा गीतों की महफिल कार्यक्रम का। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07 पर प्रादेशिक समाचार। रात्रि 8:15 पर हिमवीर्स कार्यक्रम भी आकाशवाणी शिमला से ही रिले किया जाएगा। श्रोताओं, आइए अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी दिल्ली से शाम के प्रसारण में रिले होने वाले कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे व रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की

पाएगी। श्रोताओं, ये थी रूपरेखा। हमारे धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के प्रसारण में शेष प्रसारित वरीली होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर पूर्व भाजपा कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कुल्लू जिले के पतलीकूहल में आज जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए बड़ी धनराशि उपलब्ध करवाई, लेकिन राज्य सरकार इसका समय पर उपयोग नहीं कर पाई है। स्थानीय निकाय चुनावों में मिली अभूतपूर्व सफलता पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं व प्रदेश की जनता को बधाई दी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित भाजपा के अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और कौशल के उपयोग से समाज में न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। शिमला के समीप राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता का आकलन उनकी व्यवसायिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान से भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और निरंतर प्रयासों के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने का आह्वान किया।
1: आज आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं। आज से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तो यह केवल शुरुआत है, जीवन में कई चुनौतियां आपका इंतजार कर रही है। कामयाबी के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन ही आपको अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगी। जीवन में असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन उनसे घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
0: सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि देश अब स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। एनआईटी हमीरपुर में शिक्षा महाकुंभ वर्ष 2026 के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को आधुनिक तकनीक, एआई अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आगे आना होगा। अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार और सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया। भाजपा ने प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार डीन और रजिस्ट्रार को सौंपने संबंधी आदेश पर उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के मामले में कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल

0: ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक विवाद लगातार बढ़ रहे हैं और न्यायालय के आदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। गुमारवी में संस्कार सोसाइटी ने आज युवा प्रोत्साहन व सहयोग कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर ग्रामीण व स्कूली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समारोह में भारतीय महिला कबड्डी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रीति ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सरकार सोसाइटी के संस्थापक महेंद्र धर्माणी ने कहा कि संस्था नशे जैसे गंभीर सामाजिक बुराई के खिलाफ लगातार जागरूकता बढ़ा रही है।
1: पिछले 3 वर्षों से संस्था ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता करने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में आज युवा मंच, जिसमें यूथ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और हमारे घुमारवीं क्षेत्र के जो क्लब हैं उनको बुला करके वास स्थापित किया गया और उनको खेलने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि वो अपने घर गाँव में खेल के साथ साथ युवाओं को, लोगों को इस नशा के खिलाफ जागरूक कर सकें।
0: मौसम। प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा व ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम जारी है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति जिले में ताजा बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर वर्षा व चोटियों पर हिमपात की संभावना जताई है। भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने आज हमीरपुर जिले के समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पूर्व सैनिकों के कल्याण, वन रैंक वन पेंशन सहित संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई। धूमल ने कहा कि भाजपा का पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ पार्टी के सबसे अनुशासित प्रकोष्ठों में से एक है और पूर्व सैनिकों ने देश की सेवा में अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामी गजल। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये रही।

0: अभी आपने सुने जगजीत सिंह व आशा भोसले के युगल स्वरों में गाई ये गजल। गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामी गजल। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: ओ बुल्ला बुली अपने परिवार की फिकर ता सपना जो होंदी है, पर भविष्य की सुरक्षा बारे तुसा कदी सोचा? हां जी, इसा वास्ते डाकघर ले आया है डाक जीवन बीमा। अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य दा भरोसा। डाक जीवन बीमा च कई योजनाएं हैं, जिन्हा की सुरक्षा, संतोष, सुविधा, युगल सुरक्षा ते बाल जीवन बीमा। अपनी जरूरत अनुसार योजना चुनो ते परिवार ते भविष्य जो सुरक्षित बनाओ। हुन शहरी लोगों वास्ते भी ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI की सुविधा आई गई है। गांव हो या शहर, अपने परिवार की सुरक्षा वास्ते डाकघर तुहांदे कन्ने है। ते फिर देर कजो करा दे, अजे अपने नजदीकी डाकघर जान्यो ते डाक जीवन बीमा की पूरी जानकारी ले आन्यो। डाक जीवन बीमा, अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य दा भरोसा।
0: कार्यक्रम में फिर से आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति तलत अजीज की आवाज में गाई ये गजल।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी
2: कार्यक्रम में फिर से आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह मिताली सिंह के युगल स्वरों में गाई ये गजल।

अभी आपने सुनी भूपेंद्र सिंह मिताली सिंह के युगल स्वरों में गाई ये गजल। गजलें समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

मोहम्मद हुसैन अहमद हुसैन के युगल स्वरों में गई इस गज़ल के साथ हमारा आज का शामे गज़ल कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे गज़लों पर आधारित कार्यक्रम शामे गज़ल FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा।

0: कार्यक्रम मिंजरां सुनने वालियां सारियां साढ़ियां जिहड़ियां बोबो भैणां हैं, न्याणे स्याणे हैं, साढ़े जवांदड़े भाऊ हैं, बजुर्ग हैं, तिना सारियां तुहाड़ी बड़की बोबो दी तरफ ते प्यार भरी नमस्ते। तां भैणो कदियां तुहां अज तां सारियां ते पहले मैं तुहानू देणियां मुबारकां नवरात्रियां दियां। नौ नवरात्रे शुरू होईए, कने अज तां मेरियां बोबो भैणां जिहड़ियां सै बड़ियां व्यस्त रहियां होणियां पूरा दिन भर, क्योंकि नवरात्रियां दी भी बड़ी भारी तैयारी हुंदी है ना जी। तां तुहां सारियां यों बड़ियां सारियां झोलियां भरी भरी के मुबारकां तुहानू नवरात्रियां दियां, कने शुभकामनां तुहानू नवरात्रियां दियां। कने मैं माँ दुर्गा कन्ने ए प्रार्थना करगी कि तुहां सारियां दी झोली जिहड़ी है, तुहाड़ा दामन जिहड़ा ऐसा खुशियां कन्नै परोया ही रहे, कदी खाली ना होए, भरी भरी के खुशियां माता रानी तुहां सारें दे, निक्कियां न्याणियां दे, जवानड़ियां भाऊआं दे, बजुर्गां दे, मेरियां बोबो भैणां दे। गल इ'यां है भी अज अहां गलबात करनी है नवरात्रियां पर, ठीक है। तां कुछ जेहड़ा मिंजो पता नहीं होगा सै मेरियां बोबो भैणां मिंजो दसना, कने जेहड़ा मिंजो पता होगा सै मैं अपनियां बोबो भैणां दसना। कने ख्याल रखनियो मेरे जवानदड़े भाऊ, भाई इस कार्यक्रम च गलतियां ने फोन मत करदे, क्योंकि मिंजो भी खरा नहीं लगना फिर गलाना कि भाऊ ए प्रोग्राम तां मेरियां बोबो भैणां ताईं है ना। हाली मैं नंबर दसी नहीं पाई है, कने मेरियां बोबो भैणां जुड़ना शुरू होई हैं, तां आ गलबात करदे। हैलो, अज मौसम वैसे खराब है, कने बड़ी वैसे तो अच्छी गल हुई कि बोबो भैन जुड़ी, पर बड़ी देर दे बेचारे फोन करा दे हे तो फोन कटोई है ना। तो अज अहां नवरात्रियां पर गल करनी है अपनी भैणा कन्ने, तो हम जो दसने कियां कियां मनांदे है ना। हैलो,
1: हैलो,
0: हाँ जी नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी मैडम जी, नमस्ते,
0: क्या हाल चाल है, ठीक है न। हाँ भी बहुत बढ़िया। पहले अपना नाम दसा, फिर ग्राएं दा नाम दसा, कने फिर बाकी गलबात करदे हां।
1: मधु बोला दी पठियारे ते।
0: मधु जी तुहां साढ़े नियमित श्रोता हैं है ना,
1: हां जी।
0: तां क्या बोलना चाहंगे, कने थोड़ा देया तुहां।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: कार्यक्रम मिंजरा इस वेला तो सुना।

0: उन शहरी लोग का वास्ते भी ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI की सुविधा आई गई है। गांव हो या शहर, अपने परिवार की सुरक्षा वास्ते डाकघर तो आंदे करने है, तो फिर देर कजो करा दे, अजय अपने नजदीकी डाकघर जान्यो ते डाक जीवन बीमा की पूरी जानकारी ले आन्यो। डाक जीवन बीमा, अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य का भरोसा।
1: ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसका पेट भरा हो। ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसको सांस में तकलीफ है। और अब जानती हूँ, अगर खांसी जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज तो बिल्कुल नहीं, तुरंत इसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाऊंगी। निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
3: कार्यक्रम मिंजरा इस वेला तुह सुना दे आकाशवाणी दे धर्मशाला के इंद्र ते कने अज मैं थोड़े कन्ने थोड़ी बड़की बोबो वर्षक टोच कने तुह भैनों मेरे कन्ने जुड़ा दियां भी हैं कने गां भी जुड़ना। तुह मिंजो फोन नंबर दसना नहीं दिता कैं कि तौलियां तौलियां जुड़ी गई हैं, तो मैं एक बार फिर दसी दियाँ कि 01892224391 ये साढ़े स्टूडियो का नंबर है। कने इस पर कॉल करके तुह नवरात्रियां पर मेरे कन्ने गलबात जिहड़ी है करी सकदे हन। दिखा भी घर च तो पूजा पाठ उंदा ही उंदा, पर जितने भी साढ़े मंदिर हैं जियां ज्वालामुखी मंदिर है, बगलामुखी मंदिर है, जयंती माता मंदिर है, कांगड़ेवाली माता है ना, तो ये सारियां चामुंडा देवी मंदिर है, ये सारियां जिहड़ियां देवियां ने इत्थों भी अलग अलग तरीके कन्ने जिहड़ा ऐसा है नवरात्रियां दा जिहड़ा त्यौहार ऐसा है मनाया जांदा है ना। कने कुथी झंडा रसम हुंदी, जियां ज्वालामुखी मंदिर दी अगर अहां गल करिए तां इत्थू नवरात्रियां दी शुरुआत च जियां विशेष झंडा रसम जिहड़ी है सै मनाई जांदी। कने इस कन्ने शुरू हुंदे नवरात्रे, कने मतलब जिहड़ा माता दा दरबार है ते सी कई क्विंटल फुल्लां कन्ने जिहड़ा ऐसा है सजाया जांदा। कने नौ ज्योतियां जिहड़ियां ने तिसा दे दर्शन करने वास्ते लखां भगत जिहड़े हैं सै आउंदे हैं, क्योंकि हिमाचल जिहड़ा है सै देवी देवतियां दा इत्थों वासा है। तो हर एक स्टेट ते जिहड़े श्रद्धालु हैं सै साड़ियां इन्हां देवियां दे दर्शन करने वास्ते आउंदे ने। हैलो, हैलो जी, वो पाइया सर माँ मत करा, तौले तौले गल करा करा, टाइम बड़ा घट हुंदा जोरे ने गला कने।
4: अच्छा जी, नमस्ते जी।
3: नमस्ते जी, अपना नाम दसा कने अपनिया ग्राएं दा भी नाम दसा कने नेड़े तेड़े कोई बोबो भैन है तो तिसा दा भी नाम दसा।
4: अच्छा जी, मैं बोला दीदी समलोठिए ते।
3: अच्छा जी, ता तुहां मिंजो दसा भी
4: बड़ी बड़ी बधाइयां
3: तो बड़े खराब हैं मेरे ते पहले दे दित्तियां दोहां बधाइयां, कने मैं भी चट चोली अड्डी कने तुहाड़ियां बधाइयां जिहड़ियां सै अपनियां गोदां च पाई लईयां है ना।
4: अच्छा जी, अच्छा जी।
3: तां मनाए कियां कियां मनाए अज तुहां नवरात्रियां दा? अज तां देवी मां कुछ खास ही प्रसन्न लगा ही मिंजो कहें कि सवेरे बरखा शुरू होई गई है ना, बड़े गजदी बजदी आई अज माता ना, भई अंबर बोले मैं भी कट नहीं, कने बिजली दे तड़ाके लसाके बोलन भई अहां भी कट नहीं है ना।
4: हां,
3: कने पहली सर्दी इतनी खतरनाक हुई भी रजाइयां कढ़ना पई गई नहीं, ता गड़ाकियां पटाकियां ने कने ये ढोल नगारियां कने माता रानी आई साड़ी, ता दसा भी कियां कियां मनाया अज पहला नवरात्रा तुहां?
4: पहला नवरात्रा ता कुछ खास नहीं गया, कीर्तन दे कीता सुबह ख्याल यहां दे।
3: अच्छा जी, पत्री पुत्री नहीं पांदे तुहां?
4: पांदे जी, पांदे, मैं ता गाटी पांदी पर मेरी जठानी पांदे।
3: अच्छा, ता क्या क्या करदे तुहाड़ी जठानी?
4: टाइम नहीं हुंदा,
3: भगवान ते इयां टाइम कढ़ी लेना चाहिदा, दिखा कोई कम अहां छड्डदे नहीं, अपना खाना नहीं छड्डना, पीना नहीं छड्डना, सौना नहीं छड्डना, कम कमाना नहीं छड्डना, तो फिर भगवान ने दा नाम लेना कियां छड्डी दिंदियां तुहां?
4: मेरी जठानी दे बच्चे वड्डे होई ते सब पूजा पाठ ज्यादातर सही करदे घरे।
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी गल है, चलो घरे च धूप धुखना चाहिदा ना है ना, इसते क्या हुंदा कि अच्छी जिहड़ा माहौल बनी जांदा घरे च। तां कियां कियां पाई पत्री तुहाड़ियां जठानियां?
4: इसदा
3: कुछ विशेष कारण तीन तीन रखने दा की क्या?
4: नहीं पता रे मिंजो।
3: अच्छा, तो अंजो नहीं पता, चलो इतनी की भी जानकारी दी थी, ये भी बड़ी बड़ी गल है, क्योंकि साढ़े जिहड़े एदे दियां रस्मां ना

दिन त्यौहार जेड़े हैं ने आस्ता आस्ता आहा ना जियां आधुनिकता दी तरफ जा दे तां आहा भुलदे जा दे। मेरा दे विषय मैं तां लैंदी इस कार्यक्रम च क्योंकि ये विशेष करके ना साड़ियां बोबो भैणा वास्तै आउंदा है ना, कन्नै बोबो भैणा ही तां सारा घर संभालदियां, तां मैं चाहुंदी कि जिहड़ी बोबो भैणा ही ऐड हुंदियां घरै दियां है ना क्योंकि घर तां तिन्हां चलाउणा हुंदा, तां अगर सह जागरूक होण अपने रीति रिवाज अपनी संस्कृति दे प्रति तां सह दसां बंदियां होरनां ओ मतलब जागरूक करी सकदियां घरै च है ना। दिक्खा जैलू साडे संयुक्त परिवार हुंदे तां सस सौरा भी होने, दराणी जठाणी भी होने, निक्के न्याणे भी होने, घरे आला होना, अपने बच्चे होने, मतलब बोलदे जियां स्याणे गलांदे हे ना इक जनानी पढ़ी होए तां असें 11 बंदे पढ़ाई सकदी है ना, तां सह हिसाब हुंदा घरै च भी अगर जनानियें अपने रीति रिवाज रस्मां संस्कृति लिबास सब कुछ पता होऐ ना तां सह बाकियें भी जेह्ड़ा ऐ सह मार्गदर्शन जेह्ड़ा तिन्हां दा सह करी सकदी है ना। तां तुसां साढ़े कन्नै जुड़े इस ताईं तुहाड़ा मता मता धन्यवाद, कन्नै इ'यां ही सुनदे रेहा तुसां आकाशवाणी धर्मशाला, कन्नै जुड़े रेहा तुसां साढ़े कन्नै है ना जी। जुड़ने वास्तै इक बारी फिरी ते तुहाड़ा धन्यवाद।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम मिंजरंश फिर सारा जेडे साढ़े इस वेला जुड़े न श्रोतागण साड़ियाँ बोबो पैणा न्याणे स्याणे जो अंदड़े पाओ तुहाड़ा सारियां दा फिरी ते स्वागत है। हुण अहां कार्यक्रम दे अंतिम क्षण च पुजी हन। कार्यक्रम मिंजरा इस वेला तुहां सुणा दे आकाशवाणी दी धर्मशाला के इंद्र ते कने अज मैं तुहाड़े कने तुहाड़ी बड़की बोबो वर्षा टूच तो गल ही है भी मैं पूछा हाँ भी नवरात्रे जड़े हैं सह क्यों मनाते तो जितनी कि मुझे जानकारी है कने जितना कि मैं मतलब कि खोजी पाई है कने साड़ियाँ दादियाँ नानियाँ ते जड़ा आहां सुनिया है कने जड़ा आहां धार्मिक ग्रंथां च पढ़िया भी है बोलते भी जालू जे राम कने रावण का युद्ध लगा हा तो क्या होया कि राम जड़ा पहला दिन था तो इस जियाँ संझा वेले क्या होया कि युद्ध जड़ा सह हारते नज़र आवा दे थे कुसी पता ना लगे भी इतने पराक्रमी जेड़े हैं सह कियां भी हारा दे इस वक्त कने कोई भी चीज़ जेड़ी है सह रावण पर असर नहीं करा दी ही तो जालू जे मतलब कि शाम हुई तो सारे पूछा भी भगवान ये क्या गल भी तुहां कने इतना ये होआ दा तो फिरी रामचंद्र भगवान ने बोलिया था कि मैं एक तीरे ने भी समाप्त करी सकता था पर गल इं भी रावण जो माँ दुर्गा ने गोदा चुकया हा तो जालू क्योंकि रावण जेड़ा था तिना भी बहुत भक्ति की थी यही तिना है कोई था नहीं अनन्य भक्त शिव जी दे थे कने और भी कई रिधियाँ सिद्धियाँ कीतियाँ हियाँ है ना जी तो बोलिया जालू दुर्गा माता थी तो मैं तीर नहीं मारी सकिया कने इस कारण जेड़ा अज सारा कुछ होया ता फिरी महाराज ने जेड़े रामचंद्र जी महाराज हैं इन्होंने 9 दिन बोलिया मैं देवी माँ की तपस्या करनी कने देवी माँ जो मैं इतों प्रकट करना ठीक है।

0: ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲ ਕਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ 108। ਤਾਂ ਜਾਲੂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9 ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਲੂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਦਾ ਸਹਿ ਲੱਗੇ ਯੱਗ 'ਚ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਨੇ ਸਹਿ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਨੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀਏ ਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਉਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਿਆਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬੋਬੋ ਭੈਣੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿੰਜੋ ਦਿਆ ਅਨੁਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁਜਾਣੇ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਪਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੜਕੀ ਬੋਬੋ ਜੋ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਮਸਤੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕਾ ਯੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, 103.4 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਪਰ। ਸ਼ਾਮ ਕੇ 7 ਵਜਨੇ ਕੋ ਹੈ ਅਬ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਸਮਾਚਾਰ, ਵ ਸ਼ਾਮ 7:05 ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਂ ਸਮਾਚਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਫਿਲੇ ਕੀਏ ਜਾ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा को आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से ये यात्रा जारी रहेगी। इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा है और क्षमता भी। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार चलाने और इंटरनेट सेवा को भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। भारत ने मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर बहुत चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोईजम के खिलाफ कार्रवाई न करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोईजम की सेवा समाप्त कर दी थी। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और सांसद को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 300 अन्य घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की।

नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के भी हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। वेस्टइंडीज ने भारत के साथ इंदौर में तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहले ओवर में बगैर किसी नुकसान के 4 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक एक से बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षि कश्यप को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जरूर लैन। और देखा जी अज जड़ा ऐसा मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया हा, पूरा दिन लगभग धर्मशाला और आस पास के क्षेत्र जड़ा ऐसा बूंदाबांदी भी हुई, जोरे बरखा भी हुई, कने उपर जड़ा ऐसा पहाड़ा च खूब बर्फबारी भी होंदी रही। तो इस विच थोड़ी ठंड बधी गई, तो देखा टियाले पर अज मिंजो भी जैकेट पाई के आना पिया। तो अपने स्वास्थ्य का जड़ा ऐसा जरूर ध्यान रखना है। और जिया कि हूँ नवरात्रे का अज का पहला नवरात्रा है, तो इस उपलक्ष्य पर कहो ना माता राणी की एक प्यारी दी भेंट जड़ी ऐसा सुनी जाए, तो सुन देने माता दी भेंट।

0: जय माता दी। श्रोताओं ता ए थी माता दी भेंट कने भाई दिखा नवरात्र दे इस उपलक्ष्य पर जड़ा ऐसा सारे जड़े ऐसा कोशिश करते हैं कि भाई पूजा अर्चना जड़ी ऐसा कीती जाए, माता रानी दी कृपा जड़ी ऐसा हासिल कीती जाए और माता रानी दा जड़ा ऐसा पूजा पाठ कीता जाए। तो दिखा बड़ी बाकी गल है कने ये त्यौहार ये उत्सव ये जड़े साढ़े जो भी परंपरा है इस दे अनुसार जड़ा ऐसा हर समय दे अनुसार जड़ा ऐसा हर त्यौहार आंदा है और असा जड़ा ऐसा हर त्यौहार जो बड़ी खुशी कने बड़े चाव कने मनांदे हैं। किसान साथियों इस दे बाद जड़ा ऐसा हुण गलबात जड़ी ऐसा आहां करनी है भेंट वार्ता दी और इस दे तहत जड़ा ऐसा उन्नत किसान भाई बंधु जड़े ने साढ़े टियाले पर अपने अनुभव साझा करते हैं तो आवा सुनते हैं एक उन्नत किसान भाई कने की गलबात।
1: साथियों कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता की कड़ी विच अहां दा प्रयास रहिंदा कि रोज़ हर दिन नोईयां ते नोईयां जानकारियां अहां तुहां तक पहुँचाइए, चाहे वह अहां दे कृषि विज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारियां होन या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों कन्ने कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज मिंजो मौका मिला जुड़ा करदे हन मेरे कन्ने एक उन्नत किसान करदे हन इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
2: राम राम जी।
1: जी तुहां दा नाम?
2: बोधी सिंह।
1: कन्ने ग्राएं दा नाम?
2: एक पनियारखड़।
1: पनियारखड़ जमानाबाद।
2: जमानाबाद।
1: कन्ने ब्लॉक तुहां दा?
2: कांगड़ा।
1: बोधी सिंह जी ता तुहां खेतीबाड़ी करदे हैं ना?
2: हां जी हां जी हां जी।
1: किन्नी की जमीन है तुहां वाल?
2: सारी जमीन है, दो कमार।
1: ते ए सारी खेती करने काबिल है?
2: खेती करने काबिल है सारे।
1: अच्छा, क्या क्या बांधे कमांदे?
2: बांधे धान, बांधे गाय, घाओ बांधे,
1: बाकी सब्जी वगैरह?
2: सब्जी लगांदा मैं। अच्छा। सब्जी हां लगांदे।
1: हां जी, जियां इब्बे कदी फसल ताना दी?
2: फसल खड़ी है सारे।
1: कौन बी लगांदे ताना दा?
2: ए गुलाबो 834।
1: अच्छा अच्छा। देखा वे एक दो किस्म अगर हाँ लगाईया होना कई बार क्या होंगे कि एक आधी किस्म कोई कुछ बारी पैदावार घटी भी आती है उतनी जड़ी सह जड़ी भरपाई है दुई किस्म हाँ जो करी जाती है। अच्छा, यानी कि बाहर तो लेंदे बीज है
2: ना,
1: सब्जी ने भी बाहर लेंदे। जी इसके बाद गल करते हैं खाद की, खादा क्या?
2: खाद देसी खाद बने सारे।
1: अच्छा, बाकी यूरिया वगैरह
2: नहीं?
1: देखा बिल्कुल जी हाँ बोलते ने कि बाकी गल भी है कि देखा आए दिन बीमारियां पता कर दी
2: वो दिन पर दिन का बीमार
1: हाँ, हाँ। अगर एक ही घरे देखा अगर पांच ते छे मेंबर भी अंदर ना विच मैं नहीं समझता कि कुसी कोई बीमारी नहीं होती है ना।
2: 90% दवाई निर्भर है दवाई पर।
1: हाँ जी,
2: 10% कोई होगा जो खरा होगा।
1: हाँ
2: हाँ जी, ना पथरी ऑपरेशन हो या करना शुगर थी?
1: हाँ जी
2: ठीक है।
1: हाँ जी हाँ जी,
2: 73 साल लगे।
1: अच्छा अच्छा, देखा भाई ये हाँ मैं देखा करता कि उम्र दे इतने तकाजे विच भी जड़ा सा तो हाँ देखा बिल्कुल जिसी ये बोलते ना हट्टे कट्टे ना कहना इतनी जमीन जड़ी सा तो हाँ बाई हो ना।
2: भाई, भाई, भाई।
1: अच्छा, तो इससे पहले जी तो हाँ नौकरी वगैरह करते है?
2: नौकरी भी करने जिम्मेदारी थमी ही मैं सारी।
1: अच्छा,
2: 8-9 ठार पाली हड़ी में।
1: अच्छा, डंगरें दे?
2: हाँ, दूर जाने है।
1: अच्छा,
2: ये तो लोग के बच्चे बच्चे लोग के है।
1: हाँ जी,
2: इतना काम करते हो।
1: अच्छा, तो नौकरी कुछ विभाग च की थी? तो
2: मैं वन विभाग च।
1: कितना अरसा हो गया रिटायर आए हो?
2: मैं 2014 से रिटायर।
1: अच्छा, 74 साल तो हाँ दी उम्र हुई है ना?
2: वो लगी है 74 में।
1: यानी कि जिस दौर में तो हाँ जी दिखा नौकरी की तो 3 दिन था जितनी सड़का वगैरह भी नहीं बन गई।
2: वगैरह ही नहीं सड़का, पैदल जाना पैदल आना।
1: अच्छा, कितनी दूर जानते हैं पैदल है?
2: मैं 18 किलोमीटर जाना, 18 आना, 36 किलोमीटर तय करता हूँ।
1: यानी कि तो नेड़े ही
2: नेड़े ने नंद्रोड़ राजल सुने ना?
1: हाँ, राजल नंद्रोड़ बोर्ड क्वालू है।
2: बोर्ड क्वालू में फिर ये तरसू।
1: हाँ जी,
2: स्कोटे दिख रही थी।
1: हाँ जी, अच्छा,
2: जिसे डुबांड पहुंच जी तुझे लिया।
1: 18 किलोमीटर जाना,
2: 18
1: योना,
2: 36 किलोमीटर तय पैदल होना पैदल जाना।
1: हाँ, दिखा
2: कने कने रंगा अंडनिया
1: जो कि अगर वन विभाग की नौकरी दे तो बने ची अंडना पौना ना। बुद्धि सिंह जी जद तो हाँ नौकरी करते है वन विभाग च, दिखा भी जिया तो हाँ दसिया की बने बने अंडना, देखो कि नौकरी बने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर पूर्व भाजपा कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों को प्रभावित करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समाज में न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर दिया बल। शारदीय नवरात्र के पहले दिन शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में आई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर पूर्व भाजपा कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कुल्लू जिले के पतलीकुहल में आज जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
1: पिछले चार साल में कांग्रेस किस बात के लिए जानी गई? कांग्रेस जानी गई है कुशासन के लिए, कांग्रेस जानी गई है कुप्रबंधन के लिए, कांग्रेस जानी गई है कुनीति के लिए और कांग्रेस जानी गई है कुव्यवस्था के लिए। इनकी कुनीति है, बताओ इन्होंने आते ही स्कूल बंद किए कि नहीं किए, अस्पताल बंद किए कि नहीं किए, जो विकास के काम कर चल रहे थे उसको रोका कि नहीं रोका। इनकी ये कुनीति का नतीजा है, ये कुप्रबंधन है, इनको प्रबंध करने नहीं आता।
0: नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए बड़ी धनराशि उपलब्ध करवाई लेकिन राज्य सरकार इसका समय पर उपयोग नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है।
1: देश को विकसित बनाने का नाम नरेंद्र मोदी और उनको ताकत देने का काम आपका और हमारा है, इसको हमको ध्यान दे। यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आ गया। कभी सोचा था कि 70 लाख की जनसंख्या को ये चीजें मिलेंगी? IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद होता, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बंगलुरु होता, मुंबई होता, कभी सोचा था कि हमको यहाँ पर मिलेगा? लेकिन वो मोदी जी ने आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी हर तरीके से आपको युक्त करने का प्रयास किया गया है।
0: उन्होंने राज्य सरकार को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की दिशा में ध्यान देने की सलाह दी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित भाजपा के अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और कौशल के उपयोग से समाज में न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। शिमला के समीप राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता का आकलन उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान से भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और निरंतर प्रयासों के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने का आह्वान किया।
2: आज आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं, आज से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तो यह केवल शुरुआत है, जीवन में कई चुनौतियां आपका इंतजार कर रही है। कामयाबी के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है, कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन ही आपको अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगी। जीवन में असफलताएं भी मिलती हैं लेकिन उनसे घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में न्यायमूर्ति MM सुंदरेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने स्नातक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ना राज्य सरकार का लक्ष्य है।

0: शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की देवला पंचायत के घराट नाला में आज एक मेले के समापन पर उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सड़कों के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देवला, खटनोल और मझीवड़ पंचायतों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य जारी हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले में निचार उपमंडल के कंडार गांव के 47 विस्थापित परिवारों को भूमि के मालिकाना पट्टे वितरित किए। उन्होंने कहा कि कंडार गांव को संपर्क सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कर ली गई है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल एट द रेट AIR न्यूज _ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
2: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
1: जी डॉक्टर साहब,
2: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
3: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
5: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
4: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
5: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1,200 से 1,500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
4: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
5: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश वासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन के शेष समाचारों में, सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि देश अब स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। NIT हमीरपुर में शिक्षा महाकुंभ वर्ष 2026 के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को आधुनिक तकनीक, AI, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आगे आना होगा। अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार और सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सरकारी ई मार्केट प्लस यानी जैम और डिजिटल इंडिया पहल की। प्रधानमंत्री के अनुसार सार्वजनिक खरीद में डिजिटल पारदर्शिता और तकनीकी एकीकरण में शासन प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया गया है।
7: जो भी सरकार में कोई चीज सप्लाई करना चाहता है, छोटी छोटी चीजें भेजना चाहता है, बेचना चाहता है, वो उसमें अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है। वो क्या क्वालिटी का माल है उसके पास, वो उसमें लिख करके रख सकता है, कितने में वो बेचेगा वो लिख सकता है। और सरकार के डिपार्टमेंट को कंपलसरी है कि उन्होंने उस पर विजिट करना होगा, देखना होगा कि ये सप्लाई करने वाले क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज न करते हुए सस्ते में कौन पहुंचाता है और फिर उसको ऑर्डर करना होता है। और इसके कारण बिचौलिए खत्म हो गए, सारी ट्रांसपेरेंसी आ गई, इंटरफेस नहीं होता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सब होता है। तो ई जेम के अंदर जो लोग रजिस्ट्री करवाते हैं, सरकार के सभी डिपार्टमेंट उसको देखते रहते हैं, बीच में बिचौलिए नहीं होने के कारण चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं।
0: मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर के अणु में छात्राओं की राज्य स्तरीय अंडर-19 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में करीब 800 से अधिक छात्राएं 10 स्पर्धाओं में भाग ले रही हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि नादौन में अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का जल्द शुभारंभ किया जाएगा। इस

स्टेडियम में 14 खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं का प्रावधान है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं, ऐसे में सुबह से ही शक्तिपीठों सहित धार्मिक स्थलों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु शक्तिपीठों में पहुंच रहे हैं। कांगड़ा जिले में नवरात्र के दौरान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना व धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। सिरमौर जिले के प्रसिद्ध माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में नवरात्र मेले का उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने शुभारंभ किया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी नवरात्र के चलते मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम, प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा व ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम जारी है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति जिले में ताजा बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है। जिले में शिंकुला टाप पर बर्फबारी में फंसे पर्यटकों व बाइकर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उधर पर्यटन नगरी मनाली की ऊंची चोटियों और रोहतांग दर्रे पर भी हल्का हिमपात हुआ। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर वर्षा व चोटियों पर हिमपात की संभावना जताई है। गुमारवी में संस्कार सोसाइटी ने आज युवा प्रोत्साहन व सहयोग कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर ग्रामीण व स्कूली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समारोह में भारतीय महिला कबड्डी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रीति ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संस्कार सोसाइटी के संस्थापक महेंद्र धर्माणी ने कहा कि संस्था नशे जैसी गंभीर सामाजिक बुराई के खिलाफ लगातार जागरूकता बढ़ा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर पूर्व भाजपा कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों को प्रभावित करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समाज में न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर दिया बल। शारदीय नवरात्र के पहले दिन शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में आई गिरावट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: मीडियम वेव और एफएम पर आकाशवाणी का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त चल रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 6 पद, सहायिकाओं के 15 पद 23 अक्टूबर 2026 को कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन में प्रातः 10 बजे ये भरे जाने हैं। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में दिनांक 17 अक्टूबर 2026 तक जमा करवाए जा सकते हैं। केंद्रों की सूची इस प्रकार से हैं: देवघाट, सनीसाइड, भियोत, भेरा, बणी, कमलोक, यहाँ पर कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं। आंगनबाड़ी सहायिका के पद रिक्त हैं। जराश, टिक्कर, धदोक, झोकड़ी, ढलेन, जमरोट, भरोल, गोल, कोटला, ऊंचा गांव। शर्त इस प्रकार से: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हेतु आवेदक किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10:2 या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक उसी आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित या फीडर एरिया का निवासी होना चाहिए और साथ में अनुभव प्रमाण पत्र अगर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, बाल विकास, बालबाड़ी अध्यापिका तो भी साथ में लगा सकते हैं। और श्रोताओं, साक्षात्कार के लिए अलग से सूचित नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष नंबर 0179222160 पर संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। अभी आप सुन रहे थे रोजगार समाचार। हम

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सबरस के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई ये गज़ल।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई ये गज़ल, अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये पंजाबी गीत हरजीत हरमन की आवाज़ में।

अभी आपने सुना ये पंजाबी गीत। कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 होने को हैं अभी।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हिमबिट्स, ये कार्यक्रम हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।

नमस्कार श्रोताओं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हिम बीट्स लेकर हाजिर हूँ मैं उपमा ठाकुर। साथियों, पहाड़ों में जो जितना ऊंचा चढ़ता है मार्ग उतना ही कठिन होता जाता है और चढ़ने वाले को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों से सफलता की राह भी निकलती है। हमारा प्रदेश भी इन्हीं कठिनाइयों से गुजरकर वर्तमान में सफलता की नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज जानकारी की बात हिमबीट्स के साथ में हम आपके साथ साझा करेंगे जानकारी प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। देश की आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जितनी भी क्रांतियां हुई उनमें प्रदेश के छोटी छोटी रियासतों में बटे पहाड़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हिमाचल में स्वतंत्रता संग्राम की लहर में प्रजामंडल आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्रिटिश हुकूमत की राजधानी होने के कारण शिमला में बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था, इसलिए प्रजामंडलों के कार्यकलापों का ये प्रमुख केंद्र था। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल में पंडित पद्मदेव, शिवानंद रमोल, पूर्णानंद, सत्यदेव बुशहरी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, दौलत राम संख्यान और मनसाराम जैसे दिग्गज लोग थे और इन्होंने स्वतंत्र पहाड़ी राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया। उस समय छोटी छोटी रियासतों में बने प्रजामंडलों को इकट्ठा कर हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके बाद मंडी में एक बैठक के दौरान हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना की गई। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस बैठक के माध्यम से प्रजामंडलों को एकीकृत किया गया। 1940 के दशक में प्रजामंडल ने एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना पर जोर दिया। 11 अक्टूबर 1947 को हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल ने जिम्मेदार सरकार गठित करने की मांग को फिर से दोहराया। इसी के दृष्टिगत 4 जनवरी 1948 को शिमला में आयोजित कॉन्फ्रेंस में हिमालयन प्रांत बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस तरह हिमाचल प्रदेश की स्थापना की नींव रखी गई और 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। साथियों, अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की जल संपदा के बारे में। अद्भुत अलौकिक देव भूमि की दिव्य सौंदर्य में 4 चांद लगाती है यहाँ की 5 नदियाँ। इस पहाड़ी प्रदेश में आर्थिक संसाधन सीमित है, लेकिन नदियों और झीलों के अमूल्य उपहार से प्रकृति ने हिमाचल को दी है बिजली उत्पादन की अपार क्षमताएं। यहाँ पर बहती नदियों की जल धारा देश व प्रदेश की ऊर्जा और जल आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इन नदियों पर बनने वाली राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं। हाल ही में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर टोंस नदी पर प्रस्तावित किशाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हिमाचल सहित हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान राज्य ने दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश के हितों के अनुरूप समझौता लागू करवाया। इस समझौते से हिमाचल प्रदेश सरकार को हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी तथा परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश को हर वर्ष लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। ये समझौता हिमाचल के अधिकारों और आर्थिक हितों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। इस समझौते से प्रदेश की आर्थिकी को तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही यहाँ के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। हिमाचल के लिए इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ ये है कि किशाऊ बांध से उत्पादित होने वाली 211 मेगावाट बिजली, जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च आना था, वे खर्च अब हिमाचल प्रदेश को वहन नहीं करना पड़ेगा। इस परियोजना पर होने वाला व्यय वे राज्य सरकारें वहन करेगी जो पानी का उपयोग करेंगी। ये

पता प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दृढ़ निश्चय और राजनीतिक सूझबूझ के कारण ही संभव हो पाया है। ये परियोजना राज्य के आर्थिक भविष्य, रोजगार सृजन और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगी। वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही प्रदेशवासियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। विभिन्न मंचों पर सदैव प्रदेश के हितों को प्रभावी ढंग से उठाया गया है। किशाऊ बांध परियोजना में भी राज्य के वैध अधिकार और उचित हिस्सेदारी को सुरक्षित करना प्रदेश के हितों की रक्षा करने के संघर्ष में एक बड़ी जीत है। किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना केवल एक बांध परियोजना नहीं बल्कि उत्तर भारत की जल सुरक्षा, सिंचाई, पेयजल और पर्यावरण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है। इस परियोजना ने आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन के नारे को भी बुलंद किया है और आने वाले समय में ये बेहतर कुशल वित्त प्रबंधन और अतिरिक्त आर्थिक संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्रदेश के जल संसाधनों को हमेशा से बहता हुआ सोना कहा गया है, लेकिन अब हिमाचल अपने संसाधनों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने धौलसिद्ध जल विद्युत परियोजना को SJVNL से वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए 800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक संपदा का लाभ उठाने वाली संस्थाओं और कंपनियों से प्रदेश को उचित आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। इस दिशा में भी प्रदेश सरकार अपने अधिकारों की लड़ाई को जारी रखे हुए है। राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। साथियों, यहाँ हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

साथियों, अब कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रदेश की सेब अर्थव्यवस्था की। सेब प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में सेब अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियों और योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेश के बागवानों को मिल रहा है। एक समय था जब हिमाचल के बागवानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सेब उत्पादन की नहीं बल्कि अपने उत्पादों को उचित बाजार तक पहुंचाने की होती थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को नई दिशा मिली है और इस क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने शिमला जिला के रोहडू और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीदे जाने वाले सेब के खरीद मूल्य में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे अब इस योजना के तहत सेब 12 रुपए के स्थान पर 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रयासों से हिमाचल की मंडी व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कई छोटी बड़ी मंडियां विकसित हुई हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर भी बागवान अपने उत्पाद बेच रहे हैं। इन मंडियों के विस्तार से बागवानों को न केवल बाजार की सुविधा मिल रही है बल्कि ये पहाड़ी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर

रही है। सेब के साथ साथ प्रदेश में अन्य फलों के उत्पादन पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार बागवानी को सुदृढ़ करने के लिए नवीन तकनीक व नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आए न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि मंडल ने हिमाचल में बागवानी के विविध आयामों का आकलन किया। प्रदेश में इंडो न्यूजीलैंड कृषि परियोजना के तहत सेब, कीवी और नाशपाती के लिए 15 करोड़ रुपए से प्रस्तावित इंडो न्यूजीलैंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बागवानी क्षेत्र के विस्तार में सहायक साबित होगा। इस परियोजना के माध्यम से बागवानों को न्यूजीलैंड की तकनीकी दक्षता और नई तकनीकों से अवगत करवाया जाएगा। इस परियोजना के तहत गुणवत्तापूर्ण रोग प्रतिरोधी और बेहतर पौध नर्सरी को विकसित किया जाएगा। इसमें आधुनिक और बेहतर तकनीकों का उपयोग करते हुए बाजार की मांग के अनुरूप कीवी, सेब और नाशपाती के पौध की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए एकीकृत पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन की सुविधाएं तैयार की जाएंगी। परियोजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट के माध्यम से उनके कौशल उन्नयन पर विशेष बल दिया जाएगा। साथियों, यहां हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

साथियों, प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं से राज्य के बागवान लाभान्वित हो रहे हैं और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार की नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। अवसर प्रदेशवासियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इन नई संभावनाओं और अवसरों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। साथियों, आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नए अंक में साझा करेंगे आपके साथ नई जानकारी। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
1: और हमेशा हमारी फिक्र करना।
2: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
0: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
1: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
3: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अभी आप सुन रहे थे हिमबीट्स कार्यक्रम, जो कि आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किया गया। FM बैंड 103.5

90.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला के इंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

देश कान, इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
2: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाप प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

0: प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूर्णमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडिया चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
2: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में

0: कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
1: We have seen certain remarks.
2: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
1: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोयजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोयजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
3: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोयजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
4: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
5: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमें हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
4: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
6: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
1: डीकॉलोनाइजेशन।
4: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

0: देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले 2 दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 13,000 crore rupees in Tamil Nadu, stresses India's progress draws strength from rich cultural heritage and scientific achievements. Prime Minister

एफएम बेंच 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं निर्माता निदेशक गुरुदत्त द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत।

जी हाँ श्रोताओं, आज बात हो रही है निर्माता निदेशक गुरुदत्त की, जिनका वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। इनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निदेशक एवं फिल्म निर्माता थे। उन्होंने 1950वें और 1960वें दशक में कई उत्कृष्ट फिल्में बनाई, जैसे प्यासा, कागज़ के फूल, साही बीबी और गुलाम और चौदहवीं का चांद। विशेष रूप से प्यासा और कागज़ के फूल को टाइम पत्रिका के 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है और साइट एंड साउंड आलोचकों और निदेशकों के सर्वेक्षण द्वारा दत्त खुद भी सबसे बड़े फिल्म निदेशकों की सूची में शामिल हैं। उन्हें कभी कभी भारत का ऑर्सन वेल्स भी कहा जाता है। उनका नाम CNN के सर्वश्रेष्ठ 25 एशियाई अभिनेताओं की सूची में भी शामिल किया गया है। गुरुदत्त 1950वें दशक के लोकप्रिय सिनेमा के प्रसंग में काव्यात्मक और कलात्मक फिल्मों के व्यावसायिक चलन को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी फिल्मों को जर्मनी, फ्रांस और जापान में अब भी प्रकाशित करने पर सराहा जाता है।

इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत निर्माता निदेशक गुरुदत्त द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ गीत जो कि आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। गुरुदत्त की दादी नितेश्याम को दिया जलाकर आरती कर दी और 14 वर्षीय गुरुदत्त दिए की रोशनी में दीवार पर अपनी उंगलियों की विभिन्न मुद्राओं से तरह तरह के चित्र बनाते रहते। यहीं से उनके मन में कला के प्रति संस्कार जागृत हुए। हालांकि वे अप्रशिक्षित थे, गुरुदत्त प्रेरित आवर्तनों का उत्पादन कर पाते और इसी तरह उन्होंने अपने उसे उत्तरार्ध से एक पेंटिंग पर आधारित है एक सांप नृत्य प्रदर्शन फोटोग्राफ उनके चाचा बीबी बेनेगल राजी जयबेथा के रूप में वे कर सकता। उनकी ये कला परवान चढ़ी और उन्हें शाश्वत ब्राह्मणों के एक सामाजिक कार्यक्रम में 5 रुपये का नकद पारितोषिक

प्राप्त हुआ। जब गुरुदत्त 16 वर्ष के थे, उन्होंने 1941 में पूरे 5 साल के लिए 75 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति पर अल्मोड़ा जाकर नृत्य, नाटक व संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर बंद हो गया, गुरुदत्त वापस अपने घर लौट आए। यद्यपि आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे स्कूल जाकर अध्ययन तो ना कर सके, परंतु रविशंकर के अग्रज उदय शंकर की संगत में रहकर कला व संगीत के कई गुण अवश्य सीख लिए। यही गुण आगे चलकर कलात्मक फिल्मों के निर्माण में उनके लिए सहायक सिद्ध हुए।

उनकी प्रमुख फिल्मों की अगर हम बात करें तो 1964 में सुहागन, भरोसा वंशी, साहिबी वी और गुलाम, अतुल्य चक्रवर्ती उर्फ भूतनाथ, चौदहवीं का चांद, काला बाजार, कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेज 55, आर पार, हम एक हैं, जाल, कागज के फूल, बाजी बाज, ये उनकी कुछ प्रमुख फिल्में थीं। गुरुदत्त की स्मृति में भारत सरकार द्वारा सन 2004 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया।

deixa gruda duranermet nerdeshet fulmosikuch chuninda fulmigit fm band 103.4 megahertz par ye akashvani ka धर्मशाला के इंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों की महफिल। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति उदित नारायण साधना सरगम के युगल स्वरों में मदहोशी फिल्म से।

की लिखी शब्द रचना को संगीत में पिरोया था रूप कुमार राठौड़ ने। गीतों की महफिल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से, और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षा कटोच। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति दीवाना फिल्म से।

अभी आपने सुना दीवाना फिल्म का यह गीत। आवाजें थी कुमार शानू साधना सरगम की, समीर की लिखी शब्द रचना को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम गीतों की महफिल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं दिल फिल्म से ये गीत।

आनंद मिलिन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों को, शब्द रचना समीर की थी, फिल्म का नाम दिल। गीतों की महफिल कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आज मैं हूँ आपके साथ वर्षा टोच। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति दिल तो पागल है फिल्म से, आवाजें हैं लता मंगेशकर उदित नारायण की।

उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना लता मंगेशकर हरिहरन के युगल स्वरों में दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत, और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत, एसपी बाला सुब्रमण्यम साथियों की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना कार्यक्रम गीतों की महफिल FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को है। अब अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले की जाएगी।

सेवा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है पंडित जडेश हुगार जी का तबला वादन। पंडित जडेश हुगार जी का जन्म 4 जुलाई 1977 को हुआ। आपके पिता का नाम भगवंतप्पा हुगार है। पंडित जडेश हुगार संगीत तथा कला परिवार से जाने जाते हैं। आप कल्याण कर्नाटक के जाने माने तबला वादक स्वर्गीय श्री शंकरप्पा हुगार जी के पौत्र है। आप अपने 8 वर्ष की आयु में अपने पिता श्री भगवंतप्पा हुगार द्वारा तबला वादन तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही टॉप ग्रेड उपाधि प्राप्त आकाशवाणी धारवाड़ के टॉप तबला कलाकार आपके चाचा पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर जी से भी तबला वादन में अधिक शिक्षा हासिल की है। कर्नाटक राज्य शिक्षा परीक्षा बोर्ड द्वारा शास्त्रीय संगीत में तबला विद्वत एवं गायन विद्वत की उपाधि, कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से तबला वादन में MA की उपाधि, आकाशवाणी द्वारा आयोजित किए गए संगीत की ऑडिशन में तबला वादन में टॉप ग्रेड, बी हाई ग्रेड संगीतकार, बी हाई ग्रेड हिंदुस्तानी गायन कलाकार की उपाधियों के साथ फरुखाबाद

0: पूरब तथा अजरार घराना और दिल्ली घराने की भी उपाधि प्राप्त की है। पंडित जडेश हुगार धारवाड़ संगीत विश्वविद्यालय में लगभग 3 वर्ष संगीत सहायक शिक्षक के तौर पर और कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ में 1 वर्ष अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत रहे। आप केवल देश में ही नहीं बल्कि फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड जैसे विदेशों में भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। साथ ही आप देश विदेशों के कई जाने माने कलाकारों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपके संगीत कार्यक्रम आए दिन आकाशवाणी कलबुर्गी तथा दूरदर्शन केंद्र चंदन बेंगलुरु से प्रसारित होते रहते हैं। आज की इस अखिल भारतीय संगीत सभा में पंडित जडेश हुगार जी प्रस्तुत कर रहे हैं तबला वादन 3 ताल में। हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रदमठ।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुडे वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय पंडित जडेश हुगार। हैविंग इम्बाइब्ड म्यूजिकल इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम हिज फादर श्री भगवंतप्पा हुगार, a well-known vocalist and tabla artist of Kalyana Karnataka region. Jadesh inculcated a sense of Indian classical music right from his childhood. At the tender age of 8, he started learning tabla under his father's guidance. After that, it was the turn of his uncle, Pandit Sathalingappa Desai Kallur, a top-grade tabla artist of Akashwani Dharwad, to impart advanced training in tabla to Jadesh. Belonging to Purab, Farukabad and Azrat Gharana, Jadesh has also achieved the style of Delhi Gharana. A postgraduate in music from Karnataka University Dharwad, Jadesh has achieved many top grades in classical music at a very young age, enthralling audience and connoisseurs all around India and abroad with repertoire of his recitals. Incorporating various styles of performances, Jadesh has shared stage with many eminent and senior musicians. He has given programs in France and Switzerland also. Tonight, Pandit Jadesh Hogar will begin his performance of tabla solo in 3 taal. Harmonium Lahira is provided by Sri Revaya Vasudmat.

तबला वादन में तीन ताल अब तक सुन रहे थे। अब सुनिए पंडित जडेश हुगार जी से तबला वादन में रूपक ताल। हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रद मठ।

0: इस रूपक ताल के साथ पंडित जडेश होगार तबला सोलो समापन कर रहे हैं। हारमोनियम लेहरा संगत कर रहे थे श्री रेवैया वस्त्रद्वट। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कलबुर्गी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया गया था।
1: विथ रूपक ताल पंडित जडेश होगार कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल इन टुडेज रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। हारमोनियम लहरा वॉज प्रोवाइडेड बाय श्री रेवैया वस्त्रद्वट। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कलबुर्गी।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब पहले हिंदी में समाचार व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी

0: कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras today. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research.
0: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
2: Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Poonamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. The Prime Minister and Chief Minister C. Joseph Vijay jointly flagged off the new metro services and travelled on the train. Prime Minister Narendra Modi also attended Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalay in Chennai today. Addressing the students, the Prime Minister said the world is looking for solutions to emerging challenges and expressed confidence that India's youth have the talent and potential to provide them. The Supreme Court today directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement

होता है अपने कल प्रातः के प्रसारण के कार्यक्रमों के साथ। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।